0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: including transition support and
1: जीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
0: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी।
3: नहीं, इंजरी नहीं, ये जोड़ी सही नहीं है, ये हुई ना परफेक्ट जोड़ी, जैसे बिरला व्हाइट पुट्टी और ओनली बिरला व्हाइट प्राइमर की जोड़ी। पुट्टी और प्राइमर व्हाइटेस्ट तो दीवारें ब्राइटेस्ट,
0: वो निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक

0: भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
1: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014.
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: क्या मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

हेलो जी, वेलकम बैक है वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह, एक और प्यारा सा दिन आप सभी को आज के दिन की देते हैं ढेरों मंगल शुभकामनाएं। आज वेंसडे की प्यारी सुबह है, यानी बुधवार का एक खूबसूरत सा दिन आपके लिए। आपके जीवन में एक बार फिर से ढेर सारी खुशियों का आगमन हो रहा है आज के दिन। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ ओनली ऑन आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुनते हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और ये है आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो। एक वेंसडे, एक नई सुबह, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग। और आज की सुबह मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, बस इतने कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपने जहां भी पहुंचना है, बस उसके लिए आपको खुद से निकलना है, खुद से एफर्ट्स करने हैं और खुद से ही एक्सपेक्टेशन रखनी है। जब आप अपनी लाइफ में खुद से ही उम्मीदें रखते हो ना, तो यकीन मानिए आपको पहली बात तो हर्ट नहीं होता है कि यार उसने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, व्हाटएवर। एंड सेकंड थिंग, कि जब आप खुद से उम्मीद रखते हो तो आप उस चीज को कर जाते हो, आपको बिलीव होता है। तो इसीलिए बिलीव इन योरसेल्फ, एंड जब आप खुद पे भी यकीन रखेंगे तो आप डेफिनेटली सब कुछ नया कर पाएंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं, हर दिन का सूरज सिर्फ आपको दिन नहीं दिखाता है, बहुत सारी आपके साथ उम्मीदें लेकर आता है ना। तो आज की सुबह आज का सूरज भी आपके लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया है, एक और नई होप की किरण, कि जो कल नहीं कर पाए वो आज करेंगे ना यार। हाँ जी, तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, करूंगा आपसे ढेर सारी बात, आपसे लेके 10 बजे तक रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आपके साथ, जहां पर हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात। सो डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे। बहुत ही बेहतरीन गाना, इस गाने से करते हैं आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत। आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है, आपको मजा आ जाएगा इस गाने को सुन के। इस गाने का म्यूजिक बहुत प्यारा है। तो आज की गिग स्टार्ट करने वाले इस बहुत ही बेहतरीन ट्रैक के साथ, साधना सरगम मोहम्मद अजीज की आवाज, बेहतरीन गाना। इसी गाने से होगी आज के सफर की शुरुआत। ये वेंसडे मॉर्निंग है, घड़ी मिला लो 8:21:12 हो रहे हैं। क्या कहता है आज का मौसम, कैसी चलने वाली हवाएं, सब कुछ आपको पता लगेगा जरा सी देर में। लेकिन उससे पहले ही बेहतरीन गाना, इससे कर रहे हैं आज के सफर की शुरुआत। आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, और व्हाट्सएप करके मुझे बताओ जरा अपने हालचाल, मैं अलॉट करा रहा हूँ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेरी गुड मॉर्निंग है जी, वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को। और सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, काश ऐसा रियल में भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, उन सभी का वंस अगेन वेलकम बैक है जी। आप सुन रहे हैं आनंद को और शो का नाम दोस्तों 8:33 का समय स्टूडियो की घड़ी में हो रहा है। और आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप चाहे वर्कआउट करके आ रहे हैं, या आप जा रहे हैं और आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, या फिर आप वापस आ रहे हैं, या आप अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच हमें सुनने के लिए और इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, आप सुन रहे हैं आनंद को। यह है आपका स्टेशन ऑफ द नेशन, जहाँ ढेर सारी बातें

होती है। डेली आपके रेडियो पर आते हैं ढेर सारी बातें लेकर के। हर दिन कुछ नया ही होता है मेरे दोस्त, या कुछ रिपीटेड नहीं होता है, या कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको ऐसा लगे यार क्या बातें चल रही हैं। सब कुछ वो बातें होती है जो आपका दिल चाहता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सवेरे सवेरे अगर आप अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ जब घर से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो वो पूरा दिन की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना, उसको और भी खास बना देती है, उसको और भी एनर्जेटिक बना देती है। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें करके बाहर निकलते हो, कुछ अच्छा प्लान करके बाहर निकलते हो, एंड अच्छी मेंटालिटी के साथ बाहर निकलते हो, एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ अपने काम पर निकलते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। का अच्छा बूस्टर आपको मिल ही जाता है। अच्छा ब्रेकफास्ट आप करके जा रहे हैं तो बस एक अच्छी थॉट भी लेकर जाइए। वो कहते हैं ना, जब आप एक छोटी सी अच्छी सोच अपनी लेकर के चलते हैं अपने साथ, तो पूरा दिन बदल जाता है और इनफैक्ट पूरी लाइफ भी बदलने लगती है। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रेडियो पे अच्छी अच्छी बातें करना मेरा काम, बने के नाम आनंद है। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है। ढेर सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। श्वेता मेरे साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, कैसे हो? आई एम वेरी वेरी गुड श्वेता जी, थैंक यू सो मच आनंद इतने अच्छे गाने बजाने के लिए, सुबह सुबह अच्छा लगता है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बॉयज एंड गर्ल्स लौट कर आएंगे तो, और अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कल रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए अपने मुरादाबाद में अराउंड 10:30 के समथिंग। तो क्या आपको भी ऐसा लगा कि कल रात को भूकंप के झटके महसूस हुए थे अपने मुरादाबाद में? अगर आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको नहीं भी लगा तो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पे, बहुत सारे यू नो सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, कमर्शियल तो नहीं बोलूँगा, कुछ अपडेटेड चैनल्स हैं जो अपलोड कर रहे हैं कि कल रात को ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसा कुछ महसूस हुआ है। कि आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ तो डेफिनेटली आप बताइएगा ज़रूर। फिलहाल आप जहाँ भी जा रहे हैं गुड लक, यार ऑल द बेस्ट। कुछ कहना चाहते हैं मुरादाबादी से तो आज की सुबह गोल्डन चांस आपके पास है, डेफिनेटली आप बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837896896। दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, यही वो नंबर है जिस पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह, और बता सकते हैं आप भी हमें ज़रा जो हम आपसे पूछ रहे हैं। भाई साहब, अगर आप हमको बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा जी। तो आप ऐसे ही हमें बताते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए भैया और गुनगुनाते रहिए। बाकी अभी हम आएंगे तो आपको बताएंगे आज का दिन क्यों इस विशेष है, आज के दिन में क्या कुछ खास है, और भी ढेर सारी बातें जो आपको पहुंचाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए और हमारा साथ निभाते रहिए। फिलहाल एक खूबसूरत गाना जो आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने अभी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, इसको सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छा ट्रैक है, एंजॉय करें साथ में। बहुत ही सुपर हिट आइकॉनिक गाना, ऑफकोर्स आपको मजा आ जाएगा सुन के। चलो साथ में एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
5: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यूनिंग कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। चलिए हम वापस आते हैं अभी से स्टेशन पे लौट के और आपको बताते हैं आज के दिन के बारे में। क्यों आज की तारीख स्पेशल है, क्या कुछ खास है आज की तारीख में? क्या परफॉर्मेंस दी थी यार माधुरी दीक्षित एंड मनीषा कोयराला ने इस गाने में। अलका याग्निक जी की आवाज बेहतरीन।

बड़ी मुश्किल तो हो जाती है यार सुबह सुबह जब आप निकलना चाहते हो जल्दी में, लेकिन आपको वहीं भसड़ मिल जाती है तो यार थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई सब कुछ आज ही मिलना था क्या, मतलब जाम शाम सुबह सुबह ज्यादा मिलता है यार। और एक चीज तो मैंने नोटिस की, जिस दिन आपको बहुत जल्दी होती है, जिस दिन आपको बहुत ही जल्दी होता है एकदम सुपर फास्ट तरीके से भागना होता है ना, उसी दिन सबसे ज्यादा लेट होता है, मैं बता रहा हूँ भाई। एक बार फिर से स्वागत है आपका, 8:51 का समय हो गया है, ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कह जी छड्डो तुसी 89.6 वाली फ्रिक्वेंसी नहीं क्लियर आ रही, तो तुम क्या करोगे पाजी, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे, है ना। प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो FM मुरादाबाद 89.6 की ऐप और जुड़ जाओ दिल से दिल तक। आप भारत में हो या भारत से बाहर हो, आप नेशनल इंटरनेशनल आप जहाँ भी हो, आप बहुत ईजिली कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ दिल से दिल तक, है ना। सो बस फटाफट से जाओ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ यार। चलो बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन इतिहास के पन्नों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तारीख क्यों खास है, चलिए एक नज़र डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों के विषय में। तो आपको बता दें गांधी जी नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1919 में, सन आज ही के दिन, सन 1919 में आज के दिन ये पत्रिका जो है प्रकाशित हुई थी 7 अक्टूबर को। आपको बताते चले अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी श्रोताओं आज ही के दिन 1942 में। एंड आज ही के दिन सन 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में एक चैरिटी की स्थापना की थी श्रोताओं, यस मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी सन 1950 में। एंड वहीं 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी आज ही के दिन श्रोताओं, एग्जैक्टली पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनी आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1952 में। तो ये आज के दिन के विषय में कुछ बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं मेरी और आपकी ढेर सारी दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी हमें कुछ ना कुछ स्पेशल बता सकते हैं अगर आपके आसपास चल रहा है तो व्हाट्सएप करके बात करें। आज के दिन जन्म कुछ खास कलाकारों की, तो आज के दिन एक जन्म हुआ था एक ऐसे नाम का जिसके बारे में बात करना बनता है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे बलीराम भगत सिंह, 1922 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन श्रोताओं। एंड बात करूं मैं एक और ऐसे नाम की जो भारतीय क्रिकेटर हैं जाहिर खान, 1978 को जन्म हुआ था श्रोताओं इनका। एंड एक बॉलीवुड अभिनेत्री का भी जन्म हुआ और एक बहुत ही पॉपुलर संगीतकार की जोड़ी जिनका आज के दिन जन्म हुआ था सर 1977 में, ये आई एम टॉकिंग अबाउट वाजिद खान साहब जी का जो है जन्म हुआ, मतलब साजिद वाजिद की एक रॉकिंग जोड़ी जिसने अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया है। एग्जैक्टली बाकी प्रसिद्ध गज़ल

0: और ठुमरी गायिका 1914 में जन्म हुआ था बेगम अख्तर जी का, आज ही के दिन श्रोताओं। तो साथियों, आज के दिन से जुड़ी थी कुछ खास बातें जो आपके साथ साझा कर रहे थे। आज का दिन क्यों विशेष है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और बाकी हमारे साथ डॉक्टर वर्षिका जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं, हाय आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो मैम? आई एम एब्सोल्युटली गुड एंड थैंक यू सो मच। आप 90s के गाने प्ले करके ना मॉर्निंग एकदम सुपर डुपर फ्रेश बना देते हो, क्या बात है। डॉक्टर वर्षिका जी, हमारी कोशिश होती है कि अपने गानों से और अपनी बातों से फुल ऑन माहौल स्टेशन पर बनाया जाए। और देखिए, सुबह सुबह जो होता है ना, सिर्फ एक गाने ही होते हैं जो हमें थोड़ा सा जो ना फ्रेश फील करा सकते हैं ना, वरना तो आप ही बोलोगे कौन है ये जो सुबह सुबह रेडियो पर बैठा है। और अक्सर मेरे दोस्त बोलते हैं हमें सिर्फ रेडियो पे तीन ही चीज अच्छी लगती है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं हमें सिर्फ रेडियो पे तीन बातें अच्छी लगती हैं, आरजे आनंद की आवाज, आरजे आनंद के गाने और उसकी प्यारी बात। सही कहा ना मैंने? आजकल बार वो ट्रेन में चला था ना, एक कचौड़ी दो समोसा, करेक्ट। बट मैं इसका मैंने भी एक नया बनाया, एक कचौड़ी दो समोसा, आरजे आनंद पर है पूरे मुरादाबाद को भरोसा। तो आपके भरोसे को कायम रखना मेरा काम है बॉस। अभी आने वाला गाना वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, क्या सॉन्ग है यार, मुझे बहुत पसंद है गाना। मैं थोड़ा सा इस पे डांस करके आता हूँ। मैं पूछ के आता हूँ क्या जादू किया तुषार साहब,
1: क्या जादू किया, क्या जादू किया
0: एवरीबॉडी,
1: अखियों ने रात क्या जादू किया।
0: बहुत ही बढ़िया गाना, वॉल्यूम बढ़ाओ, ऐसे सुनते जाओ आनंद को। एक छोटा सा सवाल लेकर आता हूँ वापस इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वेरी गुड मॉर्निंग मुरादाबाद।
2: मैंने

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: देखो भैया, नाचते रहिए, नचाते रहिए और मेरे साथ अपनी घड़ियों को मिलाते रहिए। सुबह के 9:01 हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
0: देखो भैया, बात ऐसी है, 9:02 एंड दिस इज माय लास्ट आवर एंड दिस इज माय सेकंड आवर, बिकॉज यहीं पर आपसे होती है काम की बात। और एक छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन भी है, लेकिन उससे पहले कुछ और एड ब्रेक हैं, बड़े छोटे से एड ब्रेक हैं, उसके बाद जल्दी से इमीडिएटली मैं वापस आ रहा हूँ। शादी का प्लान कर रहे हो तो यहाँ जा सकते हो।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 rooms, spa and much more.
4: Book now 9258253081 and for more details WhatsApp 9258253081.
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: चलो जी, अब उनकी एंट्री हो गई है स्टेशन ऑफ द नेशन पे एंड जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप सभी का वेलकम बैक है वंस अगेन। और आप लोग भी हमारे साथ दिल से दिल तक ये कनेक्शन बना सकते हो यार, जहाँ ढेर सारी बातें होती हैं और आज पता नहीं क्यों गले में खिचखिच है, गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, बट मैं भी बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी हूँ भाई, अपने दोस्तों के साथ फुल एनर्जी के साथ तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये गला मेरा साथ देना दे, लेकिन मैं आपका साथ डेफिनेटली दूंगा यार। वंस अगेन वेलकम बैक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी परिवार, या फिर ऑप्शन डी सच्चे दोस्त, या ऑप्शन ए बी सी डी ई सुकून। बताओ मुझे जरा क्या लगता है आपको। ये जो मैंने ए बी सी डी बोला ना, वो इसलिए बोला तो मैं बीच बीच में कभी कभी भूल जाता हूँ। अरे यार, इससे फनी फनी फनी से जोक्स अपार्ट, ठीक है, मैं ये थोड़ी बहुत आपके साथ मस्ती कर लेता हूँ, आप मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हो, इसका आंसर जरूर बताना, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पैसा, प्यार, परिवार, सच्चे दोस्त, या फिर सुकून? लाइफ में क्या चाहिए आपको इन चीजों में से? तो आपको लगता है लाइफ में यार आनंद सबसे ज्यादा जरूरी ना, मेरे को ये लगता है भाई ये चीज होनी चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए, या फैमिली होनी चाहिए, फिर सच्चे फ्रेंड्स होने चाहिए, या फिर लाइफ में एक बढ़िया सा सुकून होना चाहिए। यार आनंद, जिंदगी में सुकून है ना तो सब कुछ है यार। भाई जो भी लगता है ना आपको, जो भी लगता है परजाई जी, तुसी भी बता सकते हो मैंने मैसेज करके जी, साढ़े नंबर विच नंबर बहुत ही आसान है, मैं क्या जी 9837896896 नंबर विच मैसेज करो यार। हाय हाय, आने वाला गाना
8: दुनिया में
0: होय होय
8: लोगों को
0: सच्ची बात
8: कभी हो,
0: ये गाना मेरी दोस्त को बड़ा पसंद है। आई डोंट नो क्या है इस गाने में, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ट्रैक 2010 में मूवी आई, होय होय आपकी मॉर्निंग को एकदम रिचार्ज बनाने के लिए ये अल्टीमेट सॉन्ग, जरा सी देर में आप एंजॉय करेंगे, एक बार जरा धकड़ आवाज में बोल दो मैडम, पर्दा पर्दा ओए होए
8: पर्दा पर्दा, हाँ अपनों से कैसा पर्दा,
0: आजकल अपनों से तो पर्दे

भैया मैं ये नहीं बोलूंगा, फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं मेरे साथ, ऐसे ही ट्यून इन रहिए यार, अभी लौट के आते हैं आपसे और भी बात करेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पर। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM। बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।

सुबह सुबह यार आप झूठ बोल रहे हो, आपका दिल आरजे आनंद के शो पे लगता है। कबीर सिंह का गाना

0: ऑफिस आने में जब भी हो जाता हूँ लेट लगता है थोड़ा थोड़ा खतरा। घड़ी उठाकर देखो यार, हो गए हैं सुबह के 9:17।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या बात है जी, बिल्कुल नाचने के लिए और नचाने के लिए तो आरजे आनंद आता है। ये वेंसडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही फोन चलाने की आदत साबित हो सकती है खतरनाक। एग्जैक्टली आपको बता दें, ग्लास डिजिटल कंज्यूमर सर्वे 2024 के मुताबिक 84% भारतीय सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया और ईमेल से ही लोगों के दिन की शुरुआत होती है। ऐसे रिसर्च में पता लगा है और ये रिसर्च कहती है कि फोकस, स्ट्रेस, मूड और ब्रेन जो फंक्शन जो आपकी फंक्शनिंग करता है उस पर ये बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। इस रिसर्च के मुताबिक ये आदत मानसिक और शारीरिक जो आपकी ये सेहत है इसको प्रभावित कर सकती है। तो सुबह उठते ही अगर आप अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, कहां है मेरा फोन, अरे रिंकू पिंकू चिंकू मेरा फोन कहां गया। तो भैया ये सब मत करो भाई, दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो रिसर्च हुई 2024 में इसके अकॉर्डिंग इस रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि 84% भारतीयों की सबसे पहली आदत है कि वो उठते ही अपने फोन पर फोकस करते हैं, जिससे उनका मूड और स्ट्रेस जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देखो मूड और स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह फोन पर नेगेटिव खबरें, काम के मैसेज या सोशल मीडिया कंटेंट देखने से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है, ऐसे रिसर्च कहती है। दूसरों की तुलना करने की आदत जो है उस पर भी ये असर डालती है, मतलब ये भी हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता था यार। एक और इसमें रिसर्च में पता लगा है कि सुबह ही फोन क्यों देखते हैं लोग, और दूसरा सुबह ही फोन क्यों ना देखें, मतलब उठते ही फोन क्यों ना देखें, इस पर भी हम बात कर सकते हैं भाई। जैसे कि लोगों की आदत होती है, इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भाई देखो 20 मिनट्स तो फोन नहीं चेक करता हूं भाई, उसके बाद तो फोन ही हाथ में रहता है, बिकॉज हमारा तो काम ही फोन चेक आउट करने का, यार क्या चल रहा है देश दुनिया में सब कुछ पता रहता है। पर हर चीज हम इस पर डिपेंड नहीं रखते भाई, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए लाइफ में, है ना, जैसे हम करती हैं। देखो भाई उठते ही फोन क्यों ना देखें इसके बारे में बताते हैं। सुबह ब्रेन अभी स्लीप जो है बताया जाता है कि वो बाहर से नहीं आया होता है, मतलब पूरी तरीके से नींद से जागा नहीं होता, और हम तुरंत अपनी मंद मंद मीठी मीठी आंखों में नींद भरी होती है, उसी के साथ फोन चेक करते हैं, तुरंत नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब जब हम देखते हैं तो ये ब्रेन पर इंफॉर्मेशन लोड बढ़ा देती है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। एंड कितनी देर फोन से दूर रहें चलिए बताते हैं। जागने के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट सोशल मीडिया, ईमेल और गैर जरूरी नोटिफिकेशन से दूरी बनाए रखें। इसी दौरान ब्रेन को स्वाभाविक रूप से एक्टिव होने का समय दें। जब सुबह सुबह आप अपने लिए 20 मिनट्स निकालते हैं और फोन से आप दूर रहते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, आपकी फोकस की जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाती है, तो अच्छी बात है ना। तो सुबह सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बार बार अटेंशन स्विच होती है, इसीलिए देखिए भाई साहब इससे जो है मैं आपको सच बताऊं, थोड़ा सा साइड रखो, पहले 20 मिनट अपने लिए निकालो, जो आप करना चाहते हैं उस पर जो है ध्यान दो, सुबह सुबह मेडिटेट करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, ध्यान लगाओ, वो जरूरी है यार। और देखो फोकस पर इसका असर डेफिनेटली पड़ता है, सुबह सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से अटेंशन बार बार स्विच होती है, इससे पढ़ाई, ऑफिस या जरूरी कामों पर लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो सकता है। तो ये 2024 की रिसर्च के मुताबिक 84% भारतीय सुबह उठते ही फोन इस्तेमाल करते हैं, अगर उनमें से एक आप भी हैं तो जरा संभल जाओ यार, है ना। और अभी और कुछ काम की बातें आपको बताऊंगा ऐसी ही, ये सारी कड़क अपडेट आपको पता लगती है आपके दोस्त आनंद के साथ। अगर आप भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी बढ़िया बातें सुनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्यून इन करना होगा आरजे आनंद को ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मेरे पास ढेर सारे व्हाट्सएप पहुंच चुके हैं, हमारे पास सुनीता का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद, मुझे तो लगता है अच्छी लाइफ में ना, अगर आपको जिंदगी में बढ़िया, जैसे मैंने सवाल पूछा था ना जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, तो कह रहे अगर जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है तो वो है पैसा, अगर पैसा है तो सब कुछ अपना है। सुनीता जी लाइफ में पैसा है और सुकून नहीं है तो ये भी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरे पास शिखा का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, यार मैं बताऊं मुझे जिंदगी में सबसे जरूरी जो लगता है वो परिवार लगता है, अगर परिवार आपके साथ है तो सब कुछ बढ़िया है। आई एग्री विद यू यार, आपको क्या लगता है दोस्तों, आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है आपके हिसाब से, पैसा, प्यार, परिवार, सच्चे दोस्त या सुकून, इन पांच ऑप्शंस में से क्या लगता है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसको प्रायोरिटी देंगे जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है आपके लिए, पैसा, प्यार, परिवार, सच्चे दोस्त या सुकून। व्हाट्सएप करो, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपना बढ़िया सा आंसर सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पे। कहीं ट्रैफिक है, कहीं जाम में फंसे हो तो भी मुझे बता सकते हो।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
4: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है दिन शांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: भैया मैं चाहती हूँ कि शादी पर आप सबसे खूबसूरत दिखो।
8: अरे बिल्कुल, अपना राज कलेक्शन है ना, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 999 में ब्लेजर बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर भी उपलब्ध है, यानी कि 2 ब्लेजर के साथ 1 ब्लेजर मुफ्त। तो आज ही आए राज कलेक्शन,
7: ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वैसे हमारी छोई सुन ना रही हमारी बात, ऐसे बरेली में बोलते हैं भाई साहब, हमको पता नहीं है, वैसे ऐसे हमने सुना था, लेकिन चलिए फिलहाल अब आगे की बात सुनते हैं। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को 9:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में, ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे प्यारे लिसनर्स एक्टिवेट हो गए हैं जी। आप सभी का वेलकम बैक है वंस अगेन, आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। मैं क्या छड्डो यार ये सेड़ फेड़ की आवाज, तुसी डाउनलोड करो सारी ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ डाउनलोड करो एफएम मुरादाबाद की ऐप, आपको मिल जाएगी हमारे रेडियो की, और कनेक्ट हो जाओ दिल से दिल तक यार। चलो आगे बढ़ती है और अभी आपको बताते हैं, देखो सोशल मीडिया जो है ना कमाल की चीज उन लोगों के लिए जो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक लड़की है दिल्ली की रहने वाली, 60,000 की नौकरी छोड़ी इस लड़की ने और 1.1 लाख रुपीज से ज्यादा इसने कमा लिए हैं। कंटेंट क्रिएशन ने इसकी किस्मत बदल दी है। देखिए लोगों को लगता है कि लाखों फॉलोवर होंगे तो भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यार ये दिल्ली की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर है जिसके फॉलोवर लाखों में तो नहीं है, सिर्फ हजारों में है, और उन्होंने इतनी अच्छी खासी कमाई कर दी है। अपनी 60,000 की कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के सोशल मीडिया चुना एंड एक सही रास्ते को फॉलो करते हुए 14,000 फॉलोवर लेके बैठी हुई लड़की है, और इसके बाद इन्होंने एक महीने के अंदर इतने सारे अच्छे ब्रांड से इतने बढ़िया पैसे छापे हैं, उसके बाद जो है अब इनका कमाल हो गया है भाई साहब, कमाल हो गया है, और इंस्पिरेशन बन गई है उन सभी लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया में, जो सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ बढ़िया रॉक मचाना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। उपासना ये लड़की है 60,000 रुपये की जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर आई एंड ये इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी ताकि कोई रोक टोक ना हो। करियर की शुरुआत जो है इन्होंने इंस्टाग्राम से की, 14,000 फॉलोवर होने के बावजूद भी सितंबर महीने में इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड्स कोलैबोरेशंस के जरिए काफ़ी अच्छे पैसे कमाए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी जो सोशल मीडिया की दुनिया में आना चाहते हैं, है ना। अब देखिए आप अपनी जॉब छोड़ के मत लग जाना भाई साहब, ये उनके लिए है जो सच में दिल से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके जिनको सच में लगन होती है ना भाई, वो जॉब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि आपको फुल टाइम देना चाहिए, आपका अच्छा जा रहा है, तो डेफिनेटली आप करो ट्राई, लेकिन तुरंत जॉब छोड़ना इट्स नॉट गुड यार। हो सकता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो कि उन्होंने वो चीज कर ली, बट आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपका किसी भी चीज में डेडिकेशन है, आपको लगता है ये चीज आप कर सकते हैं, वो काम आपको जरूर करना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं रेडियो के जरिए यही बोलूंगा, जिस चीज़ में आपका बच्चा अव्वल है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, प्लीज़ उसको वो करने दें। जब आप उस बच्चे को वो करने देती हैं तो वो उसमें अपना 100% एफर्ट्स डालते हैं। फिलहाल तो वासना के लिए ढेर सारी ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन जी। ऐसे हम तो भैया ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, जिनके सपने बड़े होते हैं, बस वो स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाते हैं।

0: चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आपके मैसेज बहुत सारे पहुंचे हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको बता देते हैं कि मतलब मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं। कोई कह रहा है मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, किसी ने लिखा है मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, किसी ने लिखा है मुझे अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, तो किसी ने लिखा है लाइफ में आनंद जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुकून। देखिए अगर ज़िंदगी में सुकून है ना तो लाइफ में सब कुछ है, पैसा वैसा सब आता रहता है, पहले सुकून लेकर आओ ज़िंदगी में। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, सही सही बातें आप लोग कर लेते हो कभी कभी, मतलब दिल को सुकून मिल जाता है यार, कितने इंटेलिजेंट हो गए ना हमारे मुरादाबादी रेडियो सुन सुन के। हाँ देखो मेरे पास मैसेज आया है नाइमुल अकरम जी का, ये लिखते हैं आनंद भाई क्या हाल चाल है, मुझे लगता है जिंदगी में सुकून है तो सब कुछ है, इनको सुकून चाहिए। गुलाम जिलानी पाशा कुंदरकी से जुड़े हैं। डॉक्टर वर्षिका मुझे लिखती हैं, हेलो सर, सुकून जिंदगी में है तो सब कुछ बढ़िया, और सबसे ज्यादा जरूरी सुकून है आई थिंक अगर वो होगा तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स सबको ही साथ होंगे। आई थिंक आई एग्री विद यू, मुझे लगता है इसमें आई थिंक की जरूरत तो नहीं है, वैसे आई थिंक बोलना बनता है कभी कभी, लेकिन हो सकता है यार, लाइफ में सुकून है तो सब कुछ है। राधे राधे आनंद जी, सुकून बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा है अलका वर्मा जी का बुद्धि बिहार से। मेरे पास मनप्रीत का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हो पाजी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार, जय श्री राम, क्या हाल चाल। मुंबई महाराष्ट्र से मैसेज आया है, ये बबलू भैया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कहना चाय मत पीना होठों की शान चली जाएगी, आरजे आनंद को सुन लेना बिंदास मॉर्निंग बन जाएगी। वाह वाह, मतलब आपको यही लिखना था है, ऐसी राइमिंग लिखोगे बबलू जी आप, बहुत ही सही भाई, बहुत ही सही, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, ये तो आपकी मोहब्बत है भैया, आप देखिए आपकी मोहब्बत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। हेलो सर, कैसे हाल चाल है आनंद भाई, अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं इमगिरी कॉलोनी से, लिखते हैं आनंद जी जिंदगी में थोड़ी सी सब चीज़ों की ज़रूरत है भाई, लेकिन एक बात बताऊं मैं, अगर एक भी चीज़ ना होने पर जो है दिक्कत कितनी होती है, तो मेरे हिसाब से सारे ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन बस थोड़े थोड़े होने चाहिए। ओहो क्या बात है यार अमित जी, आप तो मतलब हर चीज़ को ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हो हैं जी। ऊपर वाला कह रहा है तथास्तु, कल्याण हो बेटा। हेलो सर अफरोज फातिमा, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार तभी होगा जब जिंदगी में पैसा होगा, रिश्तेदार भी तभी होंगे जब जिंदगी में पैसा होगा, और देखिए गरीब के साथ कोई नहीं होता सर, इसीलिए लाइफ में पैसा होना बहुत जरूरी है यार। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होता ना, तो फिर लाइफ थोड़ी सी जो है ना अलग ट्रैक पे चली जाती है। इनको सुन लेते हैं जरा, ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट जरा स्पीड बढ़ा के इनकी आवाज सुनते हैं।
1: नमस्कार, राधे राधे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे,
0: exactly.
1: अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी हर आदमी को किसी न किसी चीज के लिए हमेशा फकीर बनाए रखती है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संसार में संत नहीं। नमस्कार, राधे राधे, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पाकबड़ा से, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है। भेजिए अच्छे अच्छे एसएमएस, अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट, सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को, और हो सकता है सारे संसार को, अपनों तक पहुँचने का एक आसान सा जरिया एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: राधे राधे राधे राधे राधे। देखो यार ये होते हैं हमारे प्यारे लिसनर, मतलब इतनी तगड़ी आवाज भेजते हैं सुन के ही, मतलब मन जो है प्रसन्न हो जाता है। भैया बहुत बढ़िया यार, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ स्पेशल और है जो चीज़ें आपको बतानी है, बहुत सारी अपडेट अभी लोकल शहर की भी बतानी है अपनी। भाई मुरादाबाद का रेडियो सुन रहे हो तो मुरादाबाद की जानकारी यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी यार, वो एक्सपेक्टेशन आपको सिर्फ आनंद से होती है ना। हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ऐसी

0: सुपरमैन एंजॉय करो
1: हो लड़के सुपरमैन
0: आए होए
1: ना कोई टीम ना कोई प्लान
0: बहुत ही बेहतरीन ट्रैक अभी आप एंजॉय करने वाले हैं काश मेरे लिए भी ऐसा हो जाए यार मैनिफेस्ट कर सकते हो यार चलो आज की सुबह
2: भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने
0: मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट व्हाट्सएप करो अक्टूबर के महीने में क्या कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं इस पे बात करने वाला हूँ अभी लौट कर आ रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे डोंट गो एनीवेयर गुड मॉर्निंग

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop.
1: देखो भाई, मजा तो बिल्कुल आएगा। और अभी मैं भी लौट कर आ रहा हूँ, एक थोड़ा सा सवाल भी आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जहां भी जा रहे हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट यार। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह कुछ अच्छा दिमाग में लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके जा रहे हो तो मैं आपको अभी आपके दिमाग में एक अच्छी चीज जानने वाला हूँ। लेकिन अगर आप कहीं जाम में हैं, आप चाहे गागन पे हैं, आप स्टेशन रूट पर हैं, आप कांच रूट पर हैं, आप पीलीकोठी की तरफ हैं, आप इधर अपने मानसरोवर की तरफ हैं, आप जहां भी हैं, मुझे इतनी एरियाज के नाम अभी याद आ रहे हैं रैंडम। बाकी आप कहीं पे भी हैं, अगर कहीं जाम वाम है तो आप बता

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
6: देखो भाई, बिल्कुल मैं आपको नचाने के लिए डेली आता हूँ, और आज वेंसडे है यानी बुधवार का दिन है, बहुत ही प्यारी सुबह है, और आज 7 अक्टूबर की तारीख हो गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ पर वेदर बताने आ गया हूँ, बहुत ज़रूरी है मौसम के हालचाल बताना, कैसा रहने वाला है आज का वेदर, इस पर बात कर लेते हैं फटाफट से जी। आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में मेरे को सुन रहे हैं यार, थैंक यू सो मच, मुझे बताया है, सब लोग बहुत जल्दी में हैं, बहुत जोश के साथ गाड़ी चला रहे हैं, और पूरी एकदम सीट बेल्ट लगा के, एकदम सीट बेल्ट लगा के आप लोग निकल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सबको अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे निकल रहे हो, भैया चलो ऑल द वे बेस्ट। अभी वेदर की बात करें तो भैया देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर है, आपका क्या दिखा रहा है टेम्परेचर, आई डोंट नो, 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं, आज की सुबह तो चली रही है, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है यार कहीं पे ना बारिश वारिश हो गई है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब मौसम में अचानक से ना ऐसी तब्दीली आ गई है, पता नहीं चल रहा है, ऐसे में अपना ख्याल रखो। देखो मेरी गली की बैंड बज गई है, मैं नहीं चाहता आपकी गली की भी बैंड बजे, की करिए। अगले महीने शादियों का सीजन आ रहा है, इस महीने तो फेस्टिवल है बहुत सारे। ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो 78% रहने वाली है, बाकी ये टेम्परेचर हाईएस्ट की बात करूँ तो 29 डिग्री पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करें तो 22 डिग्री तक रह सकता है, मतलब हल्के हल्के बादल भी आपको दिखने वाले हैं आज। कुल मिला के मौसम बहुत औसम, लौट कर आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी फिल्म के साथ, गेस्ट करनी है एक मूवी, बहुत ही 90s की सुपर हिट मूवी है, अगर आपने पहचान लिया तो आप बनेंगे आज सुपरस्टार और जीतेंगे रानी नाइट कॉन्सर्ट के पास, जीतना चाहते हो तो बस आप ऐसे ट्यून इन रहो आनंद के साथ। गुड मॉर्निंग।

नारी के नौ रूप, ये बहुत ही जल्दी आपके बीच में पहुंचेगा। इस नवरात्रि एक नया सेगमेंट लेकर आने वाले हम, क्या स्पेशल होगा इसमें अगर आपको ये जानना है, डेफिनेटली आपको जानना तो होगा यार, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा ना हमारे साथ। फिलहाल के लिए घड़ी मुझे इशारा कर रही कि बेटा जरा बताओ, बहुत ही अच्छी फिल्म है आज की, और ये मूवी मैंने रिसेंटली देखी है, बहुत ही कमाल की मुझे फिल्म लगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फिल्म के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट है, मूवी बहुत ही अल्टीमेट है, एंड मतलब बहुत ही फनी भी है, कॉमेडी भी है मूवी के अंदर, और मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस मूवी को पकड़ लोगे तो मजा आ जाएगा, और आप जीतोगे अमेजिंग कॉन्सर्ट पासेस डानी नाइट के। अगर आप जीत सकते हो बाजी तो बिल्कुल जीत लो यार, मौका आपके पास भी है आज की सुबह। एंड कुछ भी नहीं करना है आपने, बस मेरे सवाल का जवाब देना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, बस इस मूवी को आइडेंटिफाई करना है। मूवी बहुत ही अच्छी है यार, नहीं नहीं ये मूवी नहीं, ये आने वाला गाना है, जरा सी देर में आप तक पहुंचेगा। ओए होए, अच्छा जी, ऐसे कौन बोलता है यार। फिलहाल इस गाने को ब्रेक देते हुए आगे बढ़ते हैं, आज की फिल्म को आपको पकड़ना है, बहुत ही अच्छी मूवी है आज की फिल्म, बहुत ही अल्टीमेट है जैसे मैंने बताया, तो वॉल्यूम बढ़ाओ पहले, वेरी गुड। चलो अब मूवी की स्टोरी आपको बताता हूँ, ये आपको गेस करना है कौन सी फिल्म है। तो आज की फिल्म में दो ऐसे लड़के हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन काम करने में दोनों का ही हाथ थोड़ा सा तंग है। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि दोनों को एक ही अमीर लड़की से प्यार होता है, और दोनों ही मतलब जो है एक अमीर लड़की को पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की की पहचान और उसके साथ आए जो वो लोग लेकर आती है उससे पूरा खेल बदल जाता है। फिल्म में कॉमेडी है, गलतफहमियां हैं, ढेर सारे मजेदार किरदार हैं, 90s की बड़ी अच्छी फिल्म है। अगर आप पहचान पा रहे हैं मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ, और इस मूवी के कुछ और क्लू आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी फिलहाल स्टोरी रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी मैंने अलग स्टाइल में बनाई है। आज की एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो लड़के होते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, एंड काम करने में दोनों ही निकम्मे होते हैं थोड़े से, दोनों ही एक अमीर लड़की को पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की की पहचान उसके साथ आए लोगों को लेकर पूरा खेल बदल जाता है। फिल्म के अंदर कॉमेडी बहुत अच्छी है, कॉमेडी बहुत बढ़िया है, ढेर सारी गलत फहमियाँ हैं, मज़ेदार किरदार भी हैं, और अपने टाइम की बड़ी पॉपुलर मूवी है। अगर आप समझ गए कौन से फिल्म की बात कर रहा हूं तो आप मुझे जरा बताओ, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896। बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी फिल्म है यार, और दो दोस्तों की जोड़ी है इस मूवी की।

एंड मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म है यार. मैं आपको बहुत सारी हिंट देने वाला हूँ उस मूवी के थोड़ी देर में. अगर आप समझ गए तो मुझे व्हाट्सएप करोगे आप. मेरा भी जी कर रहा है कि मैं इस गाने में नाच के आ जाऊं भाई. चलो आप भी मेरे साथ हल्का फुल्का डांस कर लो यार. हाय हाय, वेरी गुड मॉर्निंग मुरादाबाद.

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी।
4: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
5: कौन है ये?
4: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
6: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
4: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
7: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: ये गाने ना हमारे पावर हाउस है यार। चलो जी, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस। एक बार जरा घड़ी मिला लो। मैं क्या जी, सुबह के 10:01 हो रहे हैं यार।
1: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: बहुत सारे ऐसे डेज हैं जो आज मनाए जाते हैं। आज के दिन वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है ना, विश्व कपास दिवस है ना। अभी आप ये मत पूछना कि ये क्या होते हैं आनंद, बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे पता है यार, आप सब जानते हैं है ना। आज का दिन बहुत स्पेशल है और भी तमाम सारी चीज़ें आज सेलिब्रेट की जाती हैं। नेशनल इंटरनेशनल डेज की बात करूँ तो मैं, आपके घरों में जो LED बल्ब लगे होते हैं ना, ये LED वाले, इनको भी जो है आज ही के दिन इंपॉर्टेंट दी जाती है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय आता है, वैसे ही आज इनका भी समय आ गया है। 10:03 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग, और अभी आपने ट्यूनिंग किया है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिलहाल अभी आनंद कहता है जी, आप जहां भी जा रहे हैं बस पहुंचते रहिए। मैं कह रहा हूं अपने घर में आप मुझे सुन रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है यार। अच्छा, मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले आपको एक मूवी के बारे में बताया था कि आपको एक पिक्चर गेस करनी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे उस पर आंसर्स किए हैं कि भैया ऐसे और वैसे, ये वाली फिल्म है, वो वाली फिल्म है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको ना अभी सही हिंट दूंगा तो शायद आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर जाओगे कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको ना थोड़ा सा एक मतलब जो है क्लू दूंगा, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा मतलब हिंट मिल जाएगा एक तरीके से, है ना। तो मैं अभी आपको देने वाला हूं एक छोटा सा हिंट, लेकिन उससे पहले जरा कुछ अपडेट भी आपको फटाफट दे देता हूँ, है ना। अभी बहुत ज़्यादा जो है आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपने ड्राई फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। भैया आपको बता दें, दिवाली पर महंगे पड़ेंगे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे। एग्जैक्टली, पिस्ता जो है ये 70% जो है बताया जा रहा महंगा हो सकता है। बादाम जो है 25% तक जो है उस पर रेट थोड़े बढ़ सकते हैं। और काजू जो है, काजू किशमिश एंड खजूर इनकी भी जो है भाव बढ़ सकते हैं फेस्टिवल से पहले, दिवाली से पहले जो है। ऑफकोर्स महंगे तो हो ही जाते हैं यार, लेकिन अभी हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि कितने महंगे हो सकते हैं। एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता ना, लेकिन दिवाली पर अगर आप किसी को ड्राई फ्रूट्स का डब्बा देने का प्लान कर रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ मत देना था। नहीं भाई, दे सकते हो, कतई गलत बात कर दी मैंने। ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं है। मतलब आप देखो यार, महंगी और सस्ती तो होती रहती हैं चीज़ें, बट जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ में आपको खुशी है, वो चीज़ आप डेफिनेटली दे सकते हो। फिलहाल आपको बता दें, आप जो है ChatGPT में दिखेंगे वर्चुअल विज्ञापन, फोटो बनते समय ब्रांड्स करेंगे प्रमोशन। एग्जैक्टली, अब ऐसा भी होने वाला है ChatGPT के अंदर। बहुत सारे लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है यार। ChatGPT में अब जो है AI से तस्वीरें बनाते समय विज्ञापन भी नजर आ सकते हैं। OpenAI इस नए विजुअल एंड एक नए फॉर्मेट टेस्टिंग के साथ जो है वो आपको अब नए रूप में देखने को मिलेगा। आफ्टर ऑल AI भी अब जो है ChatGPT इतना ज़्यादा ट्रेंड में है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है ChatGPT को लेकर। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ChatGPT पे चले जाते हैं, बच्चे हो या बड़े, हर किसी को इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। तो अब जो है आप में आप जब भी अपनी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपको इसमें वर्चुअल विज्ञापन भी नज़र आ सकते हैं। भैया देखो, फेस्टिव टाइम है, ऐसे में फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ। कहा जा रहा है कि केले जो है ना, बनाना उसको केमिकल से पकाया जा रहा है। एग्जैक्टली, है ना। तो कुछ रिसर्च की जा रही है कि भैया जो फ्रूट्स है ना, अगर आप खा रहे हैं तो उनके बारे में जरा कुछ चीज़ें इसको जानना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। कभी पता चल रहा है हम खा तो रहे हैं अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए और बाद में उसका असर क्या हो रहा है, नेगेटिव। अभी बात करते हैं अपने मुरादाबाद शहर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको उस फिल्म के बारे में जिसका आंसर आपने मेरे को देना है, और उसके बाद आपने जीतने कुछ एक्साइटिंग दानिया नाइट कॉन्सर्ट है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है मैंने। आज वेंसडे है और इतने बढ़िया गाने चल रहे हैं आज की सुबह, और क्या चाहिए यार। देखो ये बच्चा आपके लिए सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है। मैंने आज आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म बताई थी कि आपको गेस करनी है लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके गेस करके बताई है फिल्म, लेकिन उसका सही मैं थोड़ा सा आपको क्लू दूंगा, लेकिन पहले स्टोरी अगेन रिपीट करूंगा जो मैंने आज की सुबह आपसे पूछी थी कि आज मैं कौन सी फिल्म के बारे में बात करूँ। आज आपको गेस करनी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। इस फिल्म के अंदर ऐसे दो लड़के हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन काम करने में दोनों ही आलसी और निकम्मे होते हैं। दोनों का एक ही सपना होता है अमीर लड़की को पटाने का, और ये कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की की पहचान उसके साथ आए लोगों को लेकर पूरा खेल ही बदल जाता है। फिल्म के अंदर कॉमेडी है, गलतफहमी है और ढेर सारे मजेदार किरदार भी हैं। एंड इस मूवी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो एक जो कैरेक्टर है उसका नाम है अमर मनोहर, और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रेम। एग्जैक्टली, और प्रेम एक ही हीरो का सबसे ज़्यादा फिल्मों में नाम रहा है। अब आप तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी मूवी है। मैंने सारे क्लू आपको दे दिए आज की सुबह, इससे ज़्यादा और क्या ही दे सकते हैं जी। आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, जहाँ बातें करता है आनंद दिल से दिल तक कि कौन सी फिल्म है जिसके बारे में बात करूँ। अमर नाम का युवक जो होता है ना, वो मुरली मनोहर जी का बेटा होता है, थोड़ा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही मूर्ख बन जाता है। और ये जो प्रेम साहब है ना, ये प्रेम जी का जो किरदार निभा रहे हैं, ये थोड़े से अलग किस्म के लड़के होते हैं मूवी के अंदर। हालांकि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों की स्टोरी बहुत बढ़िया है। अब जल्दी से बताओ कौन सी पिक्चर है, कौन सी फिल्म की बात करूँ, बहुत ही पॉपुलर मूवी है अपने टाइम की। व्हाट्सएप करो मुझे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बताओ मुझे या इंस्टाग्राम पे आके DM करो आप हमें। ऑफिशियल ID है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मुझे ढूंढ सकते हो, रेडियो वाला आनंद के नाम से। फटाफट जाओ DM करो अपने नाम के साथ अपना राइट आंसर और जीतो आने वाली डांडिया नाइट के अमेजिंग कॉन्सर्ट के पास। कहाँ डांडिया नाइट हो रही है, लौट कर आता हूँ फिर बता।

0: भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

10:17 हो गए, खुशी स्टूडियो में आ गई है। मेरा जाने का समय हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले आपको बता दूं, अगर मैं मूंग की दाल का मैं भी ठेला लगा लूं तो शायद बढ़िया चलेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल मुरादाबादीज। मुरादाबाद की दाल का क्रेज अपने आप में बहुत अलग है, लेकिन जो लोग मुरादाबाद की दाल का स्टॉल लगाते हैं, मुरादाबाद दाल कारोबारियों को जो है, जो लोग मुरादाबाद दाल का कारोबार करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं अपने, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि भैया अब उनको लोन मिलेगा ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा इंप्रूव करें, इनहेंस करें, और अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ जी, तो मुरादाबादी से अगर आप मुरादाबाद में अपनी मुरादाबाद की दाल का छोटा सा स्टॉल लगा के अगर आप बड़ा उसको करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ जी, तो भैया अब आपको जो है इस पर लोन मिलेगा। मुरादाबाद जनपद को 48 लाख रुपए के बजट जो है वो जारी किया गया। आपको बता दें, अब अगर आप अपने मुरादाबाद में अपने दाल का कोई स्टॉल लगाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अब आप अपनी दाल के स्टॉल के लिए लोन ले सकते हैं, अप्लाई इसके लिए आप कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि यार हर किसी को अपना मतलब काम करने का अधिकार है, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है यार। और अगर आप मुरादाबाद का स्टॉल लगाते हैं तो मेरी नज़र में आप मुरादाबाद के हीरो हो यार। ये वो दाल है जो देश विदेश में फेमस है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बनाकर जगह बैठी हुई ये दाल यार अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एक अच्छी खबर है भाई साहब, मुरादाबाद में मुरादाबाद दाल से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को अब लोन वो देगी, मतलब जो अब आपके लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा अगर आप मुरादाबाद में हैं और आप ये दाल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल रामलीला में जो है भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का जन्म जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। अयोध्या वासियों ने ठुमके लगाए और मैं भी रामलीला के दर्शन करने पहुंच जाता हूं, बहुत ही अच्छा लगता है यार। और बाकी आपको एक चीज़ और बताते चलें फटाफट से, अगर आप इम्पीरियल चौराहे की तरफ जाते हैं स्टेशन पे तो आपको वहाँ पर एक ब्रिज दिखेगा। अभी जो एक पुल है वो बनाया गया है, हालांकि अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। जब भी आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर एक इम्पीरियल चौराहा है, उसके बराबर में एक पुल आप देखेंगे, बड़ा सा बड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा सा है जो बना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो पुल से जो है काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। जो हम ये जो अपनी जान को ख़तरे में डाल के ऐसे रोड को क्रॉस करते हैं ना, उसके लिए तो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप जब भी कभी इम्पीरियल चौराहे की तरफ जा रहे हैं, बुद्ध बाजार की तरफ जा रहे हैं, स्टेशन आप जा रहे हैं, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा पुल है ना जो बन रहा है वहां पर, अभी उसका काम चल रहा है। और बेसिकली पुल तो रेडी है लेकिन अभी उसको हरी झंडी नहीं दी गई, कब से वो शुरू होगा, लेकिन जल्दी शुरू होगा। ये एक अच्छी चीज है कि चलो भाई अब जो लोग उधर रोड क्रॉस करते हैं, उन जिनको रिस्क होता है कि भाई नहीं हम तो नहीं जा रहे, अब उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि वो अब आराम से उस पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अभी नहीं, फिलहाल जैसी वो उस पर काम जारी, जैसी शुरू होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये अच्छी चीज है। 10:20 हो गए, चलो ये थी कुछ काम की बात। मुरादाबाद में ना दालें महंगी हो गई हैं भाई साहब, कौन सी दाल पे कितने रुपए बढ़ गए ये मैं खुशी को बोल के जाऊंगा, वो जरूर आपको बताएगी। फिलहाल मैं अभी लौट कर आता हूँ और एक लकी कॉलर को लेकर आता हूँ, किसी को देने वाला हूँ मैं रानी नाइट कॉन्सर्ट के पासेस। कौन है आज का विनर बताता हूँ। फिलहाल 10:30 होने को, मेरे जाने का समय हो गया है। फिलहाल ये गाना सुनो, एंजॉय करो, और अभी मेरे साथ ऐसे ही ट्यून इन रहो FM मुरादाबाद पे। लूंगा आपसे जाने की इजाजत बस थोड़ी सी देर में।

0: हाथ से ताली। ताली तो अब मैं बजाने वाला हूँ भाई, जिस फिल्म के बारे में मैंने बात की थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी यार ये। चलो भैया, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ, मैं बस आपका दोस्त हूँ आरजे आनंद। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में, और उस फिल्म का एक गाना जो बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही आइकॉनिक ट्रैक है इस मूवी का, ऑफ कोर्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये मूवी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी यार। नहीं नहीं नहीं भाई साहब, मैं ये जो गाना बजा रहा हूँ वो उस पिक्चर का नहीं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, सॉरी। बट ये गाना मैं क्यों बजा रहा हूँ ये जरूर बता के जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो फिल्म थी वो बहुत ही अच्छी थी, और उसका राइट आंसर हमारे पास पहुँच चुका है। हमारे पास शुभी एंड दर्पण भैया, दोनों लोगों ने राइट आंसर दिया है। तो शुभी एंड दर्पण जी, कंग्रेचुलेशन, हम आपको दे रहे हैं 24 डांडिया नाइट के पासेज, आपने विन किए हैं और आपने सही जवाब दिया है। दिस इज द राइट आंसर, मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना। बिल्कुल जी, सही जवाब है इस मूवी का राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए थे, लेकिन ये लोग सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से पहुंच गए थे ना हमारे स्टूडियो में आंसर देने के लिए, इनके व्हाट्सएप सबसे पहले आए हैं। शुभी एंड दर्पण जी, कांग्रेचुलेशन। चलो इनके लिए गाना बजाओ यार, वेरी नाइस। 10:23 हो गए हैं, बाकी लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम गाने नहीं, अब हम आपसे फिल्में पूछते हैं, और ये गाना मैं क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि गाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए प्ले कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ अभी आपको, खुशी के साथ ढेर सारी बात करना, और जितना प्यार मुझे दे रहे हो उससे ज़्यादा उसको भी देना। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल मॉर्निंग। कुछ मैसेज इन शॉर्ट पढ़ लेता हूँ। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेयर शारिक अली जी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, लेकिन इन्होंने गलत जवाब दे दिया है। एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था भारती जी का, गुड मॉर्निंग। रिजवान खान साहब भी जुड़े थे प्रोग्राम में, रामपुर से हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद उस्मान जी, इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया था। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा था, हाय गुड मॉर्निंग, सना तुर्क, नाजिया तुर्क जी मेरे साथ जुड़ी थी सही जवाब के साथ। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा था यहाँ पर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है, अनुज कश्यप जी मुझे मैसेज कर रहे थे आज की सुबह। एंड ये अमित वर्मा जी ने भी मेरे को राइट आंसर किया था, शादाब अली मुरादाबाद से सही जवाब के साथ जुड़े थे, मोहम्मद कामिल साहब जुड़ चुके थे, एंड अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, ये लोग कांठूट लदावली से मेरे साथ जुड़े थे। इसके अलावा हमारे साथ अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ी थी।
1: राधे राधे राधे राधे जी, आप अंदाज अपना अपना मूवी की बात कर रहे हैं, सलमान खान और अमित खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर थी।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। अंदाज अपना अपना, दिस इज राइट आंसर कोमल, थैंक यू वेरी मच। हाफ गर्लफ्रेंड गलत जवाब हो गया है, कुलवीर सिंह जी एकता कॉलोनी से जुड़ रहे थे। अंदाज अपना अपना राइट आंसर रिहाना पहुंचा रही थी, निकुंज भाई गलत आंसर हो गया है, बट कोई बात नहीं। सुहानी शिवपुरी से जुड़ी थी मेरे साथ, एंड कश्मीर से भाई जुड़े थे हमारे, ये विक्की सागर जी जुड़े हैं रेडियो वाले आनंद के साथ। कल्याणपुर से, मुरादाबाद से दुर्गेश भाई जुड़े हैं, नौनेश कुमार एंड उमेश कुमार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लोधीपुर से, और भी तमाम सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, इनको हमारा शो अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं। जिनके नाम छूट गए हैं उनके लिए माफी चाहूंगा, टेक्स्ट पर भी कुछ मैसेज आए थे, उन सभी का भी दिल से थैंक यू। किसी ने लिखा है आपकी आवाज़ प्यारी है, तो किसी ने लिखा है आपका शो अच्छा लगता है। कल मिलते हैं, बाय, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए।

0: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार्क, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: कटरीना।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस समय ध्यान लगाकर रेडियो को सुन रहे हैं। आप इंतजार कर रहे थे कि खुशी जी कब आएंगी। देखिए, आपने याद किया और खुशी यहाँ पर हाजिर है। आप सुन रहे हैं अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:35। और आपके ढेर सारे मैसेज देखकर तो मैं सच बता रही हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे संदेशों के लिए, दिल से शुक्रिया। और दोस्तों देखिए, वेनसडे मॉर्निंग है एंड खूबसूरत सा दिन है आज का और तारीख है 7 अक्टूबर की। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं है, बल्कि उस डर को हराने की होती है जो तुम्हें बार बार शुरुआत करने से रोकता है। एक कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप बनता जाएगा एवरीवन। एक्चुअली ना मुझे भी यही लगता है कि देखिए, किसी को असली जीत वही होती है जो दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद की जो भी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं जो बार बार डिमोटिवेट करते हैं, हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं लेकिन एक मन में होता है कि नहीं नहीं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उससे लड़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ना तो लाइफ में यकीन मानिए एवरीवन, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और देखिए, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गई हूँ, मुझे पता है कि आप भी ऑफिस पहुँच गए हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं और कुछ हमारी जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, हमें इस समय ऑन द वे सुन रही हैं, कुछ अपने घर में कामों में व्यस्त हैं, लेकिन रेडियो से जो मतलब ध्यान है ना, जो कान है वो रेडियो की तरफ ही है। भले ही मन काम में लगा हुआ हो लेकिन आप मुझे बिंदास होकर मैसेज कर सकते हैं, अपनी सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं खुशी के साथ। एंड हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुशी आपसे जैसे कहती है कि मुस्कुराना तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत प्यारा लगता है। और सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक करण औजला

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ, और यहाँ पर वक्त हुआ है अभी 10:41। अभी आपने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी द विवांसी, एंड एवरीवन यहाँ पर जो आपके खूबसूरत संदेश आए, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के उनको शामिल कर लेते हैं। और आज बहुत प्यारे प्यारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आए हैं, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना एंड नाजिया तुर्क। गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके। मुझे पता है सुबह जैसे ही 10 बजते हैं घड़ी में आप मैसेज अपने पहुंचा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज हमारे पास यहां पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, ये अपना मैसेज हमें पहुँचा दें। अरे हर यू महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पर से आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, फूलों की तरह महकती रहे जिंदगी आपकी, फूलों की तरह महकती रहे जिंदगी आपकी, खुशियों से भरी रहे हर एक सुबह आपकी, मुस्कुराहट ही कभी कम ना हो, आपकी राहों में हर सपना पूरा हो बस। ओहो हो, क्या बात है आपकी आंखों में। एंड ये मैसेज अपना पहुंच जाती है आज। अच्छा, आज इनके फ्रेंड का बर्थडे है, रुकैया फातिमा जी का। रुकैया जी, हमारी तरफ से आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये भी बर्थडे विश करती हैं एंड दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हर खुशी मिले, तुम्हें जिंदगी में हर खुशी मिले। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर किन के आए हैं, जरा एक नजर डालते हैं। ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्रतीक्षा ठाकुर ने पहुंचाया है न्यू मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग आज की सुबह पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। अगला मैसेज आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। और हाँ दोस्तों, कौन कौन सी दालें महंगी हुई है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ अमेजिंग ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा। बस मिलते हैं छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं बचाइए यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश मुझे पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा कुछ अमेजिंग गाने।

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया दिलजीत दोसांझ की आवाज में। एक्चुअली बर्थडे बॉय हो या बर्थडे गर्ल हो, एक्चुअली जिनका भी बर्थडे होता है ना, तो उनकी ना बहुत सारी विशेज होती हैं कि मतलब उस दिन जब बर्थडे होते हैं ना, बर्थडे वाले दिन ना एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि सभी के मैसेज आते हैं, सब लोग विश करते हैं एंड एक अलग ही मतलब घर में भी माहौल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है उस मतलब शब्द में ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं एंड बहुत स्पेशल होता है। और जब अपना फेवरेट अगर कोई गिफ्ट मिल जाते हैं ना, तो फिर अलग ही हो जाता है बर्थडे, स्पेशल हो जाता है। एंड स्पेशली तब जब हमें कोई हमारा स्पेशल पर्सन एंड चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जब प्यार से विश करते हैं ना और स्पेशल तरीके से विश करते हैं, उसको बुलाया नहीं भूल पाते हैं। और चलिए अभी बात कर ली थी मैंने आपसे, कहा था कि दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आज सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे एंड कपास यानी सफेद सॉफ्टनेस और कंफर्ट का वो एहसास जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। कपास सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि किसानों की मेहनत, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। हम जो कॉटन की आरामदायक शर्ट पहनते हैं, बच्चों के कपड़े हो या घर के मुलायम कपड़े, इनके पीछे खेतों में मेहनत करने वाले किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज मैं आपसे भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मालूम करने वाली हूँ।

लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी संदेश है, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत आपके बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं, तो चलिए मैं उनको शामिल करती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। ये मैसेज हमारे पास अब्दुल कलाम जी का है, मुरादाबाद से, मुरादाबाद जामा मस्जिद से। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। श्योर सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको प्ले करने का। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं आज की मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी मैम, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। अनुज कश्यप जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? माय नेम इज सुहानी, शिवपुरी मुरादाबाद से। सुहानी जी ने मैसेज पहुंचाया है। अरे वाह, इतने सारे फ्लावर्स आपने भेजे हैं, थैंक यू सो मच सुहानी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग जिला रामपुर की टनासी मोहम्मद कामिल जी का, और साथ में लाइबा काजमी जी भी इनकी दोस्त शामिल है। एंड और इन्होंने भी कुछ लाइनें यहाँ पर लिखकर भेजी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, कि हमारी तो दुआ है कि कई गिले नहीं, हमारी तो दुआ है कि कोई गिला नहीं, वो गुलाब जो आज तक खिला नहीं, आज के दिन आपको वो सब मिले जो आज तक किसी को कभी मिला नहीं। अरे वाह क्या बात है, कमाल ही कर देता तुसी तो। हाँ जी चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातें। एंड आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और रेडियो की सुनी को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा। और हाँ, जो सवाल मैं पूछने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई थी, हाय चलो याद आ गया है। एंड आज का मेरा जो सवाल है ना, वो बड़ा ही प्यारा सा है। वर्ल्ड कॉटन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष में मैंने सोचा कि चलिए आपसे एक सवाल पूछा जाए। आज का सवाल एक छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है, आपको कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है? हाँ जी मुझे बताइएगा, आपको कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है? इनका कंफर्ट, सॉफ्टनेस या फिर इनका सिंपल और क्लासी लुक का हमें बताएगा, आपको कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है? जल्दी से अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. वक्त हुआ है 11:08 और दोस्तों देखिए, दालों के दाम के बारे में भी हम आपको बता देते हैं. अगर आपकी रसोई में दाल रोज बनती है तो ये खबर आपके लिए थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है. मुरादाबाद में पिछले एक सप्ताह के दौरान दालों के दाम करीब 15-20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है. उड़द की दाल जो एक सप्ताह पहले करीब 110 रुपए किलो थी, अब लगभग 130 रुपए किलो तक पहुंच गई है. और वहीं अरहर की दाल की बात करें तो 100 से 110 से बढ़कर 130-140 रुपए किलो. राजमा और ये क्या मैं आपको बताती हूँ दोस्तों. देखिए, दालें अगर आप खाने की शौकीन हैं तो दालों के प्राइस भी बढ़ गए हैं. दो तरह के राजमा होते हैं ना, एक रेड वाला होता है, एक उसपे हल्के हल्के से डॉट होते हैं. हाँ, आप समझ ही गए होंगे ना, उस राजमे के भी प्राइस बढ़ गए हैं. 135 से बढ़कर 160 रुपए किलो तक पहुंच गया है. व्यापारियों के मुताबिक बारिश से फसलों को हुआ नुकसान और दोस्तों सड़कों के विस्तृत होने से

0: उड़द की दाल 110 130 हो गई है, एंड उड़द की धुली हुई दाल 120 140, और अरहर की दाल जो 100 थी 110 से एंड 130 40 के रेट पर पहुंच गई है। राजमा, वही अगर राजमे की बात करें तो जो राजमा आपको पसंद होता है ना, राजमा चावल आप लोग खाते हैं, 140 120 रुपए किलो हो गई है। और काली चने की अगर बात करें तो 110 से 130 रुपए तक पहुंच गए हैं। और एवरीवन, यहां पर आपके जो संदेश आए हैं उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर रुकैया फातिमा जी ने दरक्षा को बर्थडे विश किया है। आज दरक्षा फातिमा जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे दरक्षा। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का, पीतल नगरी से मैसेज पहुंचाते कल्याणपुर मुरादाबाद से। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये संदेश हमें पहुंचाते आज की सुबह नई मूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से, साथ में आसिफ जी हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हाय खुशी मैम कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मुरादाबाद से ये मैसेज हमें पहुंचाती है आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आसिफ जी का मुरादाबाद से, और ये भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमने आपसे पूछा था एवरीवन, आप मुझे बताइए आपको कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं तो उनको भी शामिल करते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, सवाल जो आपने हमने आपसे सवाल पूछा है उसके जवाब आप बैक टू बैक यहाँ पर दे रहे हैं, वंस अगेन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दोस्तों, कुछ गाने हैं जो आप सभी की पसंद के हैं तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनको प्ले करते हैं, सुनवाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब जो हमारे लिसनर हैं वो बड़े प्यार से शिद्दत के साथ अपने संदेश पहुंचाते हैं और अपने गानों की रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो चलिए कुछ खूबसूरत गाने सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे।
1: कुछ

0: हेलो गुड मॉर्निंग माय लव लिसनर्स, वेलकम है आप कैफे मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने एंजॉय किया ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा से अरिजीत सिंह और साथ में शिल्पा राव की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में जो कि बहुत जरूरी है। और दोस्तों आज की हेल्थ अपडेट में बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हम में से बहुत से लोगों की डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है, रात में देर तक मोबाइल या स्क्रीनिंग देखना। एक्सपर्ट के मुताबिक सोने से ठीक पहले लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल आपकी स्लीप क्वालिटी और स्लीप साइकिल को प्रभावित कर सकता है। लगातार नींद की कमी और स्ट्रेस का असर आपके हार्ट हेल्थ पर भी पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि सोने से करीब 2 घंटे पहले मोबाइल लैपटॉप या टीवी का इस्तेमाल कम करें और रेगुलर 7-8 घंटे की नींद आप लें। और दोस्तों थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज भी करें, वो बहुत ज़रूरी है। वॉक को अपनी रूटीन में शामिल करें और अपने बीपी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समय समय पर जांच भी करवाते रहें। और सबसे ज़रूरी, अगर सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक से पसीना आना या फिर दिल की धड़कनें तेज हो जाना तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। और दोस्तों अच्छी नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप इनका ध्यान रखें। सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को अपने आप से दूर कर दीजिए। मुझे पता है सडनली तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब तो ये सबकी हैबिट बन चुका है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब रेगुलर जब आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आप अच्छे से इजीली कर पाएंगे। सोने से 2 घंटे पहले ही आपको अपने मोबाइल से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए और उसके बाद आपको आराम से सोना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। अभी हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत संदेश भी आए, उनको भी मैं शामिल करती हूँ। आज एवरीवन, मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि आपको कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है और हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपके मैसेज आए हैं। एंड यहाँ पर कामिल जी का मैसेज आया और ये कहते हैं कि गर्मियों में कॉटन सूती के कपड़े पहनना फायदेमंद होता है क्योंकि ये पसीना आसानी से सूख लेता है और शरीर को ठंडक पहुँचाता है। कॉटन, एग्जैक्टली राइट सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, रुकैया फातिमा जी का, और ये कहती हैं कि कॉटन के कपड़ों में सुकून मिलता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। कॉटन के कपड़े की सिलाई भी बहुत आसानी से होती है। एंड क्या बात है डियर, बहुत ही प्यारा सा आप सिलाई करते हैं ना इसीलिए। और हाँ, कॉटन के कपड़े पहनने में कंफर्टेबल भी रहते हैं एंड ब्यूटीफुल तो होते ही हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, राधे राधे, आपको भी राधे राधे सर। अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, कार्ट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। तो चलिए दोस्तों, आपको हम गाने तो सुनवाएंगे ही लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहम्मद आलम पाशा जी। और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, गुड मॉर्निंग, हमें आज की मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उसकी बात करेंगे आपसे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो आप तक शेयर करनी है, आप तक बतानी है अपडेट एंड अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आती है, और आपके प्यारे प्यारे संदेश हो उनको देख कर तो भाई हम क्या ही कहें, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद सिटी की। बीती रात करीब 10:20 पर मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसकी तीव्रता 4 से 5 के बीच बताई जा रही है। झटकों के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए, और राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं आई है। वही बात करें अगर मौसम की तो आज का तापमान करीब 31 डिग्री रह सकता है, और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारों की संभावना है। तो दोस्तों आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और आपके यहाँ पर जो लाजवाब संदेश आ रहे हैं तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आसिफ जी का मैसेज आया इटली से, एंड गुड मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं। खुशी जी क्या हाल है आपके, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी। एग्जैक्टली सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, और यही कहते हैं आज का मॉर्निंग मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जिस खूबसूरत अंदाज और इतने अपनेपन के साथ श्रोताओं के संदेश पढ़ रही हैं उसे सुनकर सच में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें और आपकी आवाज दोनों ही सुबह के माहौल को और भी खुशनुमा बना रही हैं। और अगर मुरादाबाद से कोई नई या खास अपडेट होती है तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बिल्कुल की है मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा। और कहते हैं कि आपके जरिए वहां की छोटी सी छोटी खबर भी हमें, हम जैसे दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंचाती हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू। एंड आगे कहते हैं कि आपने पूछा है कि कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद है, मैंने हाँ यही पूछा है कि क्यों पसंद है। तो सर कहते हैं कि मेरी राय में कॉटन के कपड़े आरामदायक होने के साथ साथ शरीर के लिए भी काफी बेहतर होते हैं। ये हल्के मुलायम और हवा को आसानी से पास होने देने वाले होते हैं, इसीलिए गर्मी के मौसम में शरीर को आराम और ठंडे का एहसास देते हैं। खासकर रोजमर्रा के काम या बाहर मेहनत करने वालों के लिए कॉटन के कपड़े काफी सुविधाजनक रहते हैं। मुझे तो सादगी और आराम की लहजे से कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे लगते हैं। और आखिर में आज हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आप शो में जरूर प्ले कीजिएगा। बिल्कुल सर, आपने कहा और गाना प्ले ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, जय श्री राम हमें पहुंचाते हैं, आपको भी जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ खूबसूरत ट्रैक आप सुनने वाले हैं, एंड उसके बाद मैं लौट कर आऊंगी, बताऊंगी आपको बॉलीवुड में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक कुमार सानू जी की आवाज में. ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी. बहुत ही प्यारा गाना. और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी आसिफ जी ने इतनी सी. और दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है. एंड सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा में है एक जोड़ी. आपने सीरियल तो देखा ही होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें कार्तिक और नायरा की जो जोड़ी थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई. एंड कार्तिक जी को वही, हाँ जी, ये रिश्ता क्या कहलाता कि कार्तिक जी अब रियल लाइफ में अपने जीवन साथी चुन चुके हैं. एंड काफी चर्चा में है उनकी जो अभी रिसेंटली वेडिंग हुई है. अभिनेता मोहसिन खान जी ने तमन्ना संग निकाह की कुछ झलक, जो कुछ झलकियां ना सोशल मीडिया पर साझा की हैं. एंड वीडियो में शादी के खास पलों की झलक देखने को मिल रही थी. साथ ही कबूल है कबूल है कबूल है कहने का कैप्शन भी नजर आया. पोस्ट सामने आने के बाद फैंस इस कपल को शादी की बधाइयां दे रहे हैं और इनके रिश्तों को लेकर खूब चर्चा हो रही है. एंड हमारी ओर से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां, बोथ ऑफ यू, शादी की बहुत बहुत मुबारक है. और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम खेल जगत से जुड़ी हुई एक शानदार खबर सामने आई है सोशल मीडिया पर. एंड दोस्तों एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना का मंगलवार को गुवाहाटी में LGBI एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. गोल्ड मेडल जीतकर घर लौटने वाली लवलीना की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे. उनकी इस शानदार उपलब्धि ने देश और खासकर असम का नाम रोशन कर दिया है. हमारी ओर से भी कंग्रेचुलेशन लवलीना जी को, बहुत बहुत बधाइयां. देखिए दोस्तों, देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं. एंड मैं भी कहती हूँ आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा. और अभी यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश आए, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, खुशी जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार. सुनीता जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रकाश नगर से अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की मॉर्निंग. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, खुशी दी नमस्कार, कैसे हैं आप. ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं शंकर सिंह जी. नैनीताल से अपने मैसेज आज की सुबह में पहुंचाते हैं. उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का. साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी. गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. एंड सर कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सॉन्ग भी काफी अच्छे प्ले कर रही हैं आप. सभी लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर बिल्कुल सर. देखिए जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो बखूबी निभाना ही पड़ता है. और हम कोशिश करते हैं कि सभी श्रोताओं के संदेशों को शामिल किया जाए, सभी की रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया जाए. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का लोधीपुर मुरादाबाद से. और कहते हैं खुशी जी हम आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें. और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम खुशी मैम, कैसे हैं आप. मैं ठीक हूँ. गौरव टेलर जी का मैसेज हमारे पास आया नवीन नगर मुरादाबाद से. काफी टाइम के बाद हमारे श्रोता आज ये जुड़े हैं, वैसे रेगुलर लिसनर है लेकिन आज काफी समय के बाद अपना संदेश पहुंचा रहे हैं. थैंक यू सो मच, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है सर. और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इकरार करो कहीं ना फिर देर हो जाए. शानदार ट्रैक है. और इन्होंने एक थॉट भी हमारे साथ शेयर किया है, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं,
ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ कंधों का हो या फिर बदले का हो या घमंड का। एग्जैक्टली राइट। तो चलिए एवरीवन, अभी यहाँ पर कुछ खूबसूरत गाने मैं आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ एक ट्रैक के बाद। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए। और किचन में आज क्या बन रहा है, बड़ी खुशबू आ रही है भाई मुझे, कुछ स्पेशल तो बना रहे हैं आप। चलिए बनाइए और मुस्कुराइए।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप सुन रहे हैं एंड एवरीवन लिरिक्स कितने खूबसूरत है ना। दोस्तों इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था अभिजीत सावंत जी ने और लिरिक्स लिखे थे समीर जी ने। एंड जब भी मैं इस ट्रैक को सुनती हूँ ना मुझे एक अलग ही मतलब खुशी होती है क्योंकि इसके जो लिरिक्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं एवरीवन। और आज 7 अक्टूबर है और आज जन्मदिन है आवाज के, उस आवाज का जिसने इंडियन आइडल के पहले सीजन से लाखों दिलों में अपने खास जगह बनाई। जी हाँ हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर अभिजीत सावंत जी की जिनका ये ट्रैक अभी आपने सुना मोहब्बत ही लुटाऊंगा। 7 अक्टूबर 1981 को जन्मे अभिजीत सावंत जी आज अपना 45 वर्ष के आज वो हो गए हैं एंड 45 इयर्स के कंप्लीट हो गए हैं और आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल 2004 से 2005 में उन्होंने इंडियन आइडल के पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया और यहीं से शुरू हुआ उनके म्यूजिकल सफर का एक नया अध्याय। इसके बाद अपने प्लेबैक सिंगिंग में अब भी अपनी पहचान बनाई और मोहब्बतें लुटाऊंगा जैसे गानों से श्रोताओं का प्यार हासिल किया। तो हमारी ओर से एंड फिर मुरादाबाद की पूरी फैमिली की ओर से जन्मदिन की अभिजीत सावंत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति लेकिन जाने से पहले कुछ टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पर आए मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय दी कैसे हैं आप, मैं तो ठीक हूँ डियर। ये हमें मैसेज पहुँचाती है यहाँ पर मुस्कान। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो मैम गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है बट कोई बात नहीं, आपने प्यार से विश किया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और चलिए मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मुलाकात करूंगी सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एवरीवन। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और अपनों के साथ रहिए। जो भी आप कार्य करें उस काम में ना मन लगा कर आप काम कीजिए, सक्सेस भी मिलेगी एंड हैप्पीनेस भी मिलेगी। बाय बाय।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: और आज ये हमको किस विषय में जानकारी देने वाले हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आज ये किस विषय की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के
1: जी,
0: माध्यम से मिल रही है।
1: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार संज्ञा जी। और आज का जो हमारा विषय है वो है संतुलित फसल पोषण, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके क्या लाभ है खेती, आज उसके बारे में चर्चा करें।
0: जी हाँ, इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय है, उसके संचालित पीएम के एस के एक जो केंद्रों के बारे में
1: जी जी
0: योजना है,
1: जी
0: इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहिए।
1: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे पीएम केएस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके हैं और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो उसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केएस के हैं, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे

0: कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का एक हट्टा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है, या खरपतवार नाशी है, या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए, उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एस के पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: पीएम के एसके के बारे में तो ये जानकारी आपने हमको बहुत अच्छी तरह बताई, लेकिन अब आप ये बताइए कि उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है
0: जी,
1: वो क्या है और उसका क्या उद्देश्य है?
0: जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं, और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी, और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है, देख ही देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार जगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद चलिए अब हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं, जो है संतुलित फसल पोषण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसलों के संतुलित पोषण से तात्पर्य क्या है।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर बात आती है कि यार ये तो खेती बाड़ी है, इसमें संतुलित पोषण ये सब बातें क्या आ गई, खेती मिट्टी है इसमें कुछ भी डाल दो और हो जाता है अपने आप। अगर एक्स्ट्रा डाला है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डाला है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं है। संतुलित से होता है कि हर चीज में संतुलन है, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो कोई चीज उसी अनुपात में कम होने लगती है, और कोई चीज अगर जो मतलब जो कम हो जाए तो फिर उसका उसी तरह से उसका असर दिखता है। अब अगर ऐसा कोई कहे कि भाई पंजाब में जो धान होता है और जो छत्तीसगढ़ में धान होता है उसकी की जो मांग है वो एक ही होगी, ऐसा नहीं। आमतौर पर धान की फसल के हिसाब से देखें तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन धान की जो हम छत्तीसगढ़ में उगा रहे हैं उसकी जो उर्वरक की मांग है, जो पोषण की मांग है, वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ की जो खेत, यहाँ की जो मतलब मिट्टी और आबोहवा है वो थोड़ी अलग है, और जो हम जो पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं वहां पे वो अलग होगी। तो अब हर जगह के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या और भी जो संस्थाएं जो कि सॉइल टेस्टिंग कराती हैं, मिट्टी की जांच कराती हैं, वो उसमें अनुसंधान उन्होंने किया है और वो देखते हैं कि इस जगह पर इस तरह से हम अगर पोषण देंगे, अतिरिक्त पोषण, अतिरिक्त पोषण से उर्वरक के द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और जैसे कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, हरी खाद है, इनके द्वारा दिया जाता है, तो हमारी फसल को एक जो आहार चाहिए उसको, जो उसको पोषण चाहिए वो पूरा मिलेगा। ये हर राज्य का, और मैं तो कहता हूँ एक राज्य में हर क्षेत्र का अलग अलग भी हो सकता है, तो उसकी मांग के अनुसार ही अगर हम जो पोषण देते हैं तो उससे हमें काफी लाभ होते हैं। और लाभ से संदर्भ भी है कि हो सकता है कि क्षणिक रूप से हमें कुछ ऐसा न लगे, लेकिन लंबे समय के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलित पोषण से तात्पर्य यही है कि जितनी मांग, जितनी आवश्यकता, उतना ही हम दें और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाए। ज्यादा देने का अर्थ या असंतुलित अगर हम देंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ज्यादा लाभ उससे मिलेगा, उससे लाभ की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर हम सही मात्रा में, सही समय पर उर्वरक देंगे या पोषण देंगे तो उसे ही हम संतुलित पोषण कहते हैं, तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे।
1: तो फसलों में संतुलित पोषण से क्या तात्पर्य है श्रोताओं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है फसलों में, आइए अब हम ये जानते हैं डॉक्टर सिंह से।
0: जी हाँ, क्यों आवश्यक है, अगर आप देखें तो जैसे आज के समय में सघन खेती हो रही है, सघन खेती से ये अर्थ है कि एक फसल ली उसके बाद दूसरी फसल ले ली, अगर खेत खाली हुआ और मौका है तो हम तीसरी फसल भी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम क्षेत्र से ज्यादा लाभ ले सके। मांग भी है उत्पादों की, जैसे कि मान के चले कि अभी हमारे यहाँ धान हो रहा है, धान के बाद हमें लगेगा हम गेहूं ले लेंगे, गेहूं अगर टाइम पे कटाई होगी तो उसके बाद मक्का ले लेंगे और मक्का के बाद फिर हम धान ले लेंगे। तो आप देखिए कि साल में हमने तीन फसलें ले ली, और तीन फसलों के हिसाब से ले लेंगे चार महीने के हिसाब से, तो लगभग ये है कि 12 महीने पूरे होंगे। अब ऐसी सघन खेती में अगर पोषण का हमने सही ध्यान नहीं रखा तो फसलें हमारी कमजोर होने लगेंगी और हमें उत्पादन सही नहीं मिलेगा। उत्पादन सही मतलब ये है कि हम बीज डालेंगे, जैसे आज की तारीख में अगर हम सघन खेती करें तो हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना, बहुत महंगे आते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट में भी सूखा, बारिश, ये भी इनके भी असर होते हैं। तो अगर हमने संतुलित और सही समय पर पोषण नहीं दिया तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, फसल कमजोर रहेगी, उसमें रोग बीमारी या जो मतलब कीटे हैं उनका भी प्रकोप ज्यादा होगा। जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें बीमारियां कम लगती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है, इम्यूनिटी आहार, विहार और विचार, तीन चीजों से आ जाती है। अगर हम अपने शरीर का देखें, आहार मतलब हमारा भोजन, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम करें, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करें, व्यायाम करें, तो संतुलन शरीर का बना रहता है, और थॉट प्रोसेस हम अपनी संतुलित रखें। बहुत ज्यादा उद्दीला नाम में रह रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से ठीक रहता है। लेकिन अगर हम इससे हट जाए तो फिर हमारी स्थिति ये हो जाती है कि छोटी छोटी जो समस्याएं आती है, या कोई मतलब मौसम का परिवर्तन हुआ, क्या ये कोई और चीज हुई, तो हमें कभी जुकाम हो गया, तो कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, ऐसी बहुत सारी। इसी तरह खेत में है, अगर संतुलित पोषण देंगे तो खेत के अंदर पोषक तत्वों की जो एक स्तर होना चाहिए वो सही बना रहता है, फसल अच्छी होती रहती है, उत्पादन ठीक मिलता है, और जो आपने इनपुट लगाया है, जो आदान आपने दिए हैं, उसके हिसाब से जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है संतुलित पोषण।
1: फसलों में संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है, ये जानकारी तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये संतुलित पोषण हम कैसे फसलों तक पहुंचा सकते हैं, किस किस मात्रा में हमको पहुंचाना चाहिए, कैसे ये पता चलेगा कि संतुलित पोषण हम दे पा रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
0: संतुलित पोषण कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि हमें तो भाई जो जानकारी नहीं है कि संतुलित पोषण हम कैसे करें, इस खेत को कितना चाहिए और इस फसल ने जो मतलब कितना लिया। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको सही रूप में या वैज्ञानिक रूप में हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बड़ी साधारण सी और अच्छी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, वो है मिट्टी परीक्षण। हम खेत की मिट्टी की जांच कराएं। वैसे तो अगर हम कहें कहीं पर अगर कोई वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो वो हर फसल से पहले कराते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम साल में एक बार खेत जब आपका खाली हो तो मिट्टी का नमूना लें और उसकी जांच कराएं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व तो आपके खेत में उपलब्ध है और क्या उनकी मात्रा होनी चाहिए। फिर तो उसके साथ साथ आप ये भी लिखते हैं कि कौन सी फसल आप लेने जा रहे हैं। फसलों का जब आप नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक उसमें अपनी तरफ से मिट्टी की जांच को देखकर लिखते हैं कि इस फसल को इस समय पर ये आपको पोषक तत्व देने हैं, इस समय पर ये पोषक तत्व देना है। तो उससे क्या है कि जो फसल आप ले रहे हैं उसकी पूर्ति होगी और जो खेत में पोषक जो स्तर रहना चाहिए वो उसमें बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती। तो अगर आप इस ओर जाना चाहते हैं कि आप जो संतुलित पोषण हो आपके खेत में, तो मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं।
1: श्रोताओं, हम पिछले अंक में खेती किसानी के आप लोगों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। वो मिट्टी का नमूना अगर आप लोगों को भेजना चाहें तो वो कहाँ भेज सकते हैं, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से इस बारे में भी बता दो।
0: उसके लिए देखिए, एक तो क्या है, आपके क्षेत्रीय लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। वहां मिट्टी का नमूना लेके जाएं और फ्री में जांच होगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी अपनी प्रयोगशालाएं होती है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। दूसरा, अगर वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोई या रिसर्च स्टेशन है, वहां पर मिट्टी की जांच की भी जो सुविधा है वहां करा सकते हैं। तीसरा, जितनी उर्वरक कंपनियां वो भी मिट्टी की जांच जो कराती है, बीज कंपनियां भी कुछ है जो कराती है, तो उनके लिए जो पीएम केएस के हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नमूना दे सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर की भी हमारी दो प्रयोगशाला है, हम साल में लगभग 70,000 सैंपल जो है अपने चेक करते हैं। अच्छा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसमें कोई हम चार्ज नहीं लेते, सैंपल वहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप सीधे भेज दें, कोरियर से भेज दें, डाक से भेज दें, या आप जो पीएम केएस के हैं और वहां पर अगर हमारे उर्वरक आते हैं तो वहां पर हमारे क्षेत्र के काम करने वाले अधिकारी जाते हैं, फील्ड अफसर जाते हैं, वो आपके यहाँ अगर वो नमूने इकट्ठे तो वहां से वो नमूना भेजेंगे, मिट्टी की जांच होगी और रिपोर्ट आपके एड्रेस पे भी आ जाएगी और हमारे आदमी के पास भी।
1: यदि कोई कोरियर से भेजना चाहे तो मिट्टी कितनी होनी चाहिए?
0: मिट्टी जो है लगभग 400 ग्राम आप लें, गीली न हो, और उसके अंदर सूचना पत्र होना बहुत जरूरी है। सूचना पत्र मतलब आपकी पूरी जानकारी, आपकी खेत की पूरी जानकारी और कौन कौन सी फसलें आप उसमें लेंगे
1: लेते हैं वो जानकारी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी किसानों तक, और किसानों से अब अनुरोध है कि वो लोग अपने फसलों को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और संतुलित पोषण जरूर दें। तो अब संतुलित पोषण कैसे करें ये तो हम जान चुके हैं, संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान क्या है,
0: हाँ जी,
1: इसके बारे में अब हम
0: बिल्कुल संतुलित पोषण देखें। अगर हम तो मुख्य रूप से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इसके उर्वरक हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन अगर अकेला चाहिए तो यूरिया नाम का एक हमारे पास उत्पाद आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर तीनों चाहिए जो कि शुरुआत में फसलें लगाए जाते हैं, तो उसके लिए एनपीके आ रहे हैं अलग अलग तरह के, उनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटास भी होता है, तो जो पौधे का शुरुआती विकास है उसके लिए वो बहुत ही लाभकारी होता है। कभी कभी कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें खास तरह का ही जो आपका खाद चाहिए, ऐसा ना देखें, खाद के अंदर क्या पोषक तत्व है उसके हिसाब से देखें कि अगर पोषक की जो मांग उस उर्वरक से पूरी हो रही है तो वो उर्वरक आप लें और अपनी फसल में आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, मॉलिब्लेडनम है, आयरन है, बहुत सारे, उनके लिए अलग अलग उत्पाद दुकानों पर उपलब्ध होते हैं, उस नाम से होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे कैल्शियम की जो मेरे उसमें जो थोड़ी कमी है तो मुझे कौन सा उत्पाद है, तो वो दुकानदार आपको बताएगा, उस पर लिखा होगा कि भाई इसमें इतने परसेंट है, उसका रेट होगा, कैसे इस्तेमाल करना है, और उसमें कंपनी का भी एक टोल फ्री नंबर हो सकता है या उनके अधिकारी का, तो अगर कोई शंका है तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनका देने का समय होता है, उसमें खेत की तैयारी के टाइम पर देना है। बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो मतलब पोषण है जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि आप जो है ये ड्रिप इरिगेशन है उससे कर सकते हैं, तो ये आप जब वो उत्पाद लेंगे तो उससे होगा। हमेशा ही एक स्थूल उर्वरक का देना उचित नहीं होता, एक अवस्था तक तो स्थूल उर्वरक काम करता है, उसके बाद फिर जब फसल 40 रोज से ऊपर की हो जाती है उस समय पर आप अगर स्प्रे के द्वारा दें, क्योंकि फसल का उस समय पर काफी विकास हो चुका होता है, उसका हरा भाग काफी ऊपर होता है, तो आप जो उसमें जो भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो हरा भाग है या उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो उसको सोखता है और वो अपने सिस्टम में उस पोषण को ले जाता है और वो उसको धीरे धीरे पुष्ट करता है। इसकी जगह अगर आप स्थूल उर्वरक देंगे वो अच्छे से पौधा नहीं ले पाता क्योंकि उसकी इतनी अवस्था हो जाती है, फिर आप जब उसको फेंक के डालते हैं तो वो अगर जो पौधे के पत्ते के ऊपर गिरा तो क्योंकि वो केमिकल है तो वो नुकसान करेगा, और जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें पानी की मात्रा इतनी है वो नुकसान नहीं करेगा।
1: संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान के बारे में तो आप लोगों ने सब जान लिया है, अब संतुलित पोषण करने से क्या लाभ होते हैं
0: जी, जी।
1: आपके खेत में, आपकी फसलों में क्या फर्क पड़ता है
0: जी।
1: उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी।
0: संतुलित पोषण जैसे कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर अगर आप लाभ समझे तो आप ये समझिए कि जितनी उपज आपको चाहिए उतनी मिलेगी। जैसे कि आप हाइब्रिड मक्का लेने जा रहे हैं उसमें पर एकड़ आपको 25 क्विंटल उन्होंने कहा है कि इस बीज के हिसाब से हमें आपको यील्ड आएगी, उपज आएगी 25 क्विंटल एक एकड़ में या 30 क्विंटल आएगी। अगर आपने संतुलित पोषण दिया मतलब हर पोषण की जो मात्रा चाहिए उतनी दी तो वो 25-30 क्विंटल संभव है उसमें। लेकिन अगर एक खास चीज आपने अधिक मात्रा में दे दी और कुछ चीजें छोड़ दी तो वो उतनी उपज आपको संभव नहीं, तो मतलब जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो आपको जो नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई एक सब्जी आपको बना रही है उसके लिए खास तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी इतनी, काली मिर्च इतनी, लाल मिर्च इतनी, ये इतना, ये उतना, सारी चीजें आप ऐड करते हो सही और समान मात्रा में, तो उस सब्जी से जो उसका टेस्ट आना चाहिए या जो उससे उसको स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए वो होगा। जैसे कुछ सब्जियां होती है उसमें अगर कोई वो खास चीज आपने नहीं डाली तो वो स्वास्थ्य के लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहती। अब जैसे कि एक जो समझ होती है जिमीकंद होती है उसको एक खास तरह से तैयार करना होता है, अगर वो विधि आपने नहीं अपनाई तो वो न तो आपको स्वाद आएगा न आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो इसी तरह से है कि संतुलित पोषण में जितनी जरूरत और जैसे आपको देना है वो अगर आप देते हैं तो एक तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, उपज अच्छी मिलती है, दूसरा उसमें हर चीज दे रहे हैं तो किसी चीज पे आप ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे कोई आदमी को बोल दो कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो घी पिया करो, तो घी ही पिए जा रहा है तो बीमार हो जाएगा वो, और घी पे खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अब उसके साथ अगर वो सब्जी खाए तो सब्जी सस्ती भी आती है, लेकिन एक सही मिक्स बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। इसी तरह से पोषण के बारे में हमेशा ये ध्यान रखें जो चीज जितनी जरूरत है उतना अगर आप देते हैं तो उसके आपके खर्चे कम होते हैं, फसल स्वस्थ होती है, उपज अच्छी मिलती है, और जो उससे उत्पादन आपको मिल रहा है, जो उपज आपको मिल रही है, चाहे वो सब्जी ले रहे हैं आप, चाहे आप अनाज ले रहे हैं, उसकी पौष्टिकता और उसकी जो क्वालिटी चाहिए, जैसे मान के चले सरसों है, सरसों की फसल आप ले रहे हैं, सरसों में हमें सल्फर चाहिए, सल्फर से क्या होता है प्रोटीन बनती है और ऑयल की जो जो जो, जो उसके अंदर तेल के कंटेंट है वो बढ़ते हैं और उसका जो स्वाद है उसमें जो एक तीखापन होता है वो उससे आता है सल्फर से। आपने सब चीजें आपने डाली लेकिन सल्फर छोड़ दी, अगर खेत में सल्फर अच्छी मात्रा में है तो ठीक है, अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी कमी हो गई है, लगातार आप सरसों उगाते आ रहे हैं,

0: तो क्वालिटी में आपको फर्क आएगा। जैसे मैं एक बार जो बंगाल गया था, तो वहां के लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्त मस्त मस्टर्ड ऑयल उनका एक जो है अपना स्लोगन है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो कहाँ की सरसों जो पसंद करते हैं, उन्होंने कहा राजस्थान की। मैंने हमारे यूपी में और हरियाणा में बहुत होती है, तो बोले नहीं राजस्थान की जो है उसमें तीखापन ज्यादा, पंजनसी बहुत है, तो वहां उसकी जो क्वालिटी है सल्फर वहां होगा, उस हिसाब से उसके अंदर पंजेंसी आती। तो संतुलित पोषण से हमें अनेक लाभ होते हैं, और आज की तारीख में जो मतलब उपभोक्ता है वो हर चीज देखता है और समझता भी है, तो जहां समझ है तो वैसा आदमी पाने की चेष्टा करता है। तो हम संतुलित पोषण करेंगे तो हम एक अच्छी उपज लोगों तक दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ दे पाएंगे, और हम अच्छा लाभ ले पाएंगे।
1: तो अच्छा लाभ लेने के लिए सभी श्रोताओं से, सभी किसान भाइयों से हमारा यही कहना है कि जो भी फसल उगाए संतुलित फसल उगाए, जिसमें सही पोषण हो और सही पोषण रहे, उसके लिए आप लोग अपने यहाँ की मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी में जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए वो दवाएं, वो उर्वरक, उनका इस्तेमाल करें। तो आज के इस अंक में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह ने। और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की हमको अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: क्योंकि एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सिहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे रीना जी, आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
0: सिहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आर्चरीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
1: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
0: सिहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
2: आर्चरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है,
1: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
2: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
0: किस तरह का जोखिम?
2: बिल्कुल आर्जेरीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
0: अरे हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, अनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। अगर माँ अनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियाँ, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
1: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DH जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
1: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे की मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
1: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कैलोस्टम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
2: बिल्कुल आरजे, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
0: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
1: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
0: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
0: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
0: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
0: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना, जब सही जानकारी और सही व्यवहार के साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
1: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन, फॉलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
0: हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
1: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
2: धन्यवाद आरजे। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
1: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो
0: श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ का एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
2: वाह क्या बात कही आपने, लेकिन सच बताऊं कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
3: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
2: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
2: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
3: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
2: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
3: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
2: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
2: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
2: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
3: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
2: और प्रोटीन?
3: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
2: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
3: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
2: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
3: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
2: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
3: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
2: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
3: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
2: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
3: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
2: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
3: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
2: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
2: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
3: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
2: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
3: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
2: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
3: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
2: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
3: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
2: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
3: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
2: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
3: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
2: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
3: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
2: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
3: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
2: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
3: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
2: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
3: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
2: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
3: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के 4th महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
2: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
3: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
2: क्या आरती ने सलाह मानी?
3: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
2: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
3: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
2: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
3: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
2: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
3: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
2: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
3: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
2: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
3: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं दे होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
2: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
3: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
2: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
3: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
2: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
3: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
2: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
2: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
3: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
2: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से ही
2: लाभ कई, धन्यवाद, सेहत से ही तो लाभ कई। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। दोस्तों, विश्वास सिर्फ किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करने का नाम नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी उतना ही जरूरी है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है ना, तो मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। तो आज हम पूरे शो में बात करेंगे विश्वास की, रिश्तों में विश्वास की, दोस्तों में विश्वास और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास, क्योंकि सोच बदलने की शुरुआत भी अक्सर यहीं से होती है। विश्वास बनता कैसे है? दोस्तों, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मुलाकात में बन जाए

0: बहुत बढ़िया हूँ
1: भाई। कौन सी ख्यालों में खोई हुई है लड़की?
0: नींद के ख्यालों में।
1: ओहो क्या
0: बात है। दोपहर होते मुझे नींद आ रही है, आज पता नहीं क्यों।
1: आज ही आ रही है या एवरीडे आ रही है?
0: नहीं नहीं आज आ रही है, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए।
1: हाँ अक्सर ऐसा होता है जब हम जल्दी उठते हैं ना तो फिर हमें नींद आती है दोपहर में।
0: तो श्रोताओं अब हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट और रिश्ते। किसी भी रिश्ते की असली स्ट्रेंथ सिर्फ प्यार नहीं होती, उसमें विश्वास भी होना चाहिए। अगर रिश्ते में हर बार हर बात पर शक हो, हर बात पर जवाब मांगना पड़े, तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। वही जब सामने वाले पर भरोसा हो तो रिश्ते में एक अलग ही सुकून मिलता है। इसीलिए रिश्तों में हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा विश्वास भी रखिए। कभी कभी रिलेशनशिप को स्पेस और ट्रस्ट दोनों की जरूरत होती है। और खुद पर विश्वास, ये तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ कि पहले खुद पर आप विश्वास करिए, तभी आप दूसरों पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें खुद को देनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों पर विश्वास करना सीख लेते हैं लेकिन खुद पर विश्वास करना भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसे सवाल हमें रोकते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो आधी लड़ाई वही जीत ली। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन विश्वास बड़ा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका खुद पर भरोसा रखना होता है।
1: एग्जैक्टली तुमने सही बोला है रीना, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, बिलीव इन माई सेल्फ, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अब हम बात करने वाले हैं शक और विश्वास की। शक रिश्तों को ना अंदर से कमजोर कर सकता है। कई बार हमारे पास पूरी सच्चाई नहीं होती लेकिन हम अपनी सोच से कहानी बना लेते हैं और फिर वही कहानी हमारे रिश्तों को प्रभावित करने लगती है। इसलिए जब भी कोई डाउट हो, अंदाजा लगाने की बजाय बात कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत सी गलतफहमियों को दूर कर सकता है। याद रखिए, जहां सवाल जरूरी हो वहां शक नहीं, बातचीत जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हर इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? शायद नहीं। विश्वास जरूर कीजिए लेकिन समझदारी के साथ। किसी को जानने में टाइम लीजिए, उसके रिएक्शन देखिए, सिर्फ उसकी बातों पर मत जाइए, क्योंकि विश्वास का मतलब अपनी समझ को बंद करना नहीं है। विश्वास के साथ थोड़ा परखिए और थोड़ी समझदारी भी जरूर बरतिए।
0: हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परखे, क्योंकि आप अनजान इंसान से मिल रहे हो जिसके बारे में नहीं जानते हो। और आजकल तो भैया सोशल मीडिया जमाना है, ऑनलाइन बात करते हैं, एक सेकंड में हम बात करने लग जाते हैं, ट्रस्ट भी कर लेते हैं, और वही ट्रस्ट जब आपका टूटता है तो आप खुद परेशान हो जाते हो। इसीलिए इंसान रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं, मतलब जैसे भी आप हैंडल करना चाहे उस तरीके से आप हैंडल करिए, लेकिन इतनी देर किसी पर ट्रस्ट करना, मतलब मेरे को लगता है कि गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। सो हम बात करेंगे विश्वास टूट जाए तो, बात वही आ गई ना दोस्तों, ट्रस्ट टूटना बहुत दर्द देता है, खासकर तब जब विश्वास किसी अपने ने तोड़ा हो। लेकिन किसी एक इंसान की गलती की वजह से हर इंसान को गलत मान लेना भी सही नहीं है। थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को संभालिए और फिर धीरे धीरे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि टूटा हुआ विश्वास उसी इंसान के साथ वापस बने, लेकिन इतना जरूर है कि आपका खुद पर विश्वास दोबारा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि एक बार मेरी ट्रस्ट है वो टूट गई है, तो अगर आप दूसरी बार भी वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बेवकूफी वाली काम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि एक बार धोखा मिल चुका है, तो उस रिश्ते में थोड़ा सा आपको संभालना बहुत जरूरी है, वरना फिर तो आप चक्की की तरह पिसते ही चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब विश्वास और दोस्ती। दोस्ती में ना हम बहुत सी बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, घूमते भी हैं, हर बातें शेयर भी करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास आपको बोलने के लिए सोचना ना पड़े, और आपको लग रहा है कि ये मेरे पीठ पीछे भी किसी के आगे बुराई नहीं करेगा और मेरा ही फेवर लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं, और ऐसे दोस्तों को ना अपने पास से जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं रहूं ना रहूं, मेरी ना मौजूदगी में भी ये मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, और बल्कि बोलेगा क्या, दूसरों के से सुन भी नहीं सकता है। तो आप बहुत लकी हैं, और आप भी अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो मैं तो कहती हूँ

0: भगवान का गॉड गिफ्टेड है आपके पास, संजो कर रखिए, और छोटा मोटा नोकझोंक तो होता ही रहता है, तो उस चीज में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमें खुद देखना होता है। और दोस्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दोनों की दोस्ती है और कोई तीसरा इंटरफेयर करता है आप दोनों के बीच में, मतलब होती है ना कि कोई कोई देख के बहुत जेलस फील करता है, वो सोचता है कि इसकी दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मतलब वही है ना, कंकड़ फेंकने वाली काम करता है वो। तो हमारी नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे कितने भी कंकड़ तूफान क्यों ना आ जाए, नींव कच्ची नहीं पड़नी चाहिए, पक्की नींव होनी चाहिए। तो दोस्ती देखिए क्या से क्या कर देती है।
1: दोस्तों, विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आप किसी से कह सकते हैं कि मुझ पर भरोसा कर लो, लेकिन असल भरोसा आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से बनता है। आप जो कहते हैं क्या वही करते भी हैं? मुश्किल समय में क्या आप साथ खड़े रहते हैं? यही चीजें तय करती हैं कि आप सामने वाला आप पर कितना भरोसा करेगा। इसीलिए विश्वास की बात हो तो शब्दों से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि विश्वास सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों से टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी की पर्सनल बातें शेयर कर देना, किसी की बात को मजाक में उड़ा देना, बार बार अपनी बात से पलट जाना, ये छोटी छोटी चीजें भी विश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अगर कोई आपको अपनी पर्सनल बातें बता रहा है तो उसे संभाल कर रखिए। किसी का भरोसा आपकी जिम्मेदारी है। तो एवरीवन, अगर कोई दोस्त या फिर कोई आपका लाइफ पार्टनर, आपका फैमिली मेंबर्स, कोई भी एवरीवन आप पर अगर भरोसा करते हैं ना, तो आप भी उस भरोसे को बनाए रखिए। क्योंकि दुनिया में ना बहुत लोग होते हैं जो हमसे बात करते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात हम उसी इंसान से कह पाते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट होता है। और अगर आप पर कोई ट्रस्ट करता है तो उसके ट्रस्ट को ऑलवेज बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे को बनाए रखेंगे ना, तो कल के दिन को आप भी किसी पर ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपके भरोसे को बनाए रखेगा।
0: बहुत अच्छी बात कही तुमने कि ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट दूसरों पर करते हैं तभी वो इंसान भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं परिवार में विश्वास की अहमियत, सबसे ज्यादा होती है अगर घर में बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी मिले, तो वो बाहर गलत लोगों के सामने अपनी बातें शेयर करने से बच सकते हैं। इसी तरह बड़ों को भी बच्चों पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। हर चीज पर रोक लगाने की बजाय उसे समझिए, उन्हें समझाइए, गाइड कीजिए और धीरे धीरे जिम्मेदारी देना सिखाइए। विश्वास परिवार को और मजबूत बनाता है। और मुझे लगता है कि बच्चों की बातें सुनना आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि आजकल हर कोई फोन में बिजी रहता है और बच्चों की बातें इतनी नहीं सुन पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी एक टाइम के लिए ऐसा हो जाते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। उनसे बात करने जाओ तो चिड़चिड़ापन फील करते हैं, बोलते कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। फिर वो दूसरों से अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं, बोलते कि हमारे घर में ये है वो है, तो वो लगता है कि हम मतलब पेरेंट्स की ही गलती है। मतलब बच्चों के साथ मुझे लगता है कि एक प्यारी दोस्त की तरह रखनी चाहिए।
1: Exactly. जैसे आपने अभी बोल रहे हो कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए, फ्रेंडली, उनको ना ऐसे स्ट्रिक्ट होना ठीक है पेरेंट्स के लिए जहाँ पर आपको गलत लगता है,
0: लेकिन उनकी बातें सुनना बहुत,
1: लेकिन उनकी बातें भी आप सुनिए। जब आप फ्रेंडली माहौल रखेंगे ना अपने बच्चों के साथ, एक दोस्त वाला रिश्ता रखोगे, तो फिर बच्चे भी इजिली आपको अपने हर एक बात शेयर करेंगे जो वो किसी अनजान व्यक्ति से कहने से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना दीना, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे ना अपनी बातें कहते हुए कतराते हैं, वो डरते हैं कि अगर हमने मम्मी को ये बोला है, पापा जी को ये बात बताई, तो वो मुझे कहीं डांटेंगे तो नहीं। इसी कारण, वो इसी डर के कारण बच्चा अपनी बात कई बारी नहीं कह पाता है, तो वो बाहर सहारा ढूंढने लगता है कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे,
0: मेरी बात सुने। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मुझे लगता है कि हम आपकी बात भी सुनेंगे और बात भी सुनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता, वो तो टाइम देखने के बाद पता चलता है, अच्छा इनमें इतने मिनट हमने बोल लिया, तो अब हम चुप हो जाते हैं, अपने बातों को विराम देते हैं और एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं आप सभी के लिए बात करने के लिए। तो अभी लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6।

0: हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना हम दूसरों का विश्वास जीतने के चक्कर में ना खुद को ही भूल जाते हैं। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे काम में भी कमी निकालेंगे, इसलिए लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उनके ओपिनियन के हिसाब से मत चलाइए। खुद पर विश्वास रखिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती के बाद उसे स्वीकार करना और सुधारना विश्वास को बचा सकता है। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उसे छिपाने के बजाय ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए। एक सच्ची माफी और अपने व्यवहार में बदलाव करिए। कई बार टूटे रिश्ते को संभाल सकता है, क्योंकि सिर्फ सॉरी बोलना काफी नहीं, बदलाव दिखाना भी जरूरी है।
1: और इसी के साथ साथ जरूरी है विश्वास में ईमानदारी। विश्वास की सबसे बड़ी मजबूत बेस है ईमानदारी। अगर सच बोलना मुश्किल लग रहा है, तब भी झूठ बोलकर चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सच कभी कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ लंबे टाइम तक रिश्ता नहीं संभाल सकता। इसीलिए अपनी बात क्लियर रखिए। सामने वालों को खुश करने के लिए झूठा भरोसा देना बेहतर है। सच्चाई के साथ बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 2 मिनट 2 सेकंड के लिए आप खुश करने के लिए बोल तो देंगे, लेकिन जब उसको आखिरी में सच्चाई पता चलेगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुरा लगे ठीक लगे, लेकिन सच बोलिए। सच बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ काफी टाइम तक चलता नहीं है।
0: और रीना, कई बार ना ऐसा होता है कि एक झूठ छुपाने के लिए ना हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं।
1: वो देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम बोल भी देते हैं, लेकिन हर बार झूठ बोलना गलत बात है।
0: राइट, एब्सोल्युटली।
1: और किसी इंसान को समझने के लिए टाइम दीजिए। पहली मुलाकात, पहली बातचीत या कुछ अच्छे शब्द किसी इंसान का पूरा कैरेक्टर तय नहीं करता है। टाइम के साथ इंसान के नेचर, प्रायोरिटी और बिहेवियर सामने आता है। इसीलिए रिश्तों में जल्दी मत रखिए। विश्वास धीरे धीरे बनाइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आप पर पूरा विश्वास करता है, तो उसकी कद्र कीजिए। हो सकता है उसने बहुत सोचकर आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हो। उसके भरोसे को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि किसी का कहना है मुझे तुम पर भरोसा है बहुत बड़ी बात होती है। इस एक लाइन के पीछे बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती है, क्योंकि हर किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। दुनिया में लाखों करोड़ों की आबादी है, और उस आबादी में से आपको ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि जब मैं अपनी बातें इसके साथ शेयर करूंगी तो ये कहीं रिवील नहीं करेगी। तो आप उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखिए।
0: और अब बात करते हैं हम विश्वास और कंट्रोल में। बहुत फर्क होता है रीना। किसी की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना सही नहीं है। कहाँ हो, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों हो गई, अगर ये सवाल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो रिश्ता भारी लगने लगता है। भरोसा रखिए, अपनी चिंता शेयर कीजिए और सामने वाले की पर्सनल स्पेस की भी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। एवरीवन कहते हैं ना, अगर आप किसी भी रिश्ते को ना बांध कर रखोगे ना, तो वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उस रिश्ते को आपको बांध कर नहीं रखना है, उस रिश्ते को आपको आजाद रखना है। जो आपका है ना, वो कहीं भी जाए आपके पास ही आएगा, और जो आपका अगर नहीं होना चाहता ना, उसे आप कितना भी कैद करके रख लो, कितना भी आप उसको कहते हैं ना कि कंट्रोल में रख लो, लेकिन जो आपका नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। और जो आपका होगा ना, यकीन मानिए एवरीवन, वो रिश्ते को जब आप आजाद रखते हैं ना एंड आपको उस पर भरोसा होता है, तो वो इंसान कहीं भी जाए वो आप ही का रहेगा। क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास रखिए खुद पर, एंड जब आप किसी भी रिश्ते पे भरोसा रखते हैं तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरती से चलता है।
1: पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम के बीच में खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता मुश्किल में हो, तब खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा, करूं, मैं सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। यही सोच धीरे धीरे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनाती है। इसीलिए सोच बदलो की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चैलेंज है। आज किसी एक ऐसे इंसान को थैंक यू बोल दीजिए जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं उन्हें बताइए कि मौजूदगी आपके लिए मायने रखती है, और साथ ही खुद को भी एक बेहतर कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है। शायद ये छोटी सी लाइन आपके लाइफ में पूरे दिन का मूड बदल सकती है, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से पहले खुद पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बदलाव दूसरों में देखने के बजाय पहले खुद में बदलाव कीजिए, तभी आप दूसरों के अंदर बदलाव देखेंगे, झांकेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आप खुद को ही नहीं बदलेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला बदल जाए, तो ये तो जरा सर गलत बात।
0: अब वक्त है आपके जवाबों का, तो बताइए एवरीवन, आपके लिए विश्वास का क्या मतलब है? क्या एक बार टूटने के बाद विश्वास दोबारा बनाया जा सकता है? क्या आप किसी को दूसरा चांस देंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप खुद पर भी उतना ही विश्वास करते हैं जितना दूसरों पर करते हैं? अपने जवाब हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे श्रोताओं की सोच भी बदल दे, तो उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। और अभी हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। इस ब्यूटीफुल शो में हमने बात की विश्वास की, दूसरों पर विश्वास कीजिए लेकिन अपनी समझ के साथ, रिश्तों में विश्वास रखिए लेकिन कम्युनिकेशन को कभी मत छोड़िए, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना मत छोड़िए, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है ना, तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे अब लेती हूँ जाने की अनुमति। याद रखिए, विश्वास रिश्तों को जोड़ता है और आत्मविश्वास जिंदगी को आगे बढ़ाता है। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, नई बातों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। टेक केयर एवरीवन।
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002243 0। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को, दिल्ली रोड जूडियो के सामने, कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276111।
1: दिस साइड आर्जेरीना FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं, यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
4: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
1: सही
4: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
4: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
4: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
1: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है?
4: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
1: शो आगे बढ़ते हैं यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
4: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की

0: खिलाफ मानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
1: सुना सकती है, बिल्कुल
0: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
1: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
0: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
1: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
0: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
1: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते
0: हैं।
1: हाँ,
0: अलग अलग, हर रिट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रिट होती है ये रिट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पे इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है, तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पर बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
1: या नहीं है।
0: हाँ। मुख्यतः ये 5 रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
1: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
0: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट
1: हूँ बिल्कुल।
0: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
1: क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
0: मेरे को माना तो बाद एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद मिली हुई। वैसे बाइक क्वालिफिकेशन मैंने मुझे एम कॉम करना है, उसके बाद मेरे को एम बी ए करना है, लेकिन एल एल बी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
1: हाँ सर, वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
0: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
1: ओके।
0: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
1: बिल्कुल, क्या बात,
0: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
1: बिल्कुल,
0: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में,
1: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
0: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
1: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
0: मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
0: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते। लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए बिल्कुल।
0: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना है सुबह शाम, तो
1: बिल्कुल
0: बस यही लाइफ है।
1: सर, किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और
1: बिल्कुल
0: किताबें ही आपकी।
1: बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
0: है।
1: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देर आर लॉट ऑफ चीज, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारे घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं उन्हें संभाल निकालनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसकी मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, विमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि
0: absolutely.
1: वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: कि एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता
0: है,
1: बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रूपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल

0: बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है। इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही। कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
0: एब्सोल्युटली
1: नहीं, तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम। इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है। आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से, ये सब नॉर्थ में है। इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्चे की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं, उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी। मंदिर ऊपर हुआ करते थे, तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है, यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग, एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स, की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज। आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया है, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए, तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32, एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा। हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है, तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम।
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे। आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं। ढेर सारी

0: प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं। एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को
1: और वही कहाँ गए थे तुमने,
0: डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं।
2: दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा।
3: भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस के तट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तेल टैंकर में आग लगी, चालक दल के सभी सदस्यों को बचाया गया। फ्रांस में पेरिस और अन्य हिस्सों में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि की मांग कर रहे हाईस्कूल के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक असर डालता है और भूटान जैसे देशों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। इनमें ग्लोबल साउथ की आवाज, शिखर सम्मेलनों का आयोजन और अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की भारत की पहल प्रमुख है। श्री तोबगे ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि का पड़ोसी देशों के विकास में उसके योगदान की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने याद किया कि जून 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही सप्ताह बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौते का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि एक समझौते के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और घाना विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दूसरे समझौते में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और अब्लाक्वा के बीच भारत घाना साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। रूस के परिवहन मंत्रालय के अनुसार आग की तीव्रता कम होने के बाद दमकलकर्मी इसे बुझाने का प्रयास करेंगे। यह घटना रूस के प्रमुख काला सागर तटीय पर्यटन स्थल सोची के पास हुई। रूस ने लिथुआनिया को उसके क्षेत्र में नाटो के सैन्य अड्डे और परमाणु हथियारों की तैनाती के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि लिथुआनिया में नाटो के सैन्य अड्डे और परमाणु हथियारों की तैनाती से यूरोपीय महाद्वीप में अस्थिरता बढ़ेगी बल्कि इससे तनाव और भी बढ़ेगा। ये चेतावनी लिथुआनिया की संसद में कल सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन को शुरुआती स्वीकृति मिलने के बाद आई है। संशोधन पर अंतिम मतदान अगले साल जनवरी में होना है। इससे लिथुआनिया में नाटो के प्रमुख परमाणु हथियारों की तैनाती का रास्ता खुल सकता है। श्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस में पेरिस और अन्य हिस्सों में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि की मांग कर रहे हाई स्कूल के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शनों में शामिल हुए 2.5 लाख से अधिक लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि सभी मामलों में पुलिस की कार्रवाई उचित थी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गए, जिसके लिए पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि सरकार और स्कूल अधिकारियों को छात्रों की चिंताओं को सुनना चाहिए और समाधान खोजने की दिशा में काम करना चाहिए।
5: चैट जीपीटी सीखना है? आ जाओ, सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है? आ जाओ, सिखा दूंगा। AI टूल सीखना है? आ जाओ बॉस, वो भी सिखा दूंगा। 2 आवर्स की वर्कशॉप में इरिप्लेसेबल बना दूंगा। Hi, my name is Aditya Kachwe and I'm an alumni of IIT Kharagpur. Along with that, I'm co-founder of multiple 8-figure companies like B10X, Mad About Sport and Muni EdTech. I'm someone who is really, really passionate about AI tools. So, I have researched more than 1372 AI tools and I have personally used them. And I have found 10 most useful AI tools for every working professional, which will make you absolutely irreplaceable in the job market and you'll be getting most out of this AI revolution. Is my workshop any good? No, it's freaking awesome. We have rated 4.92 out of 5 rating among 24,000 workshop participants. If you are someone who is looking to upskill in AI, we are the best option for you. If you want to register before tonight, I'll be giving you bonuses worth 10,500 rupees. All these things just at rupees 10. Click on the link below, sign up for the workshop and see you inside the workshop.
6: These are the Sony Link Buds Clip, and as the name suggests, they actually clip onto the outside of your ears. Now, this is the first time I've reviewed a pair of clip-style earbuds, and when I first pulled them out of the case, I wasn't really sure what to expect. They looked quite strange, and I wasn't entirely sure where they were even supposed to sit on my ears, and honestly, I wondered how well something like this would even work. But after spending some time with them, I ended up liking them a lot more than I expected. Now, to be upfront, they don't have the best sound quality out of all the other earbuds that I have tested. The bass is a little light, and there's obviously no active noise cancellation, and at $230, they're definitely not cheap. But these gave me a completely different learning experience, one that almost felt like I was having my own personal soundtrack playing throughout my day. Now, I do want to mention that this video is not sponsored. Everything here is my own experience and what I thought about these buds. So let's talk about what the clips got right, where they fell short in my opinion, and whether this open ear design is something that you should be considering yourself. All right, first up, let's take a look at the design. And you know what? Before we even do that, let's open it up and see these guys in the box. So here's the case and the buds themselves. But something I want to show you else here in the box, because I don't want you to miss out on this, is that in this case, I pulled this part out. Down in here is a pretty important part. Now, I'm not talking about the documentation, but if we slide this out in the back here, I'm going to go ahead and open this up. We have got our 2 air fitting cushions back here. So we're going to pop both of these out. Go ahead and close this back up. Set that over here. But these can be a pretty important part of wearing these earbuds right here. And we'll talk about those in a second. But I wanted to point that out to you. Now, if we take a look at the actual clips themselves, here is a close-up look of them. They do have a small mic built into the side right over here. We have got our speaker that is going to fit into your ear. And then this part right here, the bigger part, is the part that's going to be on the outside of your ear. Now, we do have a flexible piece in the middle, so that is going to allow you to fit it around your ear. The large part's going on the outside, so if I put these on right here, you can see that this part is going to fit right into the middle. Now, the way that these fit too is that you want this black strip to be pretty much parallel with your head. So across there, you don't want it slipping down. If you do, that is going to mess up the speaker a bit. So you do want them going across right there. If we take a closer look at the actual speaker, we can see our charging ports.
3: दो सप्ताह से अधिक समय से कक्षाओं का बहिष्कार और स्कूलों की नाकाबंदी के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 6,500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन में संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2026 के तहत युद्धाभ्यास किया। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने अखमीरोवो प्रशिक्षण क्षेत्र में रास्ता तलाशने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने असली हथियारों से फायरिंग की और संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया। इस दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के अनुभव और बेहतर तरीकों को भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तत्काल प्राथमिकता सैन्य गठबंधन का विस्तार करने के बजाय जारी युद्ध को समाप्त करना है। आइसलैंड की विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री रूबियो ने नाटो के भविष्य में विस्तार और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमरीका की रणनीति से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि गठबंधन में किसी नए देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। माली की सेनाओं ने उत्तरी शहर किदाल पर 5 महीने बाद दोबारा कब्जा कर लिया है। इस शहर पर आजाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े सशस्त्र समूह जमात नुसरत अल इस्लाम के अलगाववादी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सम्मेलन में भारत और ईएफटीए के सदस्य देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्सटेनस्टीन के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के कारोबारी और प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना, व्यापारिक साझेदारियां बढ़ाना तथा निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार के नए अवसर तलाशना है। $10 खरब की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टीएपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान परिवहन प्रौद्योगिकी, मोबिलिटी प्रणालियों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत।
3: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर एक गेंद में 171 रन बनाए। जवाब में भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस के तट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तेल टैंकर में आग लगी। चालक दल के सभी सदस्यों को बचाया गया। फ्रांस में छात्रों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। पेरिस और देश के अन्य हिस्सों में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और भारत ने पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Everything we build, everything we grow.
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
10: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
11: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं महिला मंच शो, जहां हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। सो मोस्टली देखा जाता है कि घर पर हमारी प्यारी महिलाएं ही रहती हैं और कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है क्या नहीं और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन OTP, ATM, PIN, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती हैं। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुंचानी हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और रीना जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारियां दे रही हैं बैक टू बैक। शो का नाम है महिला मंच और दोस्तों जनगणना क्यों जरूरी है? अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो विकास की योजना कैसे बनेगी? जनगणना सरकार को ये समझाने में मदद करती है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ स्कूल। आपकी एक सही जानकारी देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। लेकिन सावधान रहें, कई बार सरकारी कर्मचारी आपसे बैंक OTP या फिर ATM पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सही जानकारी दें लेकिन अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें।
11: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने खुशी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। अगर लोग गलत एज, गलत संख्या, गलत जानकारी तो सरकारी रिकॉर्ड भी गलत बनेगा और जब रिकॉर्ड गलत होगा तो योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और OTP जैसी चीजें कभी शेयर मत करिए। जागरूक बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। और श्रोताओं एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही होती हैं और वो घबरा जाती है जब उनसे कोई पूछने के लिए आते हैं जनगणना के समय में, तो आपने घबराना नहीं है, बस सही जानकारी देनी है। कभी कभी होता है ना कि हम भाई सच नहीं बोलेंगे, हम गलत बोल देते हैं, और जब आप गलत बोलते हैं तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो गलत ही साबित हो जाती है। तो फिर जो आपको योजनाएं मिलने वाली होती है उसमें भी दिक्कत आती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो उसी के बाद हमें फिर से चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए।
12: कि सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब आप सही जानकारी देंगे तब आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है दोस्तों। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक खाते और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा के लिए होता है। इसे किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सरकारी कर्मचारी कभी OTP नहीं मांगते। अगर कोई जनगणना के नाम पर OTP मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है,
11: क्योंकि जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे पहचान पत्र कब दिखाना चाहिए? जब कोई सरकारी अधिकारी जानकारी लेने आए तो पहले उसका पहचान पत्र जरूर देखें। बिना पहचान पत्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज हाथ में मत दीजिए। सही अधिकारी हमेशा अपनी पहचान बताते हैं। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले, जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक बनाए, और इस चीज में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि जो आपसे जनगणना के लिए आ रहा है वो भी आपको बताएगा कि हम सरकार की तरफ से, उसके गले में आई कार्ड जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना है।
12: बैंक डिटेल क्यों नहीं बतानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है

कुछ फ्रॉड इंसान भी आ जाते हैं और वो ऐसे ही डिटेल्स कुछ पूछ लेते हैं जो पर्सनली होती हैं, जो हम हर किसी से हमें नहीं शेयर करने चाहिए। दोस्तों, जनगणना में आपकी बैंक जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन या मोबाइल बैंक पासवर्ड पूछे तो समझ जाइए कि वे धोखेबाज हो सकता है। सरकारी प्रक्रिया में आपकी निजी बैंक जानकारी जरूर नहीं होती, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। तो श्रोताओं, अभी आपसे मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और करेंगे आपसे और भी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे पिटारे में है। शो का नाम है महिला मंच, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो लाइक घर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर बुजुर्ग लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समझाइए कि OTP, ATM, पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
0: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बता। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। सो अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाए। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताए। OTP और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहें कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
0: और साथ ही साथ अब आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप कोई लिंक के सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करें। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
1: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया या फिर कोई ऐसी चीजें कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं होती है, बस जागरूक रहने की जरूरत होती है, सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
0: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए, तो आपने जो डिटेल्स है वो शेयर करिए। और आपको भी पता है कि OTP, आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है। सो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने एंजॉय किया आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और जनगणना और शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं। साथियों, जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहाँ नए स्कूल की जरूरत है, यानी आपकी जानकारी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सही जानकारी देना देश की तरक्की में योगदान देना है।
1: सही जानकारी देश की तरक्की। सोचिए, अगर आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में खुशी बहुत सी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इनफैक्ट ना कोई फीस लगता है वहाँ पर, ड्रेसेस और बच्चे के अकाउंट में पैसे भी आते रहते हैं
0: और बुक्स भी मिलती है।
1: हाँ, जूते, मतलब हर चीज अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आप सही जानकारी देंगे तभी और भी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे जनगणना और स्वास्थ्य। जनगणना से यही पता चलता है कि किस इलाके में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जरूरत ज्यादा है, इसी आधार पर नई सुविधाएं शुरू जाती है। इसीलिए आपकी सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि देखा जाए हम पानी के वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं किसी इलाके में नल नहीं है तो आप उससे इसके बारे में भी खुलकर बताएं। कहीं आसपास आपके जो नाले हैं वो बहुत गंदे हैं, काफी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन डिटेल आपने सही जानकारी देनी है।
0: मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी रीना, जैसे आपने बोला कि साफ सफाई के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना, अस्पताल के बारे में कुछ गांव ऐसे भी हैं अभी जहां पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती हैं। जब तक वो शहर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए साथियों, अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके गाँव में भी अस्पताल होंगे और जब अस्पताल होंगे तो जो मरीज को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट होते हैं, वो जल्दी से उनको इलाज भी मिलेगा और जब इलाज सही समय पर मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे, रीना जी बात कर रही थी स्वास्थ्य और जनगणना के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल फ्रॉड के बारे में। मोबाइल फ्रॉड से सावधान रहें। अगर साथियों कोई मोबाइल पर लिंक भेजकर जानकारी मांगे तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। फर्जी लिंक आपके फोन और बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो साथियों, अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच, जहां पर महिलाओं की बातें भी होती हैं, बुजुर्गों की बातें भी होती हैं और छोटे बच्चों की बातें भी होती हैं और हम जैसे युवाओं की बातें भी होती हैं।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: शॉपिंग भी।
5: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
6: कौन है ये?
5: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश 3 से 5 मंडे टू सैटरडे, करती है आपसे दिल की बात।
7: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
5: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सतरीकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का आरजी खुशी बहुत बहुत स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बात करें तो वक्त है स्टूडियो की घड़ी में 3:06 और ये खूबसूरत सा समय एंड खूबसूरत सा सफर शुरू हो चुका है। हेलो फरमाइश का एंड एवरीवन, देखिए गए खूबसूरत सा पल जब हम घर में अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फ्री होते हैं और कुछ ऑन द वे कार में होते हैं। और दोस्तों कुछ पल अपने लिए जरूर निकालिए, थोड़ी सी मुस्कान सजाइए और दिल की कोई प्यारी सी फरमाइश आज अपने नाम कीजिएगा। दोस्तों दोपहर का ही खूबसूरत सा समय जब सुबह की भागदौड़ थोड़ी थम चुकी है, कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी रेडियो की आवाज थोड़ी वॉल्यूम मतलब बढ़ा ली है ताकि वो भी सुन सकें अपने नए नए जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी फरमाइशें, उनकी आवाज, उनकी बातें। तो तैयार हो जाइए आप मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में और मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। चलिए बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हेलो फरमाइश जी, क्या नाम है आपका सर जी? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओके, बताइएगा कैसे हैं आप सर? अच्छा ही रहना चाहिए। और बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है सर? अच्छा अच्छा, ओके। तो बताइएगा आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं इस वक्त? हाँ जी बताइएगा। अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। मैंने कहा ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, आप एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बताइएगा। ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए विवन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और लौट कर आते हैं। आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा ये खूबसूरत गाना।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी खुदा गवाह, कविता कृष्ण मूर्ति और साथ में मोहम्मद अजीजी की आवाज। और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:16। और दोस्तों कुछ रिश्ते ना आवाज से बनते हैं, चेहरे सामने नहीं होते फिर भी अपनापन महसूस होता है। आपसे मेरी मुलाकात भी कुछ ऐसी ही है, हर रोज आपकी आवाज सुनती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ और लगता है जैसे कोई अपना ही फोन के उस पार बैठा है। तो आज आप भी चुपचाप मत सुनिए, फोन उठाइए, मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 और बताइएगा इस वक्त आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं, कौन सा ऐसा गाना सुनना चाहते हैं जो आप गुनगुना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप मोहन जी।
1: बहुत बहुत बढ़िया है मैडम जी, अभी तो एक छांव के नीचे लीम का झाड़ है वहाँ बैठ गए हैं, हमारे पशु चल रहे इधर उधर खा रहे तो बैठ गए आराम से और गीत सुन रहे।
0: अरे वाह, महाराष्ट्र का मौसम कैसा है बताइएगा जरा।
1: महाराष्ट्र का मौसम बेहाल है मैडम जी, अभी सोयाबीन कटाई चालू है, हमारा सोयाबीन कल काटे है, कल मंगलवार को और शुक्रवार गुरुवार को जमा करेंगे, कल का दिन रखेंगे।
0: अच्छा,
1: तो हाँ जब मिशन से निकालेंगे एक बार ऐसा एक जगह पे जमा करने का, मिशन से निकालने का।
0: ओके,
1: सोयाबीन
0: तो बताइए कैसे।
1: बाद में सोयाबीन हो गया तो फिर चना गेहूँ जो कुछ हमारी तरफ, जो पानी तो नहीं है मैडम जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा, आया तो आया नहीं आया अगर हो गई भगवान के हिसाब से आ गया, नवरात्रा चालू होने वाली है कल से, तो पानी होगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, जो कुछ है ऊपर वाले के हाथ।
0: बिल्कुल, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऊपर वाले एक्सेप्ट भी करते हैं सर। और आपने बताया अभी पशुओं के बारे में, आप पशुपालन करते हैं।

0: तो आपने क्या क्या पाला हुआ है, गाय भैंस क्या क्या है आपके पास बताइएगा?
1: गाय नहीं है, भैंसा पूरे भैंसा ही है हमारे घर, छह भैंसा है।
0: अच्छा अच्छा, आपके यहाँ पर दूध का क्या रेट है?
1: दूध देखिए, हम जब दूध निकालते हैं डेयरी को देते हैं, कोई प्लान है, एक डेयरी का प्लान है, उसको 70 रूपए, 75 रूपए, 60-65 रूपए के ऊपर से भाव गिरता है मैडम जी। 68, 70, 72 ऐसा, जैसे जैसे फैट आता है तो वैसे वैसे होते हैं ना।
0: अच्छा अच्छा ओके, तो बताइएगा
1: ज्यादा ज्यादा 70-75 रूपए गिरेगा।
0: ओके, 70 या फिर 75-75, राइट?
1: हाँ जी,
0: राइट। बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं इस वक्त?
1: एक गीत है, इसका है बेवफा सनम, कुमार सोनू निगम की आवाज है।
0: हाँ जी,
1: उसमें गीत है मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरज तो दिखला जाना।
0: इतना सैड सॉन्ग किसके लिए सुनना चाहते हो आप?
1: नहीं नहीं, वैसा किसी के लिए नहीं, बस एक अपने आप ही गाना अच्छा है, तो किसी के लिए डेडिकेट करने की कोई उम्मीद नहीं है मैडम जी, बस
0: ओके। आपको पसंद है,
1: सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, आपको पसंद है इसलिए आप सुनना चाहते हैं, ठीक है सर, सुनाते हैं ट्रैक। एंड आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद सर।
1: थैंक यू, धन्यवाद। कल कोशिश कर रहा था मैडम जी, लेकिन कल आप कार्यक्रम में नहीं थे, आपकी आवाज से हमने आपको पहचान लिया। आप
0: कल तो हम कल कार्यक्रम में आए थे, बट हम मंडे में नहीं आए थे सर।
1: शायद हो सकता है, फिर ऐसा हो भी सकता है, कल नहीं सर, सोमवार को।
0: हाँ, सोमवार को, मंडे में नहीं आए थे, कल हम आए थे। और देखिए, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, आज भी आपका कॉल लग गया और बातचीत भी हुई है। तो मोहन जी, सुनिएगा ये ट्रैक अपनी पसंद का, इफ यू फन, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा इस वक्त। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9833789689। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियां।

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:27। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश एंड अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक सोनू निगम जी की आवाज में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से बात कर जानते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं। सर सोनू गौतम जी रामपुर से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप अपने बताएं कैसे हालचाल
0: हैं। जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। बाकी आप बताइएगा कहाँ पर हैं अभी करंटली आप।
1: अभी करंटली तो मैं दिल्ली में हूँ।
0: अच्छा दिल्ली में, तो बताइएगा कैसा वेदर है, दिल्ली का मौसम कैसा है।
1: यहाँ का मौसम अभी ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है।
0: अच्छा
1: ठीक हो गया मौसम।
0: ओके चलिए अच्छी बात है, दिल्ली का वेदर अच्छा है। और आप बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं इस समय।
1: आज हमको सुशांत मूवी का गाना सुनवा देना
0: जी।
1: सारी रात की याद मुझे आती रही उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज में।
0: ओके
1: मेरे शामिल रहेंगे।
0: बिल्कुल बताइएगा अपने दोस्तों के नाम।
1: सबसे पहले तो आप शामिल रहेंगे और आनंद भाई है जो आपके भाई है।
0: हाँ जी ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं ये ट्रैक। और दोस्त भी हैं आपके, अभी बताओ बताओ।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, सतीश शर्मा जी हैं, परवेज अहमद जी हैं।
0: हाँ जी
1: और राजेंद्र जंगवाल जी हैं, अविनाश तेली जी हैं और एमडी साहिद जी हैं बड़ापुर बिजनेस से।
0: ओके अरे वाह
1: जी हैं और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट करना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, बहुत सारे दोस्त, आपकी दोस्तों की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है और अच्छी बात है कि रेडियो के जरिए इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, है ना।
1: लिस्ट तो बहुत लंबी है पर मैंने नाम कम लिए कुछ।
0: अच्छा ही किया आपने अभी शॉर्ट लिए सर, क्योंकि औरों को भी मौका मिलना चाहिए।
1: इसलिए कम लिए थे
0: ना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर, एंजॉय कीजिएगा अपना फेवरेट ट्रैक। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौटकर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तभी, नहीं करोगे तो कैसे लगेगा।

0: हेलो नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है हेलो फरमाइश। और दोस्तों अभी आपने पहला सा ट्रैक सुना, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। और ये यादों का जो सिलसिला होता है ना, बड़ा अलग ही है। एंड दूर इंसान होता है लेकिन उनकी यादों के जरिए वो करीब आ जाते हैं। चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: जी
0: बताइएगा अपना नाम।
1: मेरा नाम अब्दुल्ला है।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
1: जी
0: बताइएगा अब्दुल्ला, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: ओके, हम भी ठीक हैं। और हेलो फरमाइश में कब से कॉल लगा रहे हैं आप?
1: चार हफ्ते हुए।
0: अच्छा नहीं, अच्छा रेगुलर आप सुनते हैं, कैसा लगता है आपको ये हमारा शो?
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। ओके, तो बताइएगा क्या कहा आपने?
1: जब से शुरू हुआ रेडियो जब से मैं सुन ही रहा हूँ।
0: अच्छा, तब से आप सुन ही रहे हैं। ओके अब्दुल्ला, बताइएगा आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं?
1: एक पंजाबी ट्रैक है नया।
0: हाँ,
1: गुजारिश।
0: गुजारिश। ओके, ये ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं सतेंद्र सरताज जी की आवाज में। एंड आपने हमें कॉल किया, थैंक यू। एंजॉय कीजिएगा ट्रैक। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक गुजारिश। एंड गाना बहुत ही प्यारा है एवरीवन, लिरिक्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। अब सुनिएगा, मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया सतेंद्र सरताज जी की आवाज में। वक्त हुआ स्टूडियो की घड़ी में 3:42 और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गई हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश। आपको भी आदाब, क्या नाम है आपका? मैं तो ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा मोहतरमा। हाँ जी, क्या बात है शमा, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना नाम प्रेजेंट किया आपने। बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके?
1: बहुत ही अच्छी, और आज काफी दिनों के बाद मैंने कॉल की है और आपसे बात हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके, एंड हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। बताएगा शमा, आज आप हमारे साथ जुड़े हो, क्या फरमाइश है, कौन सा गाना है जो आपके दिल में बज रहा है? हाँ हाँ बताओ।
1: मैं मूवी का नाम रहेगा तुम बिन, और गीत के बोलेंगे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है।
0: नाइस ट्रैक। और ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप? ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं? कोई आपकी फ्रेंड है, सिस्टर्स हैं? ओके, तो सभी के साथ सुनवाते हैं ये ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए शमा। मोस्ट वेलकम। तो चलिए शमा जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक सोनू निगम साथ में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज, और बहुत ही बेहतरीन गाना है। हम लौट कर आते हैं, आप मुझे कॉल लगाना बिल्कुल मिस मत कर जाना। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ऐसा ही होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं ना, तो वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत एंजॉय किया और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश,
1: हाय
0: जी, हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन जी, आप कैसे हो?
0: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: जिला मुरादाबाद ग्राम गोटी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: निखत फातिमा जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, बताइएगा कैसे हैं फैमिली में आपके सब लोग?
1: जी यहाँ पे तो सभी लोग खैरियत से हैं, आप अपनी बताएं।
0: हाँ, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी, रात फतेह अली खान जी की आवाज में है, तो इतनी खूबसूरत है सीता दीदार पे तेरे।
0: ओके, जरा गुनगुनाकर भी सुनाइए हमें।
1: जी आवाज तो अच्छी नहीं है।
0: ओहो, आपने पिछली बार तो हमें बहुत प्यारा गुनगुनाया था, गुनगुनाकर गाना सुनाया था, तो आज फिर क्यों नहीं? हाँ
1: ओके जी सुनाती हूँ।
0: हाँ
1: तो इतनी खूबसूरत है सीता दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे।
0: वाओ, बहुत प्यारा आपने गुनगुनाया है। लगता है कि आज आपकी मम्मी पास में है। हाँ
1: अम्मी पास में ही है दी,
0: हाँ,
1: सुनाएगी
0: तभी इतने धीरे धीरे से गुनगुनाया है। उस दिन तो आपने बहुत लाउडली यू नो सिंगिंग किया था,
1: उस दिन की बात ही कुछ और थी ना।
0: उस दिन कॉन्फिडेंस ज्यादा था, आज कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, ऐसा है क्या?
1: हाँ जी।
0: ओके, तो बताइएगा डियर, और ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: जी मेरे साथ है समा परवीन रामपुर से,
0: ओके,
1: और अम्मी है, सिस्टर है,
0: अरे वाह,
1: और सुनने वाले सभी।
0: ठीक है,
1: और
0: सुनवाते
1: कुछ
0: हैं
1: कहोगे
0: गाना।
1: दी?
0: हाँ हाँ बताइएगा।
1: नजर को नजर की नजर ना लगे, नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुम्हें देखा है कुछ भी इस नजर से, जिस नजर से आपको नजर ना लगे।
0: हाय रे बा, फिर तो आप देखते ही रहो हमें।
1: हाँ जी मैं देखती हूँ अक्सर आपकी पिक देखती हूँ, और पता है
0: ओके,
1: क्या, जब तक मैं बात कर लेती हूँ ना आपकी आवाज भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जब तक अगली बार कॉल ना करूँ उसे ही सुनती रहती हूँ।
0: अरे इतना प्यार करती हो आप, थैंक यू सो मच,
1: आपकी रिकॉर्डिंग और अपनी मैं आवाज सुनती रहती हूँ जी।
0: लव यू टू डियर, इतना सारा प्यार आप हमें करते हैं एंड
1: जी बहुत ज्यादा।
0: अच्छा लगता है हमें, शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं प्यारा सा
1: ओके
0: गाना,
1: थैंक यू जी, बाय बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक राहत फतेह अली खान जी की आवाज में। मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, आपका भी कॉल डेफिनेटली लगेगा। और कोई गाना सुनने का मन है या मन अभी अभी बना है ना, तो आप बेफिक्र होकर कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुनिएगा ये प्यारा सा गाना।

0: वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, खुशी है आपके साथ। और अभी आपने एंजॉय किया ये ब्यूटीफुल ट्रैक राहत फतेह अली खान जी की आवाज में। अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश सर, आप प्लीज थोड़ा सा रेडियो रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। हाँ जी, बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर।
1: संभल
0: से बात कर रहे हैं, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: मेरा नाम फैसल खान।
0: फैसल खान जी, बताइएगा कैसे हैं आप सर।
1: बहुत बढ़िया,
0: ओके, मस्त ही रहना चाहिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है और मुझे लगता है कि हर दिन को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हर दिन स्पेशल होता है, राइट जी। बताइएगा आप, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश पहले से मुझे ये सॉन्ग पसंद है
0: जी, बताइएगा कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है।
1: दिलवाले में आप कोई से भी गाना सुना दीजिए, कोई से भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: अच्छा, आपको दिलवाली जो फिल्म है वो बहुत ज्यादा पसंद है, उसके सारे गाने आपको पसंद है। ठीक है, हम कोई भी गाना आपके लिए प्ले करते हैं, एक ब्यूटीफुल ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, ठीक है सर।
1: थैंक यू, बिल्कुल आप ही की तरह।
0: ओके, मोस्ट वेलकम सर,
1: बाय।
0: तो चलिए फिफन सर ने कहा है कि आप दिलवाले फिल्म का कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, तो एक गाना है बहुत ही प्यारा सा कुमार सानू जी की आवाज़ में, मैं वापस आती हूँ लौट कर, आप एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। एंड कॉल करने के लिए मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, इस पर आप कॉल लगाइए, खुशी से बातचीत कीजिए और अपना फेवरेट ट्रैक भी सुनिएगा, अपने सफर को बनाइएगा और भी ज़्यादा अमेजिंग।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
4: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
5: कौन है ये?
4: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
6: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
4: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 4:08 और खूबसूरत सा समय। देखिए, अब मौसम में भी परिवर्तन आ गया है और इस ब्यूटीफुल शाम में ना अदरक वाली चाय अगर मिल जाए गर्मा गर्म, ओए होए, पर क्या कहने शाम के। हाँ चलिए, अगर आप चाय पी रहे हैं या फिर बनाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल बनाइएगा। चाय का आनंद लीजिए अपने फेवरेट गानों के साथ। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर, क्या नाम है आपका?
1: मैडम जी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा सर।
1: मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, और आज मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं, और उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा किया वक्त पड़ने पर वही लोग बदल जाते हैं।
0: क्या बात है सो, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने कही हैं। अपना नाम भी बताइएगा।
1: मैडम, मैं ग्राम अचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से तौफीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपकी सो?
1: मैडम मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसी हैं?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड?
1: मैडम मौसम तो बढ़िया है, हल्की गर्मी हो रही है, सुबह शाम में ठंड हो रही है।
0: हाँ, सुबह शाम में गुलाबी गुलाबी हल्की हल्की ठंड हो रही है। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: मैडम आज फिल्म का नाम है बाप एक नंबरी बेटा दसंबरी, और बहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल कहिएगा।
1: कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, और प्यास बुझती नहीं और बरसात गुजर जाती है, और अपनी यादों से कह दो कि ऐसे ना आया करें, और नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है।
0: अरे वाह, क्या बात है
1: मैडम, बता दोस्त मेरे।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे कि सखावत हुसैन मंसूरी, शकूर
0: हाँ
1: भाई मंसूरी, और लहिक मंसूरी,
0: ओके,
1: धर्मा कुमार सैनी और सानूर अंसारी, और साथ में मैडम आप।
0: ठीक है सर, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया सर,
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं वापस आ रही हूँ लौटकर इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 98-378-96-96, 9837-896-896।

वेलकम टू द एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी एंड इफ यू फन. वक्त हुए हैं अभी 4:16 और इसमें हमारे बहुत सारे लिसनर हैं जो ऑन द वे कार में हैं, जो एफएम मुरादाबाद 89.6 को सुन रहे हैं. आप से बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, सफर चाहे कितना भी जल्दी में हो, अपने और अपनों की सुरक्षा सबसे पहले रखिएगा. गाड़ी आराम से चलाइए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए और हाँ, सफर को थोड़ा खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी तो आरजे खुशी की है, वो आरजे खुशी पर आप छोड़ दीजिएगा. एंड रोड पर आप ध्यान रखिए और बस आपसे खुशी कहती है कि इतने प्यारे से क्यूट से चेहरे पर ना आप स्माइल भी जरूर रखिएगा. और बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं. हेलो फरमाइश जी. वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका सर? सर आपकी वॉइस मुझे क्लियरली आ रही है प्रॉपरली एंड आप क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज नेटवर्क में आ जाइएगा थोड़ा सा. हेलो जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर. हाँ जी ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना. आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया. एंड दोस्तों आप जब भी कॉल करें ना प्लीज थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइएगा ताकि आपकी वॉइस प्रॉपरली हमें मिल पाए. आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ पाऊंगी एंड हमारी ऑडियंस भी सुन पाएगी, तो उसके लिए आपको नेटवर्क में आने की जरूरत है. और हाँ, आपके बैकग्राउंड में कोई भी शोर ना हो, आप जहाँ पर भी बात करें वहाँ का जो यू नो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साउंड स्लो होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं, ताकि आपकी बातों को हम सुन पाएं. और अपना फेवरेट गाना भी मुझे ज़रूर बताइएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896.

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और वक्त हुआ है अपने स्टूडियो की घड़ी में 4:29। एंड एवरीवन, अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक जॉनी मुखर्जी की आवाज में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं शकूर भाई मंसूरी, ग्राम चौरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर, पाख वाली गली, मोहल्ला नंबर 2 से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: फरमाइश दामिनी फिल्म से सुना दीजिए।
0: जी दामिनी फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: सावन झूला झूलन, मैं ये दादा कैसे बोलूं।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत।
1: कुछ दोस्त हैं मैम।
0: जी बताइएगा।
1: तौफीक मंसूरी, लईक मंसूरी, सखावत हुसैन मंसूरी और बरफराज मंसूरी, विकास श्रीवास्तव।
0: ठीक है सर, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं ये गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: जी सर, तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी।

0: हेलो गुड इवनिंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो का नाम हेलो फरमाइश है। वक्त हुआ है 4:38। हमारे साथ हमारी कॉलर भी कनेक्ट हो गई, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश जी, क्या नाम है आपका?
1: अर्शी नाम है।
0: अर्शी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रही हैं, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं, बस घर में ही रहते हैं।

0: ओके, घर की जिम्मेदारियां निभा दी हैं आप। जी, तो बताइएगा कैसे, मतलब पूरा दिन गुजर जाता है कामों में, रेस्ट भी करते हैं अपने लिए, नहीं आराम करती हैं आप?
1: नहीं, रेस्ट भी करते हैं, काम भी करते हैं।
0: बहुत जरूरी है मैम, देखिए काम के बीच अपने आप को भी टाइम देना बहुत जरूरी है, एंड जब खुद को समय देते हैं तभी हैप्पी फील कर पाते हैं ना।
1: हाँ, रेस्ट तो हम काफी कर लेते हैं।
0: अच्छा, काफी कह लेती हैं। ओके, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारी फरमाइश है, फिल्म का नाम है बलमा
0: हाँ,
1: और गाने के बोल हैं, जीने की तमन्ना हो।
0: जीने की तमन्ना हो। ओके, ये प्यारा सा गाना सुनवाते हैं आपको।
1: बाय।
0: जी, आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया, बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक जीने की तमन्ना हो, तो मेरी जरूरत हो, एंड अमेजिंग ट्रैक। मैं वापस आती हूँ, तब तक आप ही कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हाँ, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, अगर आप कॉल करती हैं तो प्लीज बात किया कीजिए, आप कुछ बोलती नहीं है कॉल करके, अच्छा नहीं लगता है। एवरीवन, आप इतनी मेहनत से कॉल लगाए और बातचीत ना हो पाए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करें तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें। बाकी सुनते रहें फिर मुरादाबाद 89.6।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका. हेलो फरमाइश, शो में खुशी आपके साथ है. और देखिए अभी आप प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं आप ही की पसंद के. यहाँ पर वक्त हुआ है 4:48. हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे जानते हैं उनकी फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: हेलो, गुड इवनिंग खुशी मैम.
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग सुहानी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताओ आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं?
0: ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं सुहानी. आप बताइए सुहानी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ.
0: ओके, और बताइएगा इस वक्त क्या कर रहे थे आप?
1: इस वक्त तो मैं रेडियो ही सुन रही थी.
0: अच्छा, सारे काम से फ्री होकर हम जब रेडियो सुनते हैं ना, उसका एक अलग ही मजा होता है ना? या तो बताइएगा सुहानी, आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हो?
1: मुझे गाना सुनना है आशियाना मेरा.
0: आशियाना मेरा. ओके, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान, राइट? जी, तो चलो सुनवाते हैं आपको प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा सुहानी. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए डियर,
1: थैंक यू.
0: मोस्ट वेलकम. तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक आशियाना मीरा, एंड बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है.

एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम आपको मालूम ही है, हेलो फरमाइश, और मैं आपके साथ आपकी फ्रेंड आरजे खुशी। दोस्तों, वक्त हुआ है 4:54 एंड 4:54 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को बिंदास एंजॉय कीजिए। एंड लाइफ है, देखिए हमें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट पल क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज्यादा आगे तक का सोच करना, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो आपके पास समय है उसका यूटिलाइज कीजिए, हैप्पी रहिए एंड सेफ। अभी अगर आप ड्राइविंग करें तो केयरफुली सेफली ड्राइविंग कीजिए, मुस्कुराइए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। घर जा रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर जाइएगा क्योंकि घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक गाना बहुत ही बेहतरीन है जो मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ आज की शाम, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। आप बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिएगा एफ एम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, नमस्कार। गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ सुनिएगा यह खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

गर्द वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। आप इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:08 हो चुके हैं, जहां पर इस शो में हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। और आज की तारीख यानी कि 7 अक्टूबर बहुत ही स्पेशल डे है, और बस 3 दिन के बाद नवरात्रे शुरू हो जाने वाले हैं। तो भैया बहुतों घर में ना सफाइयां हो गई है, और बहुत से घरों में भी सफाइयां रहती है कि भैया मंदिर की सफाई बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि माता रानी जो आ रही है और माता रानी के स्वागत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फॉर अपने लोकल की बात करने वाले, अपने मुरादाबाद की हम बात करेंगे, जो कि शो में आपको फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ अपडेट्स मिलने वाला है। तो कनेक्ट रहिए आर्जेरीना के साथ, ढेर सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: ज्यादा सुनने को, तो शाम अपने आप सुहानी हो जाती है। और आप वैसे भी आर्शुरीना के साथ कनेक्ट है यूनिवर्सिटी शो में। और समय की बात करूँ तो समय हो चुका है यानी कि 5:18। तो आपने क्या कहना है जी, हमारे साथ कनेक्ट रहना है। और अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप राइट नो ऑन द वे हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना भूलें। जब भी ऑफिस से निकलते हैं, जैसे आप फ़ोन बोतल अपने साथ रखते हैं, वैसे गाड़ी में बैठते ही, मतलब जैसे हम अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, तो आपने गाड़ी में भी कुछ ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए कि जब भी आप गाड़ी में बैठो तो आपको आवाज़ आए कि हेलमेट ज़रूर पहना है, सीट बेल्ट आपने ज़रूर पहनना है।
1: जो
0: इसमें हमारी सेफ्टी है, हम सुरक्षित रहेंगे। और रेड लाइन का प्रॉपर आपने ध्यान

देखा जाता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के आगे ही आप गाड़ी रोकते हैं, तो ये चीज करना गलत बात है क्योंकि ट्रैफिक रूल नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए जेब्रा क्रॉसिंग से इधर ही पीछे ही रोके गाड़ी और फिर उसके बाद अपनी यात्रा को सफल बनाए, अपनी जर्नी को सफल बनाए। क्योंकि शाम के टाइम हर कोई ऑफिस से घर जाता है और बहुत से शाम के टाइम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम का एक ऐसा समय होता है जहाँ पर पूरे दिन की भाग दौड़ और पूरे दिन की धूप से हल्की सी हमें राहत मिलती है। और आज तो वैसे भी टेम्परेचर की बात करूँ तो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मुरादाबाद का, यानी कि आज का मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 दिन से आज सही है। और साथ ही साथ आज बहुत जगह बारिश तूफान भी बता रखी थी। फिलहाल हमारे मुरादाबाद में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक ठाक है, वरना भाई ये पता चले कि रामलीला ग्राउंड में मेला लग चुका है और बारिश आ जाती तो सोचिए उनकी मेहनत का क्या होता। तो इस चीज के लिए आपने ध्यान रखना है और हौले वाले गाड़ी चलाइए, हॉर्न बिल्कुल भी नहीं, आपने तेज नहीं बतानी है, पेशेंस के साथ रखना है, अपनी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आप हॉर्न थोड़ा सा संभल के और अपनी जर्नी को सेफ बनाइए। फिलहाल लेआउट कराते हैं मैं एक बार और, यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। और आपके भी दिल में कोई बात है, आप कहीं पर ट्रैफिक में है जाम, तो आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि उस रूट पर कोई और आए और फिर ट्रैफिक का सामना करना पड़े उनको। इसीलिए आपने क्या करना है, हमारे साथ ही हमें अपना वीडियो भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं, टाइपिंग करके भेज सकते हैं कि हम इस लोकेशन पर हैं और इस लोकेशन पर अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आने वाले होंगे वो थोड़ा संभल कर निकलेंगे, क्योंकि भाई हर किसी को जल्दी रहती है कि ऑफिस निकल गए, अब किसी तरह करके घर पहुंच जाए, घर जाके आराम करें। तो आप हमें ज़रूर मैसेज करिए, हमारा नंबर है 9837896896 की कहीं आप ट्रैफिक में हैं तो और कोई ना रहे इस ट्रैफिक में। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और आर्जेरिना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और देखिए समय हो चुका है हमारे पास, यानी कि 5:28। और कुछ चीज़ें लाइफ में ना, ज़िंदगी में ना, जो आप सोचते हो वो उस तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती है और वो चीज़ें आपके सामने हो जाता है, तो उसका जो खुशी है ना वो नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है। आखिरकार मैं खुशी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देखिए नवरात्रि, पावन नवरात्रि हैं जो माता के 9 दिन हैं, वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं 11 तारीख से, यानी कि उस दिन संडे का दिन रहेगा। तो जल्दबाजी भी नहीं होगी कि भैया पूजा फटाफट करनी है, चौके जल्दी ले लगानी है, पूजा करके ऑफिस निकल लेते हैं, बल्कि आराम से आप पहले दिन ही माता रानी की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस 9 दिनों में, यानी कि जो डांडिया नाइट अपने मुरादाबाद में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार, और हर कोई बस ये सोचता है कि भैया डांडिया नाइट हो, और ऐसे मौके को ना हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, कपल्स के साथ। आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप कपल्स के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो गरबा और डांडिया नाइट में इंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ या कपल्स के साथ, तो बस आपने कुछ नहीं करना है, बस गेट योर पासेस नाउ। अगर आपने पासेस चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है, यानी कि 2 नंबर मैं आपको बताऊंगी। और ये जो डांडिया नाइट लेकर आ रहा है रंगे रिवाज, यहाँ पर आपको बुक, म्यूज़िक, शॉपिंग करने का भी आपको भरपूर मौका मिलेगा, साथ ही साथ भजन के साथ फूड स्टॉल भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, डांस के साथ साथ आप खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपना जो मस्ती है वो तो जारी रहेगी। और डांस वगैरह की बात है तो भैया हर कोई डांस तो करने का दीवाना होता ही है, जो जिनको नहीं आता ना वो भी डांस आराम से कर लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस डांडिया नाइट में, रंगे रिवाज डांडिया नाइट में आप कनेक्ट हो सके, तो हमारा नंबर है 09548498220। वंस अगेन एक बार और सुनिए, 9548498220। सेकेंड नंबर की बात करूँ तो 7983727478, ये हमारा नंबर है, और आप इस नंबर पे हमें कॉल करके गेट योर पासेस नाउ आप अपना पासेस ले सकते हैं और डांडिया नाइट में आप भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस पर हमें आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी आप
1: अच्छा मम्मी जी।
2: अच्छा सच परियां तो याद आया, तेनु फोटो भेजी है परी दी, बिल्कुल तेरे मतलब दे परी लभी है, इस बारी तेरी माँ ने
1: मॉम पहला लभिया परियां बाद तो नो आप ही चंगे लगनो हट जाती है।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप चेक करके दसी।
1: ओके मम्मी,
2: बाय बाय।
1: बाय बाय मॉम।
3: हे यू आर ट्यूनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि.इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।
1: पहला लभिया।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean.
1: हेलो जी, गज वाली इवनिंग है. अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6. रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी. और समय की बात करूँ तो 5:41 हो चुके हैं और आप अर्जुरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में हैं. और बात की जाए, देखिए नीम करौली यानी कि हनुमान अंश मूवी के बाद अब नीम करौली बाबा यानी कि जो धाम है उनका, नीम करौली में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी, इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है मूवी देखने के बाद कि हर एक श्रद्धालु अब नीम करौली बाबा जा रहा है दर्शन करने के लिए, श्रद्धा के साथ वहां पर जा रहे हैं. जबकि पहले मूवी ना रिलीज होने से पहले इतना क्राउड नहीं होता था, बहुत कम क्राउड होता था वहां पर, लेकिन अब जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और अब इसी को मद्देनजर रखते हुए यानी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये कहा जा रहा है कि कैची धाम में भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू हो गई है. यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जब अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री अब नहीं मिल सकती. और साथ ही साथ निजी जो वाहन हैं उसकी बुकिंग की जांच भी की जाएंगी, हर एक सुविधा अब वहां पर की जाएंगी ताकि जो श्रद्धालु है वो परेशान ना होए और अच्छे से दर्शन कर पाए. जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो गर्भ गुफा में जाने के लिए आपको एंट्री करानी पड़ती है, वैसे ही अब नीम करौली बाबा के अगर आप दर्शन करने जाते हैं, वहां पर जाते हैं तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आपको एंट्री मिल सकती है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी. ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ को देखते हुए किया गया है क्योंकि मूवी रिलीज के बाद जो वहां पर श्रद्धालु, अगर एक दिन की अगर मैं बात करूं, प्रतिदिन यानी कि 25,000 प्लस श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं. तो सोचिए वहां पर इस टाइम भीड़ की क्या सिचुएशन होगी. जो भीड़ कभी खाटू श्याम चले जाइए, आप मथुरा चले जाइए, कटरा चले जाइए, वैष्णो देवी दरबार में आपको इन जगह भीड़ मिलती थी, उज्जैन चले जाइए, अब उसी के साथ साथ कैची धाम में भी आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिल रही है. तो कैची धाम की अगर आपकी प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, कैची धाम आप नीम करौली बाबा का दर्शन करना चाहते हैं वहां पर जाके, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आपको दर्शन करने का मौका मिल पाएगा. फिलहाल हमारे पास कुछ मैसेज हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं. हेलो रीना जी, गुड इवनिंग. विक्की सागर जी का कहना है कि भैया आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. तो विक्की सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट मुझे मैसेज करके बताइए. जो भी अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आपने बताना है कि मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है. फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग रीना जी, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी. हाँ जी, मैं बहुत ठीक हूँ और आप बताइए कैसे हैं. खुशी का माहौल है, आपकी आवाज़, आपका अंदाज, खूबसूरती और आप श्रोताओं से जुड़ी रहती हैं इस शो के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है. और आपके शो में नए नए गाने, मज़ेदार बातें और आपकी प्यारी सी बातचीत सुनकर सच में अच्छा लगता है. बस ऐसे ही अपनी मुस्कान और खूबसूरती अंदाज के साथ इवनिंग मस्ती शो करती रहिए और आपके शो के माध्यम से आपके शो को यानी कि ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच जी. क्या बात है रीना जी, आज आपने बहुत खूबसूरत गाना प्ले किया है. सच कहूँ तो ये गाना सुनकर हमारी ही बात कह दी आपने. अच्छा जी, अच्छा, चलिए जो आप सोचते हैं वो गाना प्ले हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी. चलिए फिलहाल आपने मैसेज करके बताना है कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, फटाफट मैसेज करिए. हमारा नंबर है 9837896896. वंस अगेन एक बार और बताना चाहूँगी कि आप कैची धाम जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके ही आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन को आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है. तो इस चीज़ का प्रॉपर आपने ध्यान रखना है. और फिलहाल अभी कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है तो उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें. अभी आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड एनर्जी आर्जुरीना के साथ. चलिए फिलहाल ये वाला गाना.
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

क्या बात है, कितना शानदार गाना है ना नेहा कक्कड़ की आवाज़ में, कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और जो हमें आसानी से मिल जाता है ना, हमें उसकी कद्र नहीं होती है, और जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जिस काम के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसकी कद्र हमें हमेशा याद रहती है। और जो चीज़ बिना मेहनत करे आसानी से आपको मिल जाए तो उसकी अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। मुझे लगता है कि दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, और वो तो बात अलग है कि मेहनत जो की हुई चीज़ होती है ना, वो अगर हाथ से रेत की तरफ फिसल भी जाता है ना, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो भी आपके पास कीमती चीज़ है, जिसके लिए आपने परिश्रम करा है, मेहनत करा है, उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कद्र उसी को पता चलता है जो परिश्रम करता है। और आप आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हैं। समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं, और बात की जाए फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवरात्रि बस 4 दिन के बाद शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो महंगाई है वो हर चीज़ पर महंगी होती हुई दिखाई देंगी। चाहे आप सिंघाड़े की आटे की बात कर लीजिए, चाहे कुट्टू की आटे की बात कर लीजिए, और ड्राई फ्रूट्स की बात कर लीजिए, वो भी आपको 10-20 रुपये महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न हो और महंगाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बार का है कि जब भी फेस्टिवल शुरू होता है तो महंगाई सर चढ़ कर बोलती है। और वहीं बात की जाए दिवाली के इस पावन मौके पर, तो अब क्या हो रहा है भैया, महंगाई का असर छोटे पैकेट में कम सामान और बड़े पैकेट किए गए महंगे। आप जब भी देखेंगे कि 10 रुपये के आप नमकीन के पैकेट भी लेते हैं, या फिर 10 रुपये का कोई भी आप पैकेट वाले चीज़ लेते हैं, तो उसकी जो उसके अंदर की क्वांटिटी है ना, वो बहुत कम होती है। और जो बड़े पैकेज है, बड़े पैकेज अगर आप आधा किलो का लेते हैं, 1 किलो का लेते हैं, उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं बात करूँ पीनट्स की, तो अगर आप पीनट्स भी लेने जाएंगे पैकेट वाला, तो वो आपको आधा किलो का भी मिलेगा 50 रुपये का। तो ऐसी हर चीज़ आपको महंगाई वाली मिलेगी। और आपने अगर मैं बात कर लूँ कुरकुरे की बात करूँ, मसाला मंच कुरकुरे की बात करूँ, जिसको हम प्यार से तुरतुरे बोलते हैं उसके अगर 5 रुपये की अगर आप पैकेट लेते हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। चिप्स की बात करूँ, जो 5 रुपये की पैकेट होती है, उसमें भी बहुत कम 5-6 आराम से चिप्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि जितने पैसे के आपने खरीदा उतने आपको चिप्स मिलेंगे। 10 रुपये के खरीदते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और 20 रुपये खरीदते हैं तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि महंगाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पहले की बात करूँ, तो पहले ज़माने में आप 2-3 रुपये की भी चीज़ लेते थे ना, तो जो पहले 2 रुपये के मिलते थे, अब वो 10-20 रुपये के मिलते हैं। इतना डिफरेंस हो गया है। सोचिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए, तो भैया सीधा ये कहा जाएगा कि 50 रुपये निकालोगे तब भी आपको कुरकुरे की पैकेट मिलेगी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलने वाली है। जो शॉप लाइबॉय की अगर मैं बात करूँ, डिटॉल की बात करूँ, जो शॉप पहले जो अब 30-50 रुपये का इतना बड़ा आता है, वो पहले 10 रुपये इतने बड़े बड़े आते थे, और अब 10 रुपये के अगर आप लाइबॉय का शॉप लेते हैं, तो वो बहुत छोटा सा मिलता है आपको। तो सोचिए कितना डिफरेंस आ चुका है पहले में और आपके ज़माने में। तो हर छोटी चीज़ में सस्ती हो लेकिन सामान कम मिलेंगे, और जो महंगी हो उसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। चलिए इसी के साथ हम और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस यूं ही बने रहिए आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूं, और ढेर सारी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। और समय की बात करूं तो 5:53 हो चुके हैं श्रोताओं, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आप रामलीला ग्राउंड में मेला देखना चाहते तो बिल्कुल आ सकते हैं। मेला शुरू हो चुका है, यानी कि 5 अक्टूबर से ये मेला शुरू हो गया था, और जो रामायण दिखाया जा रहा है, जिस रामायण का रोल प्ले किया जा रहा है, उसमें भगवान श्री राम के जन्म भी हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक आप मेला नहीं गए देखने के लिए, मिस कर दिया है, तो मैं कहती हूँ जी आज की शाम बिल्कुल जाइए और इंजॉय करके आइए। चलिए फिलहाल ये वाला गाना इंजॉय करते हैं, और आप भी मेले में जाके घूम सकते हैं, बच्चों के लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है भैया मेला चलिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
1: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:03 हो चुके हैं, और अब हम बात करेंगे कैसे, जो कि एक बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल डे मनाया जाता है आज की तारीख, यानी कि 7 अक्टूबर, और समय की बात करूँ तो 6:04, और आज दो ऐसे स्पेशल डे मनाए जाते हैं जो हमारी लाइफ में ना बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और इनके बिना सच बताऊँ ना गर्मियों में राहत है और सर्दियों की तो बात ही कुछ और है। और दूसरा जो डे मनाया जाता है, उसके बिना तो हमारी दिन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कौन से डे हैं जो मनाए जाते हैं आज, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूज़िकल ब्रेक तो बनता है, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ और फिर बताती हूँ आप सभी के लिए, और कड़क सवाल भी लेकर आएंगे।

ਸਾਲਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਈਆਂ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01

0: जी गरबा गाने अगर मिल जाए सुनने के लिए ना तो सच में मजा आ जाता है। उदित नारायण जी और पलक जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और गाने के साथ साथ अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो रेपो रेट ने यानी कि RBI ने महंगा कर दिया है, अब लोन लेना भी हो सकता है बड़ा ही मुश्किल। सोचिए जहां हम सभी आम लोगों के लिए बड़ा ही आसान होता था कि लोन ले लेते फिर अपना काम कर लेते उसके बाद चुकता कर देंगे, लेकिन अब वही लोन महंगा हो जाए तो क्या करें, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले
1: hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।

जी आर्जरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। गुड वाली इवनिंग है जी। इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूं तो 6:23 हो चुके हैं और आप बात करते हैं आरबीआई ने यानी कि रेपो रेट का जो रेट है वो क्यों महंगा कर दिया है। आप सोचिए, आपने बैंक से घर गाड़ी या कोई जरूरी काम करने के लिए लोन लिया, अब अगर बैंक से मिलने वाला पैसा ही थोड़ा महंगा हो जाए तो उसका असर हमारी जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जीरो, पहले की अगर मैं बात करूं तो 0.525% था, अब वही बढ़ाकर यानी कि 5.50% कर दिया है। पहले के मुकाबले अब बढ़ चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि रेपो रेट आखिरकार होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक कहाँ से लेता है? आरबीआई से। पैसा उधार लेना और आरबीआई जिस ब्याज पर बैंक को ये पैसा देता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। तो बैंक के लिए पैसा महंगा हो सकता है और उसका असर आगे चलकर होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दर और ईएमआई पर पड़ सकता है इसका असर। यानी कि आरबीआई का रेट बढ़ा दिया गया है तो कुछ लोगों के लिए बैंक का लोन महंगा हो सकता है और महीने की किस्त बढ़ सकती है, जो कि हम लोन लेते हैं और किस्त लेते हैं अपने आम काम करने के लिए, जो भी किसी काम के लिए हम लोन लेते हैं वो अब बढ़ गया है, तो बजट यानी कि अब जेब पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसीलिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ब्याज और ईएमआई को अच्छी तरह समझकर ही फैसला लेना है, अदरवाइज आपने कोई फैसला बिना सोचे समझे डिसीजन आपने नहीं लेना है, क्योंकि रेपो रेट ने आरबीआई ने महंगाई बढ़ा दी है। यानी कि जो पहले 0.5% था अब वही 5.50% कर दिया गया है। चलिए इसके बाद भी हम ढेर सारी बातें करेंगे, यानी कि कल का जो मैच था T20, हमारी टीम इंडिया जीत गई है 22 से। हाँ, मजा ही मजा है। चलिए इसी मजे के चक्कर में गाना सुनते हैं। फिलहाल आप फोन दबे हैं तो भैया ट्रैफिक यानी कि गाड़ी का वॉल्यूम है यानी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाइए, गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ाना है आपने, गाड़ी होले होले चलाना है, अपने आमने सामने आस पास वालों का भी ध्यान रखना है और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहना है और सुनते रहना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

0: शिफ्ट?
1: बाबा चलो ना।
0: अरे कहाँ लेके जा रहा है यार मुझे?
1: शहर की सबसे बड़ी गरबा नाइट।
0: क्या बात कर रहे हैं?
1: हाँ और क्या पता आपको भी आपकी गरबा पार्टनर मिल जाए। चलो ना चलो, चलते चलते।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ एफ मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:34 हो चुके हैं और अब मैं आप सभी से पूछने वाली हूँ कड़क क्वेश्चन। और कड़क क्वेश्चन भी हमारा आज का बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे। तो बस आपसे यही पूछना है, क्या आप अपने खर्चे के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं या फिर जो कमाते हैं वो एक दिन भी सोचते हैं कि उड़ा देते हैं और महीने की एंड में हम प्लानिंग करते हैं कि नहीं नहीं हमें पैसे बचा के रखने चाहिए था कि आगे भी वो काम आता रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन आप सभी से यही है क्योंकि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए आप 10,000 भी कमा रहे हैं तो 5,000 आप उसको स्टोर करिए और 5,000 अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसे आप बचा कर रखेंगे वो आगे आपके काम आ सकते हैं। तो आपने बताना है कि प्लानिंग आप महीने के पहले करते हैं या एंड में जाकर आप प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था ताकि वो पैसे आगे हमारे काम आ सके। आपने हमें मैसेज करके बताना है, नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। एक और अपडेट लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

हाँ जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:48 हो चुके हैं। और कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसके आधार कार्ड से होती है। लेकिन सोचिए, अगर आपके आधार कार्ड में ही आपका नाम गलत है तो फिर आप कोई भी जो जो स्कीम है उसका जो लुफ्त है आप नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि बात की जाए तो बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं, इनकम टैक्स, सिम कार्ड और कई दूसरी योजनाओं में आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट आधार कार्ड आज के टाइम में हर चीज़ में आधार कार्ड ही यूज़ किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है। अगर इसमें ही आपका नाम गलत है या फिर शादी के बाद सरनेम बदलवाना है तो उसको अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि UIDAI ने आधार कार्ड के नाम पर अपडेट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो नियम है, यानी कि फिर से शुरू कर दिया गया है। अगर आपकी शादी हो गई है और सरनेम आपने चेंज करवाना है जो भी, या फिर आपका गलत नाम है या फिर फादर का नाम आपके आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन बच्चों से कहना चाहूँगी जो अभी 9th में हैं और 10th में आने वाले हैं, तो वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही एक बार चेकआउट कर ले। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे देते हो या फिर CBSE के एग्ज़ाम, बोर्ड से आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसके बाद चेंज करवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी नाम फिर गलत हो जाता है। इसीलिए 10th में अगर आप जा रहे हैं और CBSE का एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, तो उससे पहले ही अपना डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार ज़रूर चेक कर ले, तभी आप आगे बढ़े। और फिलहाल जिन्होंने जिनकी शादी हो गई है और वो अपडेट कराना है तो वो तभी आप अपडेट करा लीजिए, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, दिक्कत का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। और आज का मेरा कड़क सवाल आप सभी से मैंने यही पूछा था कि आज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे मनाया जाता है, यानी कि पैसे की बचत। तो आपसे बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पैसे की बचत के लिए मंथ के शुरुआत में प्लानिंग करते हैं या फिर मंथ एंड होने के बाद सोचते हैं कि ये हमने गलती कर ली और अपने पैसे हैं ना वो सेव नहीं करे हैं, तो बाद में पछतावा पड़ जाता है ना। और कहावत वही है कि चिड़िया चुग गई दाने तो पछताने से क्या होए। तो इसीलिए पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए और मैसेज करिए, क्योंकि इस गाने के बाद मैं लौट कर आने वाली हूँ और आप सभी के ही मैसेज अब शामिल करने वाली हूँ। तो फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। काचा काचा नींबू रा लाई दो। और आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आप सभी से यही था, क्योंकि आज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे मनाया जाता है, तो आप प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। अब हम इधर बढ़ने वाले हैं आपके मैसेज की तरफ, तो चलिए देखते हैं किनका हमारे पास आज क्या मैसेज आता है।

मैसेस की बात करूँ तो गुलाम जिलानी पासा कुंदरकी से कनेक्ट होते हैं, और अगले मैसेस की बात करूँ तो आए हो किस बगिया से। विकी सागर जी का कहना है कि इंसान को थोड़ा पैसे बचा कर चलना चाहिए फ्यूचर के लिए। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये मैसेज आता है हमारे पास। दीना जी, सवाल तो आपने आज बड़े मज़ेदार पूछ लिया है जी। बिल्कुल, बस आपने मैसेज करना था। और इन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से लोग तीन कैटेगरी में होते हैं। एक वो जो महीने की शुरुआत में ही थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, दूसरे जो वो बजट बनाकर चलते हैं और साथ साथ बचत भी करते हैं, और तीसरे वो जो महीने के आखिरी में बैठकर हिसाब लगाते हैं और सोचते हैं अरे भाई पैसा गया तो गया कहाँ पर। ये वाला जो क्वेश्चन, मतलब आपने जो आंसर दिया है वाकई में बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि महीने के एंड में ही हम सोचते हैं कि यार पैसे गए तो गए कहाँ, हिसाब लगाने लग जाते हैं। अब आप बताइए कि रीना जी आपके अंदाज से कौन सा है अच्छा, आप वो जो बीच में पूरा संतुलन बनाकर चलती हैं या महीने के आखिरी में हिसाब लगाकर अगली बार प्लान बनाने की सोचते हैं, या फिर आपकी अपना कोई जैसे मोटिवेशन हो। देखिए सर, मुझे लगता है कि आपको मंथ की शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए कि, क्योंकि देखिए एक 5 तारीख तक हर किसी की सैलरी आ जाती है, तो आपके पास चाहे आप जितने भी आप कमाते हैं उसका हाफ आप सेव करिए और हाफ खर्च करिए, क्योंकि घर में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे तो ये लगता है। और जो आप खर्च करते हैं उसको एक डायरी में ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ना कभी भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटते थे। उनसे कभी भी हिसाब पूछो, महीने के हिसाब पूछो, तो वो आराम से आपको बता देते थे, क्योंकि उनकी डायरी में स्टोर होता है। आजकल डायरी कोई नहीं लिखता है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता है कि पैसे गए तो गए कहाँ। तो इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। और जरूरत से चीजें भी हम ले लेते हैं, मार्केट में चले गए, जो चीजें हमारे काम की नहीं होती वो खरीद लेते हैं और पैसे वेस्ट

0: जाते और बाद में सोचते कि धत तेरी की, ये तो हमें खरीदना ही नहीं चाहिए था। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, राजा अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए। पहली बार आपको शो इवनिंग मस्ती सुन रहा हूँ। ओके सर, आप पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ गाने बड़े अच्छे प्ले करती हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं बातें अच्छी नहीं करती हूँ, बस गाना प्ले करती हूँ अच्छी। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये रोहित जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि मेरा हमेशा प्लानिंग यही रहता है मैम कि फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार कल किसने देखा किसने नहीं देखा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सेव करके जरूर चलना चाहिए। क्या पता कल क्या सिचुएशन आ जाए और हमें उसके लिए पैसे किसी और से लेना पड़े और एट ए टाइम पे मिलता भी नहीं है, इसीलिए पहले से ही हमें सेव करके चलना चाहिए, अपनी प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। कोमल जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से और इनके कहने कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि हमें पहले से ही प्लानिंग करके चलनी चाहिए क्योंकि एंड टाइम में तो यही होता है, पैसे गए तो गए कहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त क्योंकि समय की बात करूँ तो 7:02 हो चुके हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हम मिलेंगे कल आपको सेम टाइम सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी ज़िंदगी को यही यानी खुशियों से भरते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते हुए चाहे कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो लाइफ इंसान के लाइफ में हर चीज़ की हल मिल जाती है। पहली बात है ट्रस्ट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो समझ लीजिए आपका भरोसा भगवान के ऊपर से कभी टूटने वाला नहीं है क्योंकि भगवान कभी भरोसा टूटने नहीं देते, भले वो परीक्षाएं बहुत लेते हैं। तो इसीलिए किसी और पर ट्रस्ट करें ना करें, अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर जरूर ट्रस्ट करें। चलिए जी, बाय।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं। मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजी यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है। स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है। आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: है। फैमिली ज्यादा आती है।
3: जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। कहा, जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। इस मौके पर आज उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का समय है। उन्होंने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। और इसलिए आज हर भारतवासी के लिए, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव का क्षण है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, नीतियों और शासन मॉडल पर आधारित पुस्तकों का एक मंच पर लाने वाले नमो बुक फेस्ट जन वी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम यात्रा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली।
4: यूपीएसटीसी के सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
6: पीएम प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती
4: है। प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्री आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे और ये गलियारा उस अमृत पर्व की पहली भेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
7: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा है।
0: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अकी आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय रणजी टीम का ऐलान कर दिया है। आर्यन ज्वेल की कप्तानी में टीम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ लखनऊ के जीशान अंसारी, करण शर्मा, प्रशांत वीर, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केन्द्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। कहा, जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जायेगा। नमस्कार।
8: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
9: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
10: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
11: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा दोस्तों। फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें। और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां
आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: लेगी साथ ही संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण और उससे जुड़े अन्य अधिकारों का लाभ तेजी से मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम उदय योजना अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनके घर और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की कानूनी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े और योजना का लाभ तेजी से जमीन पर पहुंचे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: नई दिल्ली के यशो भूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गई। 4 दिन के इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ये वैश्विक सहयोग निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी मंच उपलब्ध कराएगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सहित प्रमुख 9 क्षेत्र शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। यह मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक संगठन है। यह संगठन मोबाइल ऑपरेटरों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे, इसके लिए प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक मानकों और सामान्य नियमों की आवश्यकता पर भी बल दिया। डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित सामग्री के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री ने उपयोगकर्ताओं के इसके स्रोत की तुरंत पहचान करने की सुविधा देने वाले तंत्रों पर विचार करने का सुझाव दिया। दिल्ली यातायात पुलिस ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मद्देनजर कल के लिए विशेष यातायात परामर्श जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार कल सवेरे 9:35 से 10:10 तक कापसहेड़ा सुरंग से द्वारका और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की ओर भारी तथा वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। दिन के 11:00 से 11:40 तक धूल सिरस से कापसहेड़ा सुरंग की ओर जाने वाले भारी और वाणिज्यिक वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। वाहन चालकों को इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से यात्रा के पहले योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और मार्ग पर यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली यातायात पुलिस तथा राधा स्वामी सत्संग ब्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर भाटी माइंस में राधा स्वामी सत्संग परिसर के आसपास विशेष यातायात प्रबंध लागू करेगी। शुक्रवार से रविवार तक होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही सवेरे 4:00 से रात 8:00 तक प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही मांडी रोड से आने वाले भारी वाहनों को जौनापुर कट से मेहरौली गुरुग्राम रोड की ओर मुड़ने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं को सवेरे 5:00 से पहले सत्संग परिसर पहुंचने और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था का उपयोग करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले श्रद्धालुओं को डेरा बॉर्डर के रास्ते भाटी माइंस पहुंचने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आज 3 नई पहल शुरू की। इनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस सेवा, सरकारी पशु चिकित्सालय में व्यापक ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच और 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों तथा परिषद सदस्यों द्वारा गोद लेने की व्यवस्था शामिल है। NDMC की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का नाम जोड़ने, घर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र में सुधार जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। परिषद के अध्यक्ष
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स
2: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया और भौतिक दौरे कम होंगे। वहीं ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच से पंजीकरण, OPD और टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट, टीकाकरण प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बारापुला फेज 3 यातायात जाम की समस्या को पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हुई प्लानिंग और डिजाइन की कमी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 1635 करोड़ रुपए की परियोजना तय समय से काफी देर से शुरू हुई और अब मर्जिंग प्वाइंट पर जाम की समस्या सामने आ रही है। श्री सिंह ने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय अगले 10, 20 और 50 साल के यातायात को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि तत्काल राहत के लिए लेन चैनलाइजेशन, अतिरिक्त लेन और सिद्धार्थ एक्सटेंशन के लिए अलग यू टर्न की संभावना पर काम हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे कॉरिडोर के यातायात और संरचनात्मक डिजाइन का विशेषज्ञों से आकलन कराया जाएगा ताकि तत्काल राहत के साथ स्थायी समाधान तैयार किया जा सके। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर नई दिल्ली, जनकपुरी, तिलकनगर, हरिनगर और मंगोलपुरी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी पंजाबी बाग स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यालय, शिवाजी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज और बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान सहित अन्य कॉलेजों तथा महाविद्यालयों में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि शिविर कल भी लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सजग के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अंतर्गत अवैध प्रवासी, लुटेरे, बाल अपराधी, घोषित अपराधी और तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 85,000 रूपये नकद, 40 मोबाइल फोन, 3 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और 8 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,800 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले एक 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में घाना के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। इस दौरान श्री नवीन ने चांदनी चौक लोकसभा की सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेवा ज्योति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा भाव, राष्ट्र प्रथम के संकल्प और जन कल्याण की अविरल साधना का प्रतीक है।
2: मैं ये मानती हूँ कि भारत माँ का एक ऐसा सच्चा सपूत जिसने 25 साल अनवरत बिना एक दिन भी रुके, बिना थके देश के प्रति, जनता के प्रति अपना सेवा भाव के साथ में जिस तरीके से कर्तव्य निभाया, विकसित भारत के स्वप्न को उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का समर्पण के साथ जोड़ करके एक बड़ा सपना हम सबको दिखाया है।
0: दिल्ली के सीमापुरी में आज एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। घटना स्थल पर अब तक बचाव कार्य के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां भेजी गई हैं। खबर लिखे जाने तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि हादसे के मद्देनजर सीमापुरी गोलचक्कर, डीएलएफ, भोपुरा और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित है। यातायात पुलिस ने बताया कि बचाव दल मौके पर काम कर रहे हैं। लोगों से इस इलाके के आसपास यात्रा करने से बचने, घटना स्थल के पास न रुकने और गाड़ी पार्क न करने के साथ साथ भीड़ जमा न करने की अपील की गई है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास की वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण।
3: विश्व कपास दिवस हम मनाते हैं। इस दिन हम किसानों को याद करते हैं। कपास में अगर भारत के अंदर 60 लाख किसान जुड़े हुए हैं तो हमारे करोड़ों मजदूर जुड़े हुए हैं, करोड़ों छोटे छोटे उद्यम जुड़े हुए हैं हैंडलूम से, तो मैं सबों को आज के दिन बधाई देता हूँ।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी विश्व कपास दिवस के अवसर पर कपास किसानों, बुनकरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 65 करोड़ रुपए की दृष्टि परियोजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और राधास्वामी सत्संग ब्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष यातायात प्रबंध लागू। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और विश्व कपास दिवस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कपास किसानों, बुनकरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चतुरा गोला चतुरा एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुरा बोलना। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है, प्रोग्राम आपका फेवरेट है। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक बार फिर से एक बहुत ही कमाल की सुपर डुपर अमेजिंग टैलेंटेड लेडी मौजूद हैं। एंड मैं डॉक्टर इनको बाद में बोलूंगा, पहले टैलेंटेड बोलूंगा, क्योंकि बहुत कमाल का काम कर रही हूँ। सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी ये हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी देती है बहुत अच्छे तरीके से। जब फर्स्ट में आई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मल्टी टैलेंटेड मैम है, मतलब वो तो है ऑफकोर्स, लेकिन इतनी सुपर वाली होंगी ये नहीं पता था। चलो मैम का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी उनके स्टाइल में जरा उनका हालचाल तो जान ले भाई, क्योंकि सब कुछ मैं बोल दूंगा तो वो क्या बोलेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम है आपका।
5: हेलो,
4: जोरदार तालियां प्लीज मैम। टेल मी, कैसे हालचाल?
5: मैं बढ़िया हूँ। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 89.6 FM पे, और ये है दूसरी बार हम आए हैं। और क्या करने आए हैं बताइए आनंद जी, हम क्या करने
4: आज
5: आए हैं?
4: मैम के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा। देखो यार, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट होने वाली है वेरी वेरी सून। तो मैंने सोचा मैम को बुला के पहले थोड़े से ना ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं, है ना।
5: आज हम आपको ही, आपका प्री वेडिंग होता है ना, उसी तरह प्री नर्सिंग शूट करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि बच्चा होने का प्रोसीजर क्या है,
4: माय गॉड
5: कैसे कराया जाएगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, किस किस केस में क्या कराया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर।
4: मुझे मारो, ये सीरियस है भाई। वेल, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, और इसी जोक सपाट और अच्छी बातें होंगी। देखो, काम के साथ साथ ना थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो है, यहाँ पे हम आपको सुनाई दे रहे हैं, और शायद आप हमें मन की आंखों से देख भी रहे हो, क्यों मैम? और मजे की बात पता क्या है, डॉक्टर आशिका मैम ना सिर्फ जानकारी अच्छी नहीं देती, बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो दूसरी अनाउंसर है मेरे साथ बैठी हुई है। लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा बोल के गई थी, आपको मैं वो क्लिप जरूर दिखाऊंगा, मेरे फोन में आज भी सेफ है। अच्छा मैम, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ वर्किंग है, एंड आपका नाम वगैरह थोड़ा बता दूं।
5: जी, आई एम डॉक्टर आशिका गुप्ता, मैं पास आउट हूँ AMU की, प्रोडक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय MBBS एंड PG फ्रॉम देयर, एंड अभी मैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद, जो कार्ट रोड पे है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट।
4: दैट्स वेरी नाइस। एक खास बात ये थी यार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आशिका मैम का नाम पहले आ जाता है। ऐसा क्या बोला था हम दोनों ने लास्ट टाइम जो लोग इतना याद रखते हैं?
5: यार पता नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डॉक्टर।
4: कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं भाई, वो सीधा सीधा आपका नाम बोलते हैं, और अभी और कोई राशिका मेरे साथ में आई नहीं है यहाँ पे, ये भी सच है। मतलब शायद हमने कुछ तो अच्छा बोला होगा, शायद
5: अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर अस ना, कोई बात नहीं,
4: ये अच्छी बात
5: करेंगे। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि बार बार साथ आने का।
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम दोबारा आए तो शायद इस बार और ज्यादा लोग याद करें, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, राइट? ओके, सो आज मैम हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं सिजेरियन के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो आज ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आजकल सिजेरियन जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या है मैम, क्या लगता है?
5: एक्चुअली यस, सिजेरियन का रेट तो बढ़ ही गया है ना। अब रीजन में तो देखिए दोनों बहुत सारे रीजन है, बट मेजरली जो रीजन है ना, एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, ठीक
4: है, सही बात है,
5: खान पान में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें थी, अब हमने आर्टिफिशियल चीजें ये सब इन्वॉल्व कर ली है। प्लस हम जब पेशेंट को आजकल एडवाइस करते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस बताइए कि किससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ये पुरानी लेडीज का रूटीन था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ रहा था, उनका जो काम करने का तरीका था वो इसी तरह का था कि पेल्विक फ्लोर खुलता था,
4: ठीक है।
5: प्लस थोड़ी पुराने जमाने की लेडीज रफ एंड टफ हुआ करती थी, अभी exactly. हमारी जनरेशन थोड़ी छुई मुई है,
4: और हमारी वाली क्या होगा पता नहीं
5: एग्जैक्टली कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अब डिलीवरी का, नॉर्मल
4: AI आ गया है ना,
5: ऑप्शन डिलीवरी
4: ऑप्शन आ रहा है अभी लाइन में है,
5: तो इट इज ऑल दैट, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही आप मान लीजिए, है ना?
4: Okay.
5: तो प्लस लास्ट टाइम पहले लोगों के पास सिजेरियन के इतने ऑप्शन नहीं रहते थे, ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही नॉर्मल डिलीवरी है, घर पे देके या जैसे भी कराना है वो हो जाती थी, है ना। दूसरी चीज, आप अपनी दादी नानी को कभी टटोलना तो बताएंगी वो आपको अपनी हिस्ट्री की, बेटा मेरे ना 10 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, अभी 8 मेरे पास थे, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं 2 चले गए, 8 है मेरे पास। बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे वॉन्ट टू हेल्दी चिल्ड्रन। तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि यार बाय दिस वे या दैट वे वी हैव टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, क्योंकि हमारे पे बेबी के रिगार्डिंग हमारे से कोई भी मतलब कोताही बर्दाश्त ही नहीं है। तो फिर हमें भी एक प्रेशर रहता है, उस अंडर प्रेशर में हमें 100% रिजल्ट देना है, तो उस अंडर प्रेशर में भी थोड़े से सिजेरियन का रेट इंक्रीज हो जाता है।
4: ऑल राइट, सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया होगा मैम ने। अच्छा एक और चीज है मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आज भी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या, तरीके की सुनने को मिलती है ये चीजें। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस खुद भी पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन।
5: इट इज अ प्रेशर है ना, मतलब आजकल प्रेशर हो गया है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके फायदे और नुकसान दोनों है। तो आप किसी की नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी देख ली हमने कि यार उसने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, बट आई वुड से कि देखो हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी की इंडिकेशन अलग है, तो इट इज नॉट कम्पेरेबल कि किसी की हो गई है तो आप दूसरी लेडीज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दें। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, है ना, आपको भी पता है आई हैव ट्विंस, ठीक है, दोनों बच्चे मैंने ही जन्मे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, सिर्फ एक मिनट का फर्क है, बट दोनों की प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, किसी को मीठा पसंद है किसी को नमकीन पसंद है। तो जब एक माँ के दो जन्मे बच्चे एक से नहीं हो सकते, तो दो लेडीज की प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है।
4: एग्जैक्टली,
5: सो इट इज ऑल इंडिकेटेड, हर किसी का अलग अलग इंडिकेशन होता है। और नेचुरल डिलीवरी तो ऑब्वियसली सेफ डिलीवरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसे एनकरेज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली ये कहना कि यार नहीं यार नॉर्मली कराना है, ये एम नहीं होना चाहिए। एम होना चाहिए एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा।
4: ऑलराइट, अच्छा मैम उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहले का खान पान, जैसे आपने अभी इंक्लूड भी किया कि बहुत डिफरेंट था, आजकल का खान पान बहुत अलग है, है ना। आजकल मैं आपकी वीडियो में भी देखता हूँ कि आज पपीता खाने का मन है तो क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, आज टिक्की खाने का मन है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
5: ये हमें बताना पड़ रहा है आनंद जी, ये सब चीजें तो मतलब बताने की थी ही नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, तो ये सब ये हमारे बताने।
4: मुझे इसलिए भी हंसी आ रही, मैं सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बताइए, अब ये चीज और रहेगी थी लोगों को बताने।
5: मेरी पिज्जा की वीडियो है 1.3 मिलियन,
4: वही सबसे ज्यादा वायरल हुई
5: है ना, अब उसमें कुछ बताने की बात तो थी नहीं कि आप पिज्जा ना खाएं, बट लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि पिज्जा खाना है कि नहीं खाना है, लोग ये शेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग खा रहे हैं, तो हस्बैंड्स आर शेयरिंग टू देयर वाइफ, यार एक गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है नहीं खाना है, या फिर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो उन्होंने बताए। तो आप ये देखो, ये चीजें इस लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली ये तो माँ को पता होनी चाहिए, है ना। तो फिर सारा अब प्रेशर लास्ट में कि नॉर्मल, जब स्टार्टिंग से ही प्रोसेस हुआ तो हमने बेड रेस्ट किया, हमने प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव करी, अब लास्ट पे बर्डन माँ पे डाल के इट इज नॉट वेरी मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सेफ माँ सेफ मदर, बस दैट शुड बी द गोल।
4: बहुत बढ़िया मैम, मुझे ऐसा लगता है ना इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी पड़ रही है हमें, है ना, स्पेशली लेडी को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतना सुपर फास्ट है, लड़कियों के पास टाइम नहीं है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उनको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट आप लोग जो उनको कहने के एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई ये चीज अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो रही है, और प्लस सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है कि वो अच्छी चीजें भी दिखा रहा है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी अलूल झुलूल बातें करने लगते हैं नॉर्मल थोड़े से व्यूज के लिए, बट उससे किसी की बॉडी पे किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है।
5: एक्चुअली एक्टिव भी डॉक्टर्स को इसीलिए होना पड़ा क्योंकि वो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना
4: 100%
5: इंस्टाग्राम पे, तो वी हैव टू काउंटरैक्ट दैट, मतलब बिना डिग्री के कुछ भी, वहाँ डिग्री तो चाहिए नहीं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग देयर वेज, तो वी आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू की भैया ये दिस इज द राइट।
4: एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि बहुत ही सही है मैम, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग ये चीज इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मित्र दूर होंगे, और सिर्फ लेडी के क्यों, जेंट्स के भी बहुत जरूरी है मैम।
5: Exactly.
4: है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम तो ऐसा है भाई, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मैम इसी बीच एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, कई पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों बोल दिया, क्या उन्हें जल्दी थी या क्या था, मतलब रीजन आ जाता है ऐसे थॉट, हस्बैंड भी बीवी भी सबके मन में आता है।
5: या ये बात सही है कि लोग बोलते हैं यार उसे जल्दी थी इसलिए सिजेरियन करके निपटा।
4: हाँ एग्जैक्टली,
5: बट मैं आपको बताऊं, जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बने थे, वी हैव बीन पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। तो हम जब हुए थे, हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना, हमें बता दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे जीवन में कोई जल्दी काम बचा नहीं है। अभी मैं आपसे बैठी हूँ, अभी 5 मिनट बाद मेरे अटेंडेंट का फोन आ सकता है कि मैम एक पेशेंट लेबर में आई है, तो आई हैव टू रन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब हमारे लाइफ में हमारे लिए टाइम बचा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नर्सिंग होम नीचे हो, ऊपर डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन्हें क्या जल्दी है, आप मुझे ये बताइए। उनको तो इट इज अ फुल टाइम जॉब ना, पूरे दिन का जॉब। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम मदर और बेबी को सेफ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे कभी कभी लेबर प्रोग्रेस करते करते बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है, तो सिजेरियन लेना पड़ता है। कभी कभी बेबी की पोजीशन खराब हो जाती है, तो सिजेरियन लेना पड़ता है। प्लेसेंटा को कोई फैक्टर होता है, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्रीविया है, तो हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है। तो जल्दी नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हमारा आपसी, आप समझिए, तालमेल की कमी है। अगर आप 9 महीने किसी के वो पेशेंट हैं और आपको उन्होंने डील किया है, तो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है। तो कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा कि अनइथिकली जाके आपको भैया डायरेक्ट सिजेरियन के लिए बोल दिया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि जल्दी की वजह से हम करते हैं, इट इज ओनली टू डिलीवर अ सेफ मदर एंड अ सेफ।
4: वेरी नाइस। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये डेफिनेटली ऐसी चलती रहेगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी डॉक्टर राशिका जी हमारे बीच में है, तो ऑफकोर्स काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट भी आती भी होनी चाहिए ना। मैम देखिए, अपने हॉस्पिटल से निकल के मेरे रेडियो हॉस्पिटल पहुंची है, जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, जरा जानते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा, मेरे मन में भी होता है कि डॉक्टर गाना सुनते होंगे, तो किस तरह का म्यूजिक
5: सुनती हूँ। मेरी वीडियोस में गाने होते हैं, तो द ओनली वे ऑफ रिलैक्सिंग इज टू हियर म्यूजिक।
4: अभी हमारे लिसनर्स को आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे, वो वही गाना प्ले करेंगे।

जरूरी नहीं होती। आपने गुनगुना दिया, मुझे पता है आपको याद आ गया होगा क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं। हम भी सुन के आते हैं मैम, बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा गाना है। इसके बाद वापस आते हैं मैं और राशिका जी, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सब कह। सच में ये गाना सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैम से पूछते हैं मैम को कैसा लगा। मैम आपको कैसा लगा?
1: बहुत मन पवित्र हो गया।
0: अरे वाह, इससे पहले मैम हमारा मन भी पवित्र था। आई डोंट नो मैम ने ऐसे बोला ना मन। एनीवेज गाइस, बैक टू पॉइंट, मस्ती मजाक चलती रहती है। लेकिन मैम आप ऐसे पहले डॉक्टर हो जिनके साथ हम इतनी मतलब इतने खुल के हम लोग बात कर पाते हैं, तो इतना फ्रेंडली माहौल आप कर देते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पहले से इतने फ्रेंडली हो क्या?
1: यार डॉक्टर से फ्रेंडली नहीं होगे तो कैसे बनेगा। बट देन मुझे ऐसा लगता था जब भी वो सीरियल देखा था संजीवनी।
0: हाँ संजीवनी, एग्जैक्टली
1: देखा था ना, तो वो कब से प्रतिमा बनी हुई थी दिमाग में कि बनना है तो ऐसे ही बनना है कि दो लोगों को खुशी दे सको, दो लोगों से बात कर सको, आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सको, तब तो बनो,
0: कंट्रीब्यूट दे सको।
1: माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा ऐसा करना कि छाप छोड़ के जाना। ठीक है, तो शायद एम वहीं से अपब्रिंगिंग वैसी ही है कि मुझसे कोई मिले तो कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स जरूर रहनी चाहिए। मुझे पेशेंट्स को भी, कभी पेशेंट कोई लूज हो जाता है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी या किसी तरह भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। इट इज ओनली कि वो मुझसे मिलने आया और मैं नहीं मिल
0: पाया, वो बात में रिग्रेट सा फील होता है।
1: एग्जैक्टली,
0: समझ सकता हूँ मैम एक्चुअली। बट मुझे भी ये लगता है कि आप जब अपने मन से कोई चीज करते हो ना तो वो 100% उसमें रिजल्ट भी अच्छा होता है। देखो काम की बातें भी हो रही है और मैम से थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन। बढ़िया इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे मैम।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है आपका। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मैम, अगर एक बार सिजेरियन हो गया है तो क्या अगली बार भी सिजेरियन ही होगा, जैसे कई लोगों के
1: मृत्यु? यस बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम इसी मैसेजेस से भरा रहता है कि मैम सिजेरियन को इतना साल हो गया, क्या अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, क्या सिजेरियन कराना चाहिए? देखिये, पहली बात तो अगर आपके दो ऑपरेशन हो चुके हैं या दो से ज्यादा हो चुके हैं तो ये तो एक टोटल इंडिकेशन है, इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि दो सिजेरियन के ऊपर अगर हो चुके हैं तो तीसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा।
0: ओके।
1: और यदि एक सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी फिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपका पिछला सिजेरियन से कितना टाइम है, मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बेबी प्लानिंग, ठीक है? आपके टांकों की मोटाई कैसी है, यानी कि जो आपके सूचर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ट्रैक करते हैं वो कैसे हैं, प्लस आपका अभी जो बेबी है उसका वेट कैसा है, पेल्विक कंडीशंस कैसी हैं, पेल्विस मतलब यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है, ठीक है? वो सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। कोई कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है जो कि डिले करेगा आपका लेबर। ये सब फैक्टर्स ध्यान रख के, प्लस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहां हम सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन वाले को ट्रायल दे रहे हैं वहां पे सारी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की भी होनी चाहिए प्लस इमीडिएटली शिफ्टिंग टू सिजेरियन सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कहानी सुनाती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका लगभग 1.5 साल का पुराना सेक्शन था, अभी ट्विन डिलीवरी थी, रास्ता इतना डायलेटेड था कि अब नॉर्मल डिलीवरी कराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा रास्ता खुल चुका था, लेबर में ऑलरेडी पेशेंट थी, तो मैंने डिलीवर कराया और ट्विन तो पहला बेबी तो डिलीवर हो गया नॉर्मली, बट यस आई न्यू कि दिस इज अ हाई रिस्क केस, तो मैंने उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया, अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म। पहला बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सडनली गश ऑफ ब्लड गया, यानी कि जो पुराना स्कार था वो रप्चर हो चुका था। That ways I took a decision immediately, क्योंकि हम ओटी में थे, अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल दिया, तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया और तुरंत बेबी डिलीवर करा दिया, पीडियाट्रिशियन थे तो बेबी रिससिटेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मदर ऑल्सो सेव, बेबी ऑल्सो सेव। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेटअप पे, ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया कि भैया सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप एक उस किसी के पास भी जाके, बट यस अगर एक सेटअप वेल इक्विप्ड है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इक्विप्ड है तो थिंग्स आर पॉसिबल और बीच में गैप ठीक है।
0: ओके। सो आई होप लेडीज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी है, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है, कई बार हमारी घर की बुजुर्ग का ये रूल है उन्होंने वही फॉलो कर लिया। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई हो। और डॉक्टर राशिका जी हमारे साथ मौजूद है, एंड मैम कौन से हॉस्पिटल में आप वर्किंग है एक बार प्लीज बता दें।
1: मैं हूँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: ओके। और मैम वैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पे मिलने की?
1: मैं 10 to 4 रहती हूँ, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनली सेइंग कोई टाइमिंग नहीं होती, ये ओपीडी टाइमिंग है,
0: मतलब आपको कभी भी जाना हो सकता है।
1: यस आई एम अ 24 hours अवेलेबल सर्वेंट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, क्योंकि
0: मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, सपोज अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कॉल आ गया
1: तो हम कल करेंगे, बाय आनंद,
0: बाय, ये बीच में हम खत्म कर देंगे, तो गाइस मैं जल्दी पूछ लेता हूँ।
1: इम्पॉर्टेंट।
0: वाओ, ये मतलब आपके लिए है, ये आपकी प्रायोरिटी है ना, इसलिए आपको इतना ज्यादा प्यार है। वो कहते हैं ना जिस काम के लिए आपके अंदर से डेडिकेशन आए फिर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट आप उनको देती हैं, काम को देती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसे कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में उसका रिकवरी में कितना फर्क होता है, मतलब यू नो
1: सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी है ना, वो इंस्टा पे रील्स देखिए ना, 7 लेयर कटते हैं, एग्जैक्टली 7 लेयर कटते हैं,
0: ठीक है
1: ना, तो रिकवरी में समय तो लगेगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक एपिसियोटमी देते हैं जो एक हल्का सा कट होता है नीचे, ठीक है, तो रिकवरी ऑब्वियसली सी सेक्शन की लेट होती है, और नॉर्मल डिलीवरी की हम नेक्स्ट डे ही चला के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 48 आवर्स, बट सी सेक्शन में हम 3rd day या 4th day मोस्टली डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट भी थोड़ा डरा रहता है क्योंकि स्ट्रिचेस आए हैं और मेजर सर्जरी है, तो रिकवरी में तो समय है, मतलब समय डिफरेंस है।
0: ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, सिजेरियन का जो सीन होता है वो क्या कभी रिस्की भी हो सकता है? ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है यार नहीं हम नहीं कराएंगे, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा?
1: सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी, ठीक है, रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, 100% ट्रेन्ड हैंड्स में भी रिस्क होता है,
0: ठीक है,
1: बिकॉज इट इज सर्जरी, बट रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ नाम से नॉर्मल है, बट पीपीएच आपकी एपिजियोटमी दी है उसमें इन्फेक्शन, तो ऐसे रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होते हैं फीटल डिस्ट्रेस, बेबी को रिस्क, तो वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो देयर आर रिस्क इन बोथ ऑफ देम।
0: ओके, और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार सिजेरियन तो कितना आसान डिलीवरी है।
1: सिजेरियन आसान बिल्कुल नहीं है, किसने कहा सिजेरियन आसान है। लोगों को लगता है कि लेडीज बचने के लिए सिजेरियन करा लेते हैं, दर्द नहीं झेलने हैं, बट हु सेड आप एक बार सिजेरियन। और मोस्टली ये सब जो होता है ये उन लोगों को लगता है जिसने ये सब नहीं झेला है, मतलब मैं किसी को काउंटरेक्ट नहीं कर रही, बट मेल्स को ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट पेन, कभी उन्होंने मेंसेस का पेन नहीं झेला, हर मंथ मेंसेस आना, दिस नॉट नॉर्मल, वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट, बेबी को रखना 9 मंथ की जर्नी, इट्स नॉट इजी। तो कैसे आप सिजेरियन को इजी कह रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स जस्ट अ ऑप्शन। मतलब 9 महीने उसने कितना सेक्रीफाइस किया आप सोच भी नहीं सकते, वो लेट भी नहीं पा रही है, वो खा भी नहीं पा रही है, उसको उल्टियां हो रही हैं, तो एक डिलीवरी का प्रोसेस अगर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया तो आप उसे कह रहे हैं कि बहुत आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान बच्चा पैदा करना ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा कंसीव करना भी आसान।
0: मैम हर चीज में बहुत एफर्ट्स लगती है, ये तो बात है, और कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। और दोस्तों हमारा भी मेन मोटिव यही है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राशिका मैम मौजूद है। और आज सिजेरियन पे बहुत सारी बात हो रही है एंड बहुत जरूरी है मैम, आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन भी हैं और जो बहुत आसानी से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग चैलेंज देते हैं, कुछ लोग कुछ भी अड़गम सड़गम दिखाते हैं, लोग ठाक यूज करने लग जाते हैं।
1: मेरी फ्रेंड की नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी भी होनी चाहिए मैम, आपने ही कराई थी और आपको ही करानी है, यार ये कैसा चैलेंज है आप मुझे ये बताओ। चैलेंज ये होना चाहिए कि मैम बेबी और मदर मुझे सेफ चाहिए, आपके हैंड में आपने 9 महीने देखा है।
0: एग्जैक्टली
1: कॉम्पिटिशन तो यार कहीं नहीं है और कोई रेस नहीं लग रही, सबको अपना बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए। सो इट इज ओनली कि भैया कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन से काम खराब ही होता है, जहां आप बच्चे कंपेयर करना शुरू करते हो वहां भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अलग है, मेरे बच्चे में अलग क्वालिटीज है। सो एवरीबडी प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट, सबके इंडिकेशंस अलग होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल प्रोसेस, हम चाहते हैं नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन ये कि उसका ऐसे हुआ था तो मेरा भी ऐसे होगा, प्लीज ये सब नहीं करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें, उससे कॉन्टेक्ट करें, जैसा भी है उसी से मतलब बात करें, एंड शी विल डिसाइड द बेस्ट फॉर यू।
0: ऑलराइट, बहुत ही अच्छे से मैम आपने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे अवेयरनेस।
1: एग्जैक्टली,
0: क्योंकि सोशल मीडिया पे दिन भर में 100 तरह की रील्स आती है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही हो सकते हैं, उसके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ डाल दिया हो, तो सही जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी खतरे की निशानी।
1: यार उसने डिलीवरी नहीं करानी, उसने बस रील्स के व्यूज लेके मजे लेने
0: वही बात,
1: हमें डिलीवरी करानी है।
0: अच्छा,
1: हमें
0: आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं मैम, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस तरह के लोग ने सोशल मीडिया पे देख के ये कर लिया, वो फिर आपने उसको समझाया और बताओ ऐसे कैसे किया।
1: ऑब्वियसली यार मेरी अपनी ही रील देख के आते हैं कि मैम उसकी आपने नील लाइकर पे नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, ठीक है, मैंने अभी कराई है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी बिकॉज उसको पैनक्रियाटाइटिस थी उस पेशेंट को, उसके लिए सिजेरियन करना वाज लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसके लेकिन रिस्क मैंने उसको एक्सप्लेन किए, मदर का रिस्क ज्यादा था तो वो सिचुएशन नहीं सुनते थे अपन पुराने जमाने में कि हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को।
0: हाँ, टीवी से देखा है बहुत बड़ी,
1: तो कुछ उतनी खतरनाक तो नहीं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम सिजेरियन करते तो बेबी के लिए बहुत रिस्क होता, तो हमने एक रिस्क लिया, उसके अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि बेबी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है, इवन बेबी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है, बट वो रिस्क उसने एक्सेप्ट किए, एंड ऊपर वाले का कर्म था कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन, मदर वाज फाइन, बेबी वाज फाइन, बट उसने इतना रिस्क लिया और उस वक्त हमारे लिए मदर ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नील लाइकर नो लाइकर पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। बट अब कोई दूसरा पेशेंट एकदम वही रील देख के मेरे पास आ जाए कि मैम वो तो नील लाइकर पे, इट इज नॉट पॉसिबल ना।
0: एब्सोल्युटली,
1: आई वाज द वन हु डिलीवर्ड नॉर्मली, बट उस पेशेंट के लिए आई विल नॉट, कि अगर मदर हमें बेबी का रिस्क ले लिया कुछ हो जाता भगवान ना करता फिर हम ही लोग उसके लिए आंसरेबल होते ना। बट वो सिचुएशन अलग थी, तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट।
0: गाइस मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं और यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में, तो आप लोग प्लीज इसे सुनिए और आपको कैसा लगे अपने फीडबैक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैम से हम और बातें करें तो आप वो भी हमें बता सकती है मैसेज करके, हम भी एक शाउट आउट आपको जरूर देते हैं, बिग शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छी बात है और ये हर कोई नहीं करता है मैम, बट एक्चुअली इस टाइम ऐसा हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रहे लोग नहीं मिल पा रहे, तो एटलीस्ट वो रील देखते उन्हें ये तो पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम भी आपको बेस्ट विशेस देंगे और ये बंद मत करिएगा, अभी तो हमारा टाइम है तो जब तक तो शायद बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, है ना। सो बहुत अच्छी बात है मैम, वंस अगेन लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा
1: फील वेरी नाइस, मतलब हमें मिल नहीं पाता है बट मेरा मन अंदर से करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है.
0: Exactly.
1: बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, लेडीज नहीं पूछ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, बट आपका रेडियो घर घर में जा रहा है.
0: Exactly.
1: करना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है
0: बस.
1: तो आज की शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको अपराइज करेंगी, कुछ ऐसी अंदर से बातें होंगी जो उन्हें नहीं समझ में आ रही होंगी.
0: Sure.
1: यार ये मेरे साथ ही होता है क्या? तो मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये हर घर की कहानी है, क्योंकि ये मेरे चैम्बर में रोज. तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर, एवरीबडी इज देयर. तो हम एक दूसरे का सहारा बने तो ज्यादा बेहतर है.
0: Exactly.
1: मैंने बहुत सुन लिया औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मैं यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस सीनेटर, बहुत अच्छी बात है. और ये बहुत जरूरी है स्मित को दूर करना भी.
1: Exactly.
0: लास्ट में आपने बहुत मुद्दे की बात बोल दी है. एंड गाइज फाइनली अब हम लेंगे आपसे इजाजत. मैम को किसी दिन बुलाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे. डोंट वरी, मुझे पता है आप लोग मैम को बहुत अच्छे से जान चुके हो. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करते हैं. मतलब कैसा आपका जर्नी रहा, ये अपना जो भी आपने किया अभी तक, उस पर हम बात करेंगे. उस पर वेरी नाइस, उस पर हम ये आपका फिर कोई मतलब मैम गायनोकोलॉजिस्ट बन के
1: नहीं,
0: राशि का बन के आएंगे, सिर्फ अपनी आपने कैसे किया है अपनी लाइफ को. ये
1: गायनोकोलॉजिस्ट छोड़ के आती हूँ, वैसे भी उधर छोड़ के आती हूँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है. सो क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज शी इज वेरी बिजी है, और वो होना भी चाहिए भाई, अपने काम पे ही फोकस होना चाहिए. सो बट मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम जल्दी मिलते हैं वेरी सून, कुछ नया करते हैं. एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, एक अच्छा सा गाना छोड़ के जा रहे हैं, मैंने और मैम ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, तो ये गाना आपके लिए लगा के जा रहे हैं. और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं. मेरे से अगर कुछ पूछना है आपको, आप आना चाहते हो स्टूडियो, तो मोस्ट वेलकम है. ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से. और बाकी मैम एक बार आप इंस्टा हैंडल बता दूं.
1: मेरे नाम से डॉक्टर
0: राशिका गुप्ता. मैं इनका एक रील शेयर करता हूँ पिज्जे वाला, बहुत हमने उसको आज हाईलाइट कर दिया है, तो आप वो क्लिक करोगे तो मैम के अकाउंट पे पहुंच जाओगे. बाकी के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. मैम मेरे साथ बोलो, रेडियो बजाते रहिए,
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो.
0: क्या बात है, इन्होंने 3 बार बोल दिया. चलो फिर मिलते हैं, बाय गाइस, थैंक यू.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहां आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी, नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहां 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: 3:10 पर सुनेगा कार्यक्रम मन भावन। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra.
2: चैट जीपीटी सीखना है? आ जाओ, सिखा दूंगा.
1: The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. The Rajya Sabha also passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Secretary, Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. BJP National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in three assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Mr. Naveen said that in Bankipur, Datia, BJP did not receive the expected mandate. He said that the party will conduct a thorough inspection of the election results in both these areas. The Supreme Court has clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIRs registered against protesters involved in the recent student protests at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. A three-judge bench led by Chief Justice Suryakant explained that its 28th of July order permitting the prosecution of voters, the protesters, with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. The top court was hearing pleas alleging excessive police action against students who participated in protests at Jantar Mantar on 20th of July and at other places across the country over the NEET examination paper leak issue. Food regulator FSSAI has prohibited Dabur India from selling many products such as honey, cow ghee and edible oils using 100% claims, saying that such labelling is against the law. In a social media post, FSSAI has informed that it has issued a prohibition order to Dabur India Limited over the sales of fruit products carrying misleading 100% claims including honey, apple cider vinegar, virgin coconut oil, sesame oil, cow ghee, coconut water, coconut milk and other such items. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगी आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को, दिल्ली रोड जूडियो के सामने, कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और स्वागत है आप सभी का आपका अपना शो दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे पहुंचती हैं दिल तक। और आज का एक सवाल शुरुआत में ही आपके साथ है कि अगर जिंदगी में आपको सिर्फ एक चीज चुननी हो, प्यार, पैसा या सुकून, तो आप क्या चुनेंगे? सोचिएगा जरूर और अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा 9837896896 पे। तो चलिए साहब, शुरुआत करते हैं छोटी सी शायरी के साथ। मोहब्बत वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, मोहब्बत वो है जो खामोशी से निभाई जाए। कोई अगर पूछे अगर हाल दिल का, कोई पूछे अगर हाल दिल का, तो मुस्कुराकर बस उसकी याद आ जाए। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को बनाते हैं और भी खूबसूरत। तो आप करें कॉल और करते हैं फिर दिल की बात 9837896896 पे, तो इस गाने के बाद, क्योंकि कुछ गाने होते ही सच ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके दिल के पास रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ, पल पल दिल के पास, जो आपके पास भी है कुछ ना कुछ ऐसा, तो शेयर करेंगे 9837896896 पर।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और हाँ जी, खूब सारी बातें हो रही हैं और दिल की बात भी निकल के आने वाली है, क्योंकि कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई चेहरा याद आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ मुलाकातें याद आ जाती हैं, किसी को पहली बारिश याद आ जाती है, और किसी को वो इंसान जिसे कभी बताया ही नहीं कि वो कितना खास था उसके लिए। तुम पास नहीं हो फिर भी पास लगते हो, दूर होकर भी दिल के खास लगते हो। लोग पूछते हैं तुम्हें इतना क्यों सोचते हो, लोग पूछते हैं तुम्हें इतना क्यों सोचते हो, अब उन्हें क्या बताएं, तुम सांसों के एहसास लगते हो। तो कुछ कहते हैं ना, जो दिल के पास जो एकदम काने से आपकी सारी बातें, आपकी सारी यादें जुड़ी होती हैं, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। अब आपके लिए भी ना, एक सबसे प्यार की जो खूबसूरत निशानी क्या है, ज़रूर हमें बताएं। कि कभी कभी एक फ़ोन कॉल करना, या फिर एक छोटा सा मैसेज, या बिन बोले समझ जाना। अरे हाँ हाँ, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। कोई तो बात ऐसी होगी जो आपके लिए खूबसूरत निशानी के तौर पे याद रहती होगी। तो चलिए, तब तक एक और बेहतरीन गाना हम सुनते हैं और आपसे भी खूब सारी बातें करते हैं। 9837896896 पे। थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू है, मगर कोई नहीं, चलेगा बात तो तब भी निकलेगी दिल से, अगर नहीं निकलेगी तो मैसेज के थ्रू आ जाएगी साहब। तो सुनते हैं इस गाने को और करते हैं और खूब सारी प्यार भरी बातें।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। अभी जो आप गाना सुन रहे थे ओ मेरे दिल का चैन, जिसे गाया है किशोर कुमार दा ने और उसको डायरेक्ट किया है आर डी बर्मन शाह ने। तो चलिए इतना प्यारा गाना सुनने के बाद बात करते हैं अपने हम लिसनर से और पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हेलो सर, अखिल भाई नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं गजरौला से हूँ
0: क्या बात
1: और
0: है दीपक
1: आपका
0: जी
1: एफएम सुनता हूँ मैं।
0: तो आवाज पहुंच रही है आपके पास तक भी गजरौला में?
1: वहाँ तक ही पहुँचती है।
0: तो क्या काम करते हैं दीपक जी आप?
1: मैं करता हूँ रियल इस्टेट में सर, काम
0: क्या
1: रियल इस्टेट
0: बात है
1: प्रॉपर्टी
0: साहब,
1: इन्वेस्टमेंट।
0: बहुत बढ़िया साहब, वरना आजकल तो लोग रीलों में बहुत काम कर रहे हैं मगर आप रियल इस्टेट पे काम कर रहे हैं। तो आजकल आप बताएंगे कुछ कुछ रियल इस्टेट में इस समय जो सिचुएशन चल रही है।

0: या इस समय इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर कहीं देखा जाए तो रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
1: रियल एस्टेट में अगर हम एंड यूजर हैं तो हमें अपने लोकल में देखना चाहिए, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक ऐसी जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे आने वाले टाइम में एक इंटरनेशनल लेवल पे इंफ्रा बन रहा हो, डेवलपमेंट हो रहे हो। जैसे कि अपने देश में कभी एक बहुत बड़ा सिटी बन रहा है, मतलब देश में नहीं पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा इंफ्रा मैं कह सकता हूँ, धोलेरा के अंदर, ये धोलेरा गुजरात अहमदाबाद के पास में बन रहा है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा भी है।
0: क्या बात कही आपने दीपक जी। अभी इस समय आने वाला है नवरात्रि का सीज़न, और जैसे आपने अहमदाबाद और गुजरात का नाम लिया तो डांडिया जो होता है ना, खूब वहाँ पे खेला जाता है और गरबा खेला जाता है। तो बिल्कुल आपने एक बता दिया कि गरबा भी खेलो और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी, मतलब एक अच्छी जगह भी है इस समय गुजरात।
1: काफी काफी बड़े डेवलपमेंट वहाँ होने वाले हैं, और दुनिया की ऐसी कोई कंपनी वहाँ नहीं है जो वहाँ नहीं पहुँच रही है, पूरा इंडस्ट्रियल हब बना रही है गवर्नमेंट उसको।
0: क्या बात है
1: काफी
0: आप।
1: बड़े लेवल पे भी शुरुआत है और इंटरनेशनल लेवल पे एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे बन चुका है।
0: क्या बात है दीपक जी, आपने बहुत ही एक अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर कभी ना कभी किसी तरीके से संपर्क करेंगे और पता भी करेंगे कि
1: हाँ,
0: है क्या।
1: मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ढोलेरा को एक बार सर्च करना चाहिए सभी लिसनर्स को, कि एक बार ढोलेरा स्मार्ट सिटी को वो यूट्यूब और गूगल पे सर्च करें और देखें, इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है अगर रियल इस्टेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट वो सर्च कर रहे हैं कहीं।
0: चलिए ज़रूर दीपक जी। तो दीपक जी, ये तो रही आपकी प्रोफेशनल बात, एक दिल की बात हम ज़रा
1: जी
0: जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको भाभी जी ने कहा है कि ये सामान ले आओ, और जब आप पहुँचे मार्केट में तो आप भूल ही गए कि सामान क्या लाना था, और फिर आपने किसी बहाने उनसे पूछा कि अरे भाई क्या कह रही थी भगवान आप कि ये सामान लाना है।
1: कई कई बार हुआ है, कई बार
0: कई बार हुआ है आपके साथ ये?
1: कई बार होता है।
0: कई बार होता है आपके साथ? तो होता क्या, मतलब आप जो सामान पूछते हैं दोबारा हिम्मत करके, या भैया जो याद रह गया वही ले आते हैं?
1: कई बार भूल भी जाता हूँ, जो चीजें याद रहती हैं वो ले आता हूँ, फिर बाद में दोबारा जाना पड़ता है।
0: चलिए साहब, चलिए सही है, बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम दिल से निकल के बात बोली है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, या हम अपने दिल के आपको कोई गाना सुना दें?
1: आपके दिल में जो भी आ रहा हो, अच्छा सा सॉन्ग।
0: तो ज़रूर, आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को और सभी जो लोग हैं साथ में।
0: बहुत ही अच्छा दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आपने दिल से अपनी बात बोली है ना, वो तो और भी शानदार रही। धन्यवाद दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू सर।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे दीपक जी, जिन्होंने अपने दिल की बात रखी और कहा कि हाँ उनके साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेने कुछ और जाते हैं साहब और लेके कुछ और आते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब की बार उनसे हम कहेंगे कि आप लेने भी धुलेरा चले जाएँ, धुलेरा से कुछ लेके आएंगे ना तो भाभी जी बहुत खुश हो जाएंगी। तो चलिए, उनके कहते हैं ना, जो कहते हैं बढ़िया सा गीत, तो वो एक गीत है जो आप भी गुनगुनाएंगे जब मैं प्ले करूँगा। तो इस गाने के बाद आपसे भी करते हैं खूब सारी बात हमारे साथ ऑन एयर 9837896896 पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो खूब बातें हुई हैं अभी दिल की, और दीपक जी ने भी क्या मुस्कुरा के जवाब दिए हैं। तो चलिए छोटी सी कहानी सुनते हैं, अब शायद आपको अपनी ज़िंदगी के किसी इंसान की याद दिला दे। एक लड़का रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करता था। एक दिन काम की व्यवस्था में उसने फ़ोन नहीं किया, माँ ने भी फ़ोन नहीं किया। रात को लड़के ने सोचा कल बात कर लूँगा। अगले दिन सुबह माँ का फ़ोन आया। माँ ने सिर्फ इतना पूछा, बेटा कल तुम बहुत व्यस्त थे क्या? लड़के ने कहा, हाँ माँ थोड़ा काम ज़्यादा था। तो माँ बोली, कोई बात नहीं, बस आवाज़ सुनने का मन था। तो बस दोस्तों, कभी कभी सामने वाले हमसे बड़ी चीज़ नहीं मांगते, उसे सिर्फ हमारी आवाज़, हमारा समय और हमारा थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। इसी के ऊपर एक शायरी, रिश्तों को वक्त की ज़रूरत होती है, महंगे तोहफों की नहीं। कभी माँ को फ़ोन कर लेना, क्योंकि हर बार कल का भरोसा नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं अपने एक और लिसनर से जो हमारे साथ लाइन पे हैं, और पूछते हैं क्या हाल है उनका भी दिल का। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: सर, कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया है सब।
0: क्या कर रहे हैं आप और नाम क्या है आपका? हाँ अब्बास जी, आपका नाम तो पता ही चल गया है। अब्बास जी आप क्या काम करते हैं? हाँ जी सर, आप एफएम से सुन रहे हैं या डायरेक्ट कॉल से सुन रहे हैं हमारी बातें?
1: हमारे आप एफएम से सुन रहे हैं सर।
0: तो आप पहले सीधे कॉल पे सुनिए, एफएम को थोड़ा पीछे कर लीजिए, जिससे कि हमारी बातें बिल्कुल क्लियर और अच्छे से पहुंचे आप तक।
1: अच्छा।
0: तो अब्बास जी आप बताइए क्या काम करते हैं? छोटा मोटा काम कर लेते हैं, जो भी मिल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब्बास जी आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है अभी?
1: शादी नहीं समझ में आई।
0: तो सही है साहब, अभी छोटे मोटे काम बिल्कुल अच्छे से करने की आदत डाल लीजिए।
1: सही कह रहे हैं आप।
0: तो ये बताइए अब्बास जी, आज जब आपने कॉल मिलाई है तो कौन सी ऐसी दिल की बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ की, या कोई ऐसी याद होती है ना जो दिल के बहुत ही करीब होती है, वो कुछ साझा करना चाहेंगे?
1: आपको
0: आप अगर गाना अच्छा गाते हैं तो ज़रा गाना सुना दीजिए, वरना कोई ऐसी बात बता दीजिए जो आपके दोस्तों के साथ कभी कभी होती है ना, कुछ मस्ती हो जाती है और शैतानी करता कोई और है, पिट कोई और जाता है, ऐसा हुआ है आपके साथ भी? क्या करा आपने दोस्त के साथ, पिटाई करवा दी उसकी? कैसे लगवाई क्लास?
1: आपस में मतलब छोटी मोटी बात हुई सर, क्लास लगवा दी। और क्या
0: मतलब घर पे शिकायत पहुंच दी कि भैया ये जो है गलत बातें कर रहा है, और आज इसकी आप खबर ले लीजिएगा। हैं, जब पहुंचा तो उसकी क्लास लग गई। तो उसके बाद जो दोस्त है उसने भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आपकी भी क्लास लगवाई होगी, दोस्त ऐसे आसानी से पीछा छोड़ते नहीं है इन मामलों में। बस भाई साहब, तो आप दोनों मिलके क्लास में पास भी हुए या बस पासिंग मार्क्स ही आके रह गए? चलिए साहब, कम ऐसे ही होनी चाहिए, दोस्ती भी ऐसी ही होनी चाहिए, अगर पास हो तो दोनों हो, अगर नहीं हो रहे तो भाई साहब तू भी फेल मैं भी फेल। बिल्कुल सही कहा आपने, लाइन पार।
1: लाइन पार। और ये एफएम जो आपने, ये जो एफएम आ रहा है, ये 937 एफएम, ये भी आपके यहाँ से आ रहा है क्या?
0: हमारे पास से अभी आप 89.6 पे सुन रहे हैं, क्या लगा है आपकी, रेडियो से सुन रहे हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं आप?
1: मैं सुन रहा हूँ घड़े पे एफएम आ रही है दूसरा वाला, इसकी रेंज अच्छी है आपके वहाँ की एफएम की, इसकी रेंज अच्छी नहीं है। वो मोबाइल पे सुनेंगे तो उसका नेट कटता है सर, रिचार्ज रिचार्ज होगा तभी सुन पाएगा सर उसको। ये रेंज अच्छी नहीं है आपके एफएम की।
0: तो कोई नहीं, अब तो आपको उसकी रेंज मिलेगी 89.6 वाले की, तो रेंज आपको अच्छे से मिलेगी।
1: इसकी अच्छी है रेंज, मोबाइल से कनेक्ट है ना सर उससे वो।
0: तो चलिए आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जब आपके पास रेंज पूरी पहुंच रही है तो।
1: आप आए बाहर आए सारे जमाने में, जिस जमाने में मौसम मिल गई आई, आप आए बाहर आई।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप आए तो बाहर आए। जल्दी किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है आपका जल्दी ही जो है आप आए बाहर आए वाला सीन होने वाला है।
1: नहीं
0: तो किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना आप?
1: दोस्त
0: दोस्तों को, फ्रेंड वगैरह को?
1: वगैरह
0: तो वगैरह वगैरह के कुछ तो नाम होंगे आपके पास।
1: मेरे दोस्त काफी नाम है, विशाल है, तुषार है और सोनू है, काफी लड़के हैं साथ के।
0: चलिए साहब, सभी को डेडिकेट करते हैं आपकी तरफ से। बहुत अच्छा लगा अब्बास जी आपसे बात करके, धन्यवाद अब्बास जी। तो हमारे साथ जुड़े थे अब्बास जी, जो अपनी दिल की बातें कर रहे थे कि साहब मैंने तो अपने दोस्त की पिटाई करवाई है, और बाद में उसने भी पूरा बदला लिया है जो मेरी पिटाई करवा के। तो ऐसे ही होता है दोस्तों में, तो ऐसे ही चलता है भाई। जब तूने मुझे छेड़ा तो मैं भी तुझे पूरा पूरा छेड़ूंगा। तो चलिए सुनते हैं ये गाना आप आए बाहर आए। उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, एडवर्टीजमेंट ब्रेक, और फिर सुनेंगे इस गाने को और फिर करेंगे आपसे ही बातें। 9837896896 पर।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
7: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: दोस्तों टाइम हो गया है 9:45, अभी भी हमारे पास टाइम है आपकी और अपनी दिल की बातें कहने के लिए। हमारे पास मैसेजेस आए हैं तो चलिए थोड़ा सा उन्हें भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन क्या कह रहा है। सबसे पहला मैसेज आया है हमारे पास, उजड़ कर मेरी दुनिया वहाँ सुकून से सो गए। उजाड़ कर मेरी दुनिया वह सुकून से सो गए, उससे खबर ही क्या कि कोई उसके लिए रात भर रोया है। क्या बात है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। यादव फैमिली लाइन पर प्रकाश नगर चौराया गली नंबर 2 से। तो यादव जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी प्यार भरा। और आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, तो ज़रूर ये आपकी फरमाइश भी आज के शो में पूरी की जाएगी। हमारे पास दूसरा मैसेज आया है, तेरी मेरी दोस्ती का रिश्ता सबसे खास है, तो दूर होकर भी हर पल दिल के पास है। तेरे बिना अधूरी लगती है हर एक खुशी, तू साथ हो तो हर लम्हा बेहद खास लगता है। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? मैं अफरोज फातिमा। सर आज मेरी दोस्त आरजे छाया का बर्थडे है, मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिए बेबी मेरे बर्थडे पर तुम क्या दिलवाओगे प्लीज़ सर। तो ज़रूर, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू छाया जी, आरजे छाया, और ये गाना उनके लिए ज़रूर हाथ प्ले करवाएंगे। हमारे पास एक मैसेज और है शानू जी का, उन्होंने भी यही सेम रिक्वेस्ट हमें भेजी है, सर प्लीज़ एक बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, आज आरजे छाया जी का बर्थडे है। तो ज़रूर हम ये आप दोनों की ही फरमाइश पूरी करेंगे और आरजे छाया जी को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग एक पेश करेंगे। तो चलिए करते हैं खूब सारी बातें। हमारे साथ एक लिसनर हमारे लाइन पर हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अनुराग यादव है।
0: अनुराग यादव जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं जॉब करता हूँ सिंचाई विभाग में।
0: आप जॉब करते हैं सिंचाई विभाग में? तो इस समय कैसा मौसम है सिंचाई विभाग के हिसाब से?
1: मौसम तो अच्छा है जैसा।
0: मौसम अच्छा है?
1: आज शाम से तो ज्यादा ही बढ़िया मौसम हो रहा है।
0: आज शाम से अच्छा है मौसम हो रहा है? तो अनुराग जी, आप कुछ कोई ऐसी बात जो कहते हैं ना थोड़ी सी दिल के पास होती है, कुछ दोस्तों के साथ होती है, कुछ परिवार वालों के साथ होती है, तो कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ?
1: मैं एक आपको शायरी सुनाता हूँ।
0: क्या बात है अनुराग जी, जरूर जरूर
1: जी। तो हम अगर मिल नहीं पाते, ऐसा नहीं होता कि आप हमें याद नहीं आते। माना जहाँ के सब रिश्ते निभाए नहीं जाते, जो बस जाते हैं दिल में वो फिर भुलाए नहीं जाते।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये जो आपने सुनाई एकदम बिल्कुल एकदम पास से ही निकली है आपके भी दिल से। बहुत ही बढ़िया अनुराग जी। तो कौन सी ऐसी फरमाइश का वाला गाना है आपका जो आप चाहते हैं कि सुना जाए और थोड़ी सी उन यादों में खोया जाए?
1: जी जी जी, गाना है आंखों से तूने ये क्या कह दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है, गाना भी आपने बहुत ही बढ़िया चुना है, ये आंखों से तूने क्या कह दिया।
1: गाना बहुत अच्छा है।
0: तो ये किसे डेडिकेट करना चाह रहे हैं आप, किनकी आंखों को?
1: मैं अपनी वाइफ।
0: अच्छा,
1: मेरी वाइफ ममता यादव है।
0: हाँ जी
1: जी, उन्हीं के लिए।
0: चलिए सर, ये भी फरमाइश पूरी करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा जो आपने अपने दिल से निकली हुई शायरी, भले ही कैसी भी, कहीं भी हाथ में मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वहाँ से निकली है, मगर बहुत ही अच्छी प्यार से निकली है बात। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के। तो सर हमारे साथ जुड़े थे अनुराग जी, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत, मतलब कहते हैं ना कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं दिल से निकलती हैं, वो शायरी ना भी आती हो तो भी उन्होंने कितने प्यार से और कितने संजीदे तरीके से अपनी बात रखी और कितनी अच्छी लगी। तो ये जो गाना उन्होंने चुना है ज़रूर प्ले करते हैं उनकी वाइफ के लिए जो डेडिकेट उन्होंने किया है। उससे पहले जो डेडिकेशन जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है बर्थडे सॉन्ग की, तो वो भी ज़रूर जो है विश किया जाता है आरजे छाया जी को। तो चलिए आते हैं इन दोनों गानों के बाद, खूब सारी बातें करेंगे क्योंकि अभी 10 बजने में तो टाइम है मेरे दोस्त।
2: बंदा पवर डी अन्ना यार।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों, खूब सारी बातें हो रही हैं, वो भी दिल से दिल की। तो आज आपको एक बात बताते हैं ग्लोबली वाली। आज की साइंस न्यूज में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2026 की घोषणा भी चर्चे में है। हेनरी बी कागन और केंसो सिवाई को ऑटो कैटालिसिस से जुड़े पायनियरिंग वर्क के लिए सम्मानित किया गया है। तो साहब, जब होता है ना नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज होता है, तो जब मिलता है किसी को तो कितनी खुशी होती है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट लिसनर से, क्योंकि समय बहुत आ गया है, करीब बजने वाले हैं 10 और खूब सारी बातें हो गई हैं आज। तो अपने नए लिसनर से पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो भी। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो सर, गुड इवनिंग सर, क्या हाल है?
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाल बहुत बढ़िया है, आप बताइए आपके हाल कैसे हैं?
1: हमारे हाल चाल एकदम बढ़िया, बिंदास होके बिल्कुल सो सुन रहे हैं आपका।
0: तो इस समय जो है आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है? हवा आ रही है या आपको खुद ही पंखा चलाना पड़ रहा है?
1: सर असल में क्या, हवा तो चल रही है हमारे यहाँ, ठंडी ठंडी बज रही है 2 घंटे से मौसम, लेकिन हमने सोचा हवा से बच के हम सोचा अंदर लेट जाओ कमरे में, जब कमरे में जाके लेटे तो हम मच्छर नहीं सोने दे रहे, तो हमने पंखा चला लिया।
0: चलिए साहब, मच्छरों का तो काम ही यही है कि दूसरे को ना सोने दें और खुद भी ना सोए।
1: बाहर मच्छर गया ना, बाहर बेसिन में सोओगे, अंदर हमने सुन लेंगे।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोई ऐसी बात जो आपके दिल के इस समय थोड़ी सी करीब हो, जो आज हम सभी के साथ शेयर करना चाहें आप?
1: दिल के करीब सर, दिल के करीब असल में हमें पुरानी बातें याद आ जाती है कि हमारे मतलब पुराने दिन कितने अच्छे थे, 2008 के 2009 के कितने अच्छे दिन बीते थे, और अब अच्छे दिन नहीं लगते।
0: कैसे मतलब, आप जो कोई ऐसा एक दिन बताइए जो आपको पुराने समय का दिन याद आता है और अभी भी उसे ना याद करके आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है?
1: वो असल में क्या, हम घूमने जब जाते थे तो सब जने साथ में होते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, तो सब जाते थे, ईद का टाइम होता था, फोटो खिंचवाते थे एक साथ में, मिलजुल के
0: तो फोटो किससे खिंचवाते थे? जो मोबाइल वाला फोन था जिसमें कैमरा था?
1: कैमरे चलते थे, कैमरे पे
0: कैमरे चलते थे। कौन सी कंपनी का कैमरा ज्यादा यूज करते थे आप सब?
1: कैमरा असल में कंपनी का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, DSLR मतलब कौन सी कंपनी थी उसका ध्यान से नहीं आ रहा है। उसमें बहुत अच्छा कैमरा होता था उस समय, और अभी भी हमारे यहाँ पे एल्बम में भरी पड़ी है, तो फोटो देखते तो और ज्यादा याद आता है वो वाला दिन।
0: हाँ, वो जो एल्बम होती है ना, जो कहीं दराज में दबी हुई होती है या किसी अलमारी में छिपी हुई होती है, और कभी सामान कुछ और निकाल रहे होते हैं मगर हाथ में एल्बम आ जाती है।
1: हाथ में एल्बम आया था, तो फिर तो पूरा दौर याद आया था एल्बम को देख के, क्या कितना बढ़िया दौर है फोटो देख के।
0: आपकी शादी हुई है नहीं हुई है अभी?
1: शादी अभी नहीं हुई है, 2 साल बाद हो जाएगी।
0: हाँ, तो शादी वाली एल्बम भी ऐसी जगह रखिएगा कि कहीं दोबारा देखते रहें बार बार।
1: वो तो है।
0: तो हाँ बताइए, किस्सा बताइए आप।

0: उसके बाद में असल में वो दौर ये याद आता है क्योंकि सबके साथ में मिलजुल के वो करते हैं, मोबाइल फोन हो गए
1: ये बात तो
0: ऐसे
1: आपने
0: करते
1: सही
0: होते
1: कही। वो फोटो खिंचाने का ना मजा ही कुछ और होता है जब दोस्त साथ में होते थे और मोबाइल नहीं होता था, मगर कैमरा होता था आपके पास,
0: कैमरा होता था तो और
1: और
0: अच्छा लगता
1: उसमें
0: था।
1: भी एक आध फोटो ऐसी आ जाए कि भाई साहब आप फोटो खिंचवा रहे हैं और आपने उसी समय नाक में उंगली करी और वही फोटो
0: हाँ
1: आपका खिंच गया। तो
0: वो हाँ किसी न किसी कहा ऐसा फोटो भी होता है बहुत
1: ये सब चीजें तो हमेशा याद आने वाली है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: सर। गाना है आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं।
1: क्या बात है, गाना भी आपने एकदम सही चुना है आपने।
0: चल मेरे भाई मूवी का गाना है संजीदा सलमान खान का।
1: चलिए तो ज़रूर ये शो को एंड होने से पहले आपकी गाने की भी फरमाइश पूरी की जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा
0: सर
1: आपने।
0: थोड़ी सी एक शिकायत है सर,
1: अब
0: अगर पूरी हो जाए तो
1: अच्छा
0: जैसे जैसे शो चलता है तो कस्टमर मतलब वो श्रोताओं की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी दबी दबी से आती है सर रात वाले शो में, दिन में जो होते हैं मतलब हेलो फरमाइश उसमें सही आती है, तो
1: तो
0: इसमें
1: कभी
0: थोड़ा
1: कभी हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आवाज़ को बाहर निकाला जाए, मगर श्रोताओं को भी तो थोड़ा सा दिल और बेजोर लगा के बोलना पड़ेगा ना, जैसे अभी आप बोल रहे हैं।
0: ना सर हम तो हमें तो अभी पता नहीं हमारे बात कैसी जा रही है। असल में क्या दिन के शो में जो होते हैं ना फरमाइश उसमें थोड़ी क्लीन आती है, रात में होता पता नहीं क्यों थोड़ा सा
1: चलिए
0: अच्छा
1: इसे
0: ध्यान नहीं
1: इसे
0: जाता।
1: इस पे भी हम ध्यान देते हैं, मगर आप भी हमें बताइएगा जब आपको लगे कि अब आवाज़ सही आ रही है तो ज़रूर हमें बताइएगा फोन करके।
0: हम अपनी बात सुनेंगे और हमको बताएंगे प्रतिक्रिया देंगे।
1: हाँ प्रतिक्रिया दीजिएगा आप हमें प्रतिक्रिया।
0: जी सर
1: तो बहुत
0: ओके
1: अच्छा
0: सर
1: लगा और आपसे जुड़ के इतनी अच्छी दिल की बात जो आपने शेयर करी बहुत ही शानदार।
0: ओके सर थैंक यू।
1: ओके सर, तो हमारे साथ जुड़े थे साहब और कह रहे थे कि सर आपकी जो आवाज़ है कभी कभी बिल्कुल साफ आती है और कभी कभी जो लिसनर्स होते हैं उनकी आवाज़ गायब हो जाती है। तो हाँ आवाज़ तो कभी कभी गायब हो जाती है, मगर आगे उस चीज़ को और बढ़िया से करके आप लोगों के साथ खूब सारी दिल की आवाज़ें हैं ना वो बाहर निकाली जाएंगी। तो अब चलने का समय आ गया है और कहते हैं ना कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता है, कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूर रह के भी किसी की खुशी की दुआ करना। तुम्हें चाहना मेरी आदत नहीं, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम खुश रहो जहाँ भी रहो, मेरी मोहब्बत का बस इतना सा किस्सा है। हमारे एक लिसनर हैं जिनका मैसेज आया है, उनसे भी उनका मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं क्या कह रहे हैं वो। गुड इवनिंग अखिल सर, क्या हाल चाल? आज तो एक से बढ़कर एक गाना सुनने को मिल रहा है, सच में बहुत मज़ा आ गया है। आपके दिल से दिल तक आज भी बहुत खूबसूरत जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे गाने और इतनी प्यारी महफिल के लिए। बस हमारी भी एक छोटी सी फरमाइश है, अगर मुकम्मल मुमकिन हो तो शो के आखिरी में जाते जाते हमारी फरमाइश भी पूरी कर दीजिएगा। तो ज़रूर आसिफ जी, आसिफ जी इटली से हैं, इस हमें मैसेज किया है और कहते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और प्यारी सी नींद के साथ कल की सुबह और भी खूबसूरत हो। तो ज़रूर आसिफ जी आप भी खूब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही मैसेज के थ्रू हमें अपना प्यार जताते रहें। तो दोस्तों चलने का समय जैसे कहते हैं ना बिल्कुल एकदम एकदम करीब आ गया और पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा पूरा होने को भी है। आज हमने प्यार की बातें की, हंसे भी, कुछ ज़िंदगी के कुछ किस्से भी सुने, आपसे सवाल भी किए, थोड़े से उनके चटपटे जवाब भी आए और कहते हैं ना एक दूसरे के दिल पे नज़र भी रखी। जाते जाते एक शायरी आप सभी के लिए। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में खास हो जाते हैं, कुछ लोग दिल के पास हो जाते हैं। मिलना तो किस्मत की बात है दोस्तों, लेकिन याद करना हमारे साथ हाथ में होता है। तो मैं हूँ आपका अपना अखिल और ये था दिल से दिल तक अखिल संग, जहाँ बातें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन दिल से दिल का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हाँ किसी को प्यार करते हैं तो बता भी दीजिए, क्योंकि दिल की बात दिल में रखी तो कभी कभी दिल ही भारी हो जाता है। तो गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी और मिलते हैं फिर एक नई कहानी और कुछ नए दिल वाली बातों के साथ।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी तुम।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।